श्रोता मित्रों सुप्रभात। एफएम बैंड 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यू छे विविध भारतीनु वडोदरा केन्द्र। मित्रों आजे छे रविवार, भाद्रपद दिनांक 1, शक संवत 1948 एटले के तारीख 23 ऑगस्ट 2024। अत्यारे सवारना 5 वागीने 57 मिनिट थवा आवी छे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि सीमा को हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना जरूरी था। बयान में कहा गया है कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से रूस की 2 दिन की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। वे व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर जयशंकर यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स JRSE लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। शिलान्यास समारोह के बाद JRSE भवन में लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती किरंगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट के बीच डूरंड कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने नवी मुंबई के कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण मॉडल का विस्तार महाराष्ट्र के अन्य नगर निगमों में भी करने का आह्वान किया है। इससे बढ़ते कपड़ा अपशिष्ट की समस्या से निपटने के साथ साथ नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। श्री सिंह ने CBDT बेलापुर स्थित कपड़ा पुनर्चक्रण सुविधा TRF का निरीक्षण करते हुए कहा कि प्रतिमाह लगभग 78 टन कपड़ा अपशिष्ट एकत्र किया जाता है, इसीलिए इस अपशिष्ट को स्थायी संसाधनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय को नवी मुंबई नगर निगम के साथ हुए समझौते के समान अन्य नगर निगमों के साथ भी समझौते करने पर विचार करना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर के एक केंद्र पर अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा

IAPGET के संचालन में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटरी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनटीए ने सूचित किया है कि नोटिस के समाधान तक मेसर्स एडुकेटरी का पैनल तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जयपुर के केंद्र पर बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण कल 49 उम्मीदवार परीक्षा पूरी नहीं कर सके। एनटीए ने सूचित किया कि प्रभावित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने

लोग मारे गए हैं और 3 अन्य घायल हो गए। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य उड़ान अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में आयोजित उदारा शक्ति 2026 अभियान शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। पनामा ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जोड़ी से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष टीम हॉकी विश्व कप में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड से 1-3 से हारकर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। वेगनर हॉकी स्टेडियम में भारत को अंतिम 4 में पहुंचने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था। अब भारत सोमवार को अर्जेंटीना के खिलाफ अपने दूसरा दौर का अंतिम और औपचारिक मुकाबला खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

俊等。हम जितना ज्यादा बाहर जाकर दूसरों का भला करते हैं, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होता है और परमात्मा उसमें बसते हैं। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत।

अब से कुछ देर बाद यानी कि इस झरोखे के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 289। इसमें आज आप सुनेंगे सुंदरकांड। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ताल प्रवाह का भाग 7। कलाकार तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7 बजे और 7:30 पर सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। समाचार प्रभात का समय होगा सुबह 8 बजे और 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम। आलेख और स्वर दीपा माहेश्वरी का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम में सुनिए नए गीत सुबह 8:30 पर और आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री सायरा बानो पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। समय होगा इस कार्यक्रम का सुबह 9:30 और इसका पुनः प्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर। विविधा के अंतर्गत आज 11 बजे आप सुनेंगे शैलेंद्र और हुस्नलाल भगतराम को, प्रस्तुति मनीषा जैन की। दोपहर 12 बजे हिंदी में समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल कार्यक्रम। दिन में 1 बजे श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। दोपहर समाचार होंगे दिन में 2 बजे और 2:30 पर सदाबहार नगमे। आज जानिए मनचाहे गीत में आपका खत शामिल हुआ है या नहीं, और अगर नहीं तो कीजिएगा अगले शनिवार रविवार का इंतजार। दिन में 3 बजे होगा ये कार्यक्रम मनचाहे गीत। संवादक नेहा शर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए दो फूल जूही के, लेखक हृदय कौल भारती, निर्देशक दीनानाथ। पिटारा के अंतर्गत सुनिए उजाले उनकी यादों के, नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के पूर्व निदेशक।

पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग दो, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। कार्यक्रम का समय दिन में 4 बजे। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। इस बीच 6 बजे से लेकर 6:05 तक सुनिए हिंदी में समाचार। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम होगा 6:35 पर। और विशेष जयमाला में आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट IJS बुटालिया। संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कामले। इंद्रधनुष में साज और आवाज, क्लेरनेट अमर सिंह जस्सल को सुनिए। हवा महल होगा रात्रि 8 बजे, हास्य नाटिका किस की हार किस की जीत, लेखन श्री कृष्ण, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। रात्रि 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम, 8:45 पर समाचार संध्या। 9 बजे सुनिए आपके लिए कार्यक्रम और 10 बजे होगा छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरितमानस का भाग 289। आज सुनिए सुंदरकांड।

लंका की अटारियों में आग लगा, सीता जी का चिन्ह चूड़ा मणि लेकर पवनसुत हनुमान इस पार लौट आए हैं। इस शुभ समाचार से वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई है। हनुमान को हृदय से लगाकर श्री राम ने जनक नंदिनी का हाल पूछा तो कपीश्वर ने प्रभु के विरह में तड़पती सीता का संदेश कह

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं तबला वादक तबला साधक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। ताल प्रवाह में ताल के बारे में, ताल के बारीकियों पर चर्चा हो रही है। हमने सुना है कि जल तरंग, काच तरंग, नल तरंग के साथ साथ एक तबला तरंग भी हुआ करता था
2: जी।
1: उसमें तबले पर राग बजाए जाते हैं, धुन बजाए जाते हैं और इसके अलावा तबले पर पढ़ंत भी की जाती है। तो पढ़ंत में हमने पंडित बिरजू महाराज जी का बहुत अच्छे पढ़ंत सुने हैं, पंडित किशन महाराज के भी सुने हैं, पंडित गुदई महाराज का भी सुने हैं। इसी सिलसिले में मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगा कि तबला कभी बहुत जोरदार बजाया जाता है
2: जी जी जी,
1: कभी प्रेम से मृदु बजाया जाता है, तो इस बारे में आप श्रोताओं को बताएं ताकि उनको पता लगे कि तबले में क्या खासियत है।
2: पहले तो मैं अपने श्रोताओं को फिर से प्रणाम करता हूं और हमारे रामकृष्ण दास बाबू ने बहुत अच्छा सवाल किया। पढ़ंत, हर तबला वादक पढ़ंत जरूरी है। जैसे कभी कभी गायक जो गाते हैं तो शब्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। अगर आप बोल घुमा के बोलेंगे तो शब्द पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए खाली डांस को नहीं, तबला वाले का पढ़ंत बहुत जरूरी है। और रहा तरंग का सवाल आपने कहा, तो ये बहुत पहले बजाया जाता था, अभी आजकल कोई नहीं बजाता है। मैंने जाकिर भाई को सुना है। तो पहले तो हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे भारत में कुछ ऐसे से कलाकार हुए हैं, पंडित राम नारायण जी, जिन्होंने पहले बोलते थे कि आपने, आपको पता है दास बाबू, आपको भी पता है और मैं श्रोताओं को बताऊं कि बहुत साल पहले एक जमाना हुआ करता था कि डांसर के पीछे, भजन गायक के पीछे तबला वाला कमर में तबला बांध लेता था
1: जी जी, और सारंगी भी,
2: सारंगी वाले सारंगी बांध लेते थे, हारमोनियम वाला हारमोनियम बांध के उनके पीछे पीछे पीछे पीछे जाए,
1: और नाचने वाला या नाचने वाली खुद गाती थी।
2: हाँ, गाती थी। तो ये पहले के जमाने में हुआ करता था मनीषा जी,
1: अदा की ठुमरी
2: जी। हाँ,

0: और करते करते मैं धन्यवाद देता हूं अपने गुरु पंडित किशन महाराज जी को कि उन्होंने तबला, भले तबला वाले को बुलाओ, सारंगी वाले को बुलाओ, गाने वाले को बुलाओ, ये शब्द खराब नहीं है, तो वो चुभता है बात। तो ये श्रेय जाता है हमारे पंडित राम नारायण जी को, जिन्होंने सारंगी को कहां से कहां पहुंचा दिया, फारूक के पिताजी लाचित खान साहब को। तबले में नाम आता है पंडित किशन महाराज जी का
1: जी।
0: उन्होंने एक गद्दी दे दी कि नहीं, तबला पर भी उठान बजाएगा तो बजाएगा गुदई महाराज जी। संतूर एक कहां से आया, और आज पंडित शिव कुमार शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, मैं उन्हें प्रणाम भी करता हूं क्योंकि बहुत
1: किस बुलंदी पर
0: पहुंचा दिया। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जी को ले लीजिए, आज के जमाने में भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तबला वादक अनिंदो चटर्जी हैं, अरविंद आजाद हैं, सपन चौधरी हैं, अनीस प्रधान हैं, कुमार दादा का तो खैर जवाब ही नहीं है। तो पढ़ंत, पढ़ंत बहुत जरूरी है। आज मैं श्रोताओं को पढ़ के सुनाता हूं कि पढ़ंत का क्या नाज है। तिन तिन ना द्रुत लय की चीज है। इसको कहते हैं द्रुत लय का मतलब क्या हुआ, लय के तीन प्रकार हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित का मतलब होता है ठहराव, आपको ठहरा। साधक का मतलब होता है, आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि साधक बैठे हैं, साधक का मतलब होता है तपस्या। आजकल तो लोग प्रैक्टिस बोलते हैं कि प्रैक्टिस किया, रियाज और प्रैक्टिस में अलग अलग शब्द है वो। तो श्रोताओं को, और ताल प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है कि चाहे उसको गंगा की तरफ ले लीजिए कि कैसे वो, उनकी क्या धारा है, तो हम धारा लेते हैं। तिन तिन ना तक दिन दिन ना ना दिन दिन ना दिन दिन ना तिन तिन ना। इसमें मैं फारूक भाई को निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा झाला टाइप का बजाएंगे। उठान, पढ़न का उठान, दिन दिन दा दिन दिन ना ना तिन तिन ना था। एक बड़ा सुंदर बंदिश पढ़ रहा हूं, तीन दर्जे का। तीन दर्जा क्या चीज है दास बाबू? एक ही बोल के तीन अलग अलग अंदाज, उसे कहते हैं तीन दर्जा। एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड। ये है पढ़न। अब इसी तीन ताल में हम देखिए अलग छंद लेते हैं, कथिन नाथक धन नाना कथिन नाना कथिन नाथक जतिन नाथक धन नाना, आड़ कुआड़ बियाड़ का अंदाज।
1: जी जी,
0: तक जिन तक जता गिन, सात का छंद है। बिजली परन क्या चीज होती है, ये खास बनारस का अंदाज है।
1: अच्छा,
0: तड़ी तड़ धगिन क्रांत न कथिता कथिन नाना दिन दिन नाना तिन तिन नाथक धिन तड़ित तड़तड़ धेते धेगते धगिन क्रांत न कतिता घघरात बिजुघटान घिगिनता तघगिनता तघगिनता धागिन्ना धिन्दिन्ना ना धिन्दिन्ना सगिन्दिन्ना।
1: बजा के भी बताइए ना।
0: तड़ित तड़तड़ धेते धेगते धागिन्ना धिन्दिन्ना ना धिन्दिन्ना तड़ित तड़तड़ धेते धेगते धगिन क्रांत न कतिता घघरात बिजुघटान घिगिनता तघगिनता तघगिनता धिन्दिन्ना ना धिन्दिन्ना धिन्दिन्ना। अब शिव परन क्या है? ओम दिमिक दिम डमरू बाजे गिर कैलास शिखर पर नाचे धीमिक धीमिक। अब देखिए धीमिक धीमिक तो वजन में वजन आना चाहिए, ये नहीं कि मैं खाली चिल्ला के बोल रहा हूँ।
1: जी,
0: ओम दिमिक दिम डमरू बाजे गिर कैलास शिखर पर नाचे धीमिक धीमिक धीम मृदंग बाजे शीश गंग अरधंग विराजे उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू दी नाचे। यह है पठन। अब ये ताल द्रुत लय हमने लिया है आज श्रोताओं को, तो मैं फारूक भाई से निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा झाला कांग दिखाइए ना।

0: ये था चार दर्जे का चीज। अब एक बात और बताना चाहूंगा
1: जी
0: कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जैसे अब्बा जी, अब्बा जी ने बहुत से, अब्बा जी मतलब जाकिर भाई के पिताजी अल रखा खा साहब
1: जी जी,
0: बहुत से पिक्चरों में म्यूजिक भी दिए हैं वो। और मैं एक फिल्म का नाम बताना चाहूंगा जिसमें पंडित शिव कुमार जी का तबला है पूरा।
1: अच्छा।
0: हाँ जी, आपको
1: वो तो तबला भी बजाते थे।
0: लाजवाब
1: जी जी।
0: और लयकार तो ऐसा था कि मतलब आप बताइए
1: संतूर में दिखाते
0: जी सब। हाँ, जिस पिक्चर का नाम है गाइड।
1: अच्छा।
0: राग है मिश्र खंबावती, बहुत कम सुनने को मिलता है
1: जी।
0: ताल है कहरवा अद्धा तीन ताल और झाला।
1: अरे वाह।
0: ये शिव जी का खास तबला बजाया हुआ है। गाना है

ताल प्रवाह इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए इंतजार।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुप्रभात श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने, नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम बैजू बावरा।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: देवदास फिल्म का गीत अभी आपने सुना मुबारक बेगम की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म वचन से। इसे गाया है आशा भोसले ने, प्रेम धवन ने इसे लिखा है, रविशंकर का संगीत।

0: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
1: अब सिर्फ 10 रुपए के स्पेशल पैक में भी।
2: वीको टर्मरिक WSO क्रीम।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।
4: कार्यक्रम हम है राही प्यार के साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं युगल गीत, यानी कि दो कलाकारों द्वारा गाए गए गीत। आइए आगाज करते हैं जंगली फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मुकेश और आशा भोसले ने, हसरत जयपुरी ने इसे लिखा है शंकर जयकिशन की धुन।

0: ये गीत अभी आपने सुना आई मिलन की बेला इस फिल्म से। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा और शंकर जयकिशन की धुन।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने

0: नाटक किया, उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: शागिर्द फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

93.9 FM ध्वनि तरंगो विविध भारतीना। श्रोता मित्रों आओ सांभळीए रॉकी फिल्म नु गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर ना स्वरमां। गीतकार आनंद बक्षी, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की। वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज। ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, चालक दल के 24 सदस्य थे सवार। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तन्वी और कोमल को कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री मोदी ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचार और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ जुड़ाव को बढ़ाना है।
2: एक सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि भाजपा ने वंदे मातरम की ऐतिहासिक विरासत के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पार्टी ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 19 अगस्त को कांग्रेस कार्यक्रमों में वंदे मातरम के गायन को केवल पहले दो पैरा तक सीमित करने वाली वर्ष 1937 के प्रस्ताव को पुनः लागू किए जाने के निर्णय की कड़ी निंदा की। पार्टी ने राष्ट्रीय गीत के रूप में संपूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय महत्व को बनाए रखने का संकल्प लिया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। आनंद और प्रिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय राजपत्र में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की अधिसूचना के साथ प्रभावी हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में ये क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। मंत्रालय का मानना है कि टेलीविजन उद्योग और डिजिटल मीडिया के बीच पर्याप्त प्रतिस्पर्धा है। टेलीविजन के लिए विज्ञापन अवधि सीमा 2006 में केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के तहत लागू की गई थी। तब से लेकर आज तक टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उस समय टीवी चैनलों को प्रसारित करने के मुख्य माध्यम केबल टीवी की प्रसारण क्षमता सीमित थी और उपभोक्ताओं के पास बहुत कम विकल्प थे। केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच, एचआईएसटी और आईपीटीवी सहित सभी प्लेटफॉर्म अब डिजिटल हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्री

0: राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसके बाद रक्षा मंत्री का युवा भारती क्रीड़ांगन में ईस्ट बंगाल FC और मोहन बागान सुपर जायंट्स के बीच डूरेंट कप का फाइनल मैच देखने का भी कार्यक्रम है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और किसी को भी अहिंसा के इन मूल्यों को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। श्री सिंह ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार की सर्वोपरि कर्तव्य है।
1: अहिंसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है

0: कि किसी को की हत्या मत करो, किसी को मारा नहीं जाना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है मन वचन और कर्म से किसी भी रूप से किसी को पीड़ा न पहुंचाई। अहिंसा के मूल्य को हमारी कमजोरी किसी भी सूरत में नहीं समझी जानी चाहिए। हमारे अहिंसा को गलत मत समझो, अहिंसा और शांति हमारी संस्कृति है।
1: रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने खरीफ और आगामी रबी मौसम के लिए उर्वरक विभाग की तैयारियों की कल समीक्षा की। नई दिल्ली में कल एक बैठक में उन्होंने कहा कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध और समय पर आपूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत को विश्व की फार्मेसी की अपनी पहचान से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और उभरती प्रौद्योगिकियों के बल पर विश्व की प्रयोगशाला के रूप में उभरना होगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा में एआई को बढ़ावा देना विषय पर आयोजित हेल्थ केयर समिट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की परिवर्तनकारी क्षमता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एआई दवाओं की खोज में तेजी ला सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। कार्यक्रम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता, द्विपक्षीय बैठक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल होंगे। बैठक के समापन पर ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान की सेना की निर्मम कार्रवाई में सैकड़ों लोगों के मारे जाने और घायल होने के बाद ये अपील की गई है। इस क्षेत्र में कड़ी नाकाबंदी और कर्फ्यू के कारण संचार व्यवस्थाएं ठप हैं। इस बीच बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में बलूच यकजहती कमेटी ने आम नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना के ड्रोन हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार प्रायोजित आतंकवाद करार दिया है। इसमें 4 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। BYC ने बताया कि शुक्रवार को मस्तुंग के खड़कुचा इलाके में एक ड्रोन हमले में 4 मजदूर मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इनमें चीनी नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। एक रिपोर्ट।
2: अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर ये दुर्घटना हुई। जहाज MV ओशन विनर के चालक दल में चीन के 20, म्यांमा के 3 और एक बांग्लादेशी नागरिक सवार था। जहाज ओडिशा से करीब 72,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क लेकर 20 अगस्त को पारादीप तट से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ था। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया जा चुका है। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: भारतीय वायुसेना ने हाल ही में 2 अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यासों में सफलतापूर्वक भाग लिया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक 2026 और मलेशिया में उदार शक्ति 2026 अभ्यास शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 2 देशों के बीच इन अभ्यासों से भारतीय वायुसेना ने परिचालन क्षमता, उन्नत सामरिक समन्वय और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने अग्रिम पंक्ति के राफेल विमानों के साथ 20 से अधिक भागीदारी देशों की वायु सेनाओं के साथ मिलकर अभ्यास किया। उधर मलेशिया में आयोजित सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के दौरान भारतीय वायुसेना के चालक दल ने रॉयल मलेशियन वायुसेना के साथ मिलकर उच्च तीव्रता वाले लड़ाकू मिशन और संयुक्त सामरिक युद्ध अभ्यास किए। आरजू और प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने जयपुर में अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में हुई अनियमितताओं के लिए एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रभावित परीक्षार्थियों के लिए पुनर्परीक्षा अगले महीने की 1 तारीख को जयपुर में आयोजित की जाएगी। स्लोवाकिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने 3 पदक और

0: जीत लिए हैं। मानसी लाठर ने रजत पदक और तन्वी गुंदेश मखदूम और कोमल ने कांस्य पदक हासिल किए। और भारत और श्रीलंका के बीच वर्तमान क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज कोलंबो में शुरू होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से खेला जाएगा। भारत पहला टेस्ट 165 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अन्य खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में कल विश्व एथलेटिक्स रजत स्तरीय प्रतियोगिता में भारत के रोहित यादव ने भाला फेंक और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद स्पर्धाओं में जीत हासिल की। रोहित ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 87.68 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने 8.07 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की लंबी कूद में एनसी सोजान पहले, शैली सिंह दूसरे, जबकि मुबस्सिना मोहम्मद तीसरे स्थान पर रहीं। नाइजीरिया के चुकवू एबुका एनेक्वेची ने पुरुषों के शॉटपुट का खिताब जीता, जबकि इटली के जेन वियर दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने अगले महीने से जापान में शुरू होने वाले एशियाई खेलों के लिए 492 सदस्यीय दल को मंजूरी दे दी है। इस बार एथलेटिक्स के सर्वाधिक 73 प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और विदर्भ में दिनभर तेज वर्षा का अनुमान है। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 2-3 दिन तक इसी तरह के मौसम का अनुमान है। इस बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मंगलवार तक गरज चमक के साथ तूफान की आशंका है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों की नई दिल्ली में बैठक की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भाजपा जेंजी से जुड़ेगी, 14 से 25 वर्ष के युवाओं से जुड़ने के लिए पार्टी अभियान चलाएगी। जनसत्ता का शीर्षक है, राष्ट्रगीत के सम्मान से किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं, भाजपा ने वंदे मातरम पर कांग्रेस के निर्णय की आलोचना की। अमर उजाला के अनुसार कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ प्रस्ताव पास, विकसित भारत का उद्घोष भी वंदे मातरम। दैनिक जागरण ने वंदे मातरम पर घिरी कांग्रेस शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वंदे मातरम के दो ही पद गाने की कांग्रेस की जिद से ये साफ है कि सोनिया गांधी ने 15 अगस्त को पार्टी मुख्यालय पर उसके पूर्ण गायन पर आपत्ति जताई थी। पंजाब केसरी का शीर्षक है, गोरखा मुद्दे पर समझौते की तैयारी, सरकार ने गठित की समिति, चिकन नेक को मिलेगी अवैध सुरक्षा। गृहमंत्री अमित शाह, गोरखा नेताओं और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हुई बैठक का उद्देश्य वर्तमान समस्याओं का समाधान करना। नवभारत टाइम्स ने विदेश मंत्री जयशंकर का बयान देते हुए लिखा है, पाक यूनिक आतंक फैलाता है, बोले चीन के साथ अच्छे रिश्ते दोनों के हित में। अमरीकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा, भारत यूएस संबंध ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर आधारित। राजस्थान पत्रिका ने नया युद्ध शीर्षक से दिया है, ईरान की घेरेबंदी के बीच अमरीका में साइबर हमले, ड्रोन मिसाइलें शांत, अब यूएस और ईरान के बीच साइलेंट वॉर। अमर उजाला के अनुसार मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानी सेना में असंतोष, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, पूर्व सैनिकों के संगठनों में भी बढ़ी नाराजगी, सुरक्षा बलों पर हमले को बताया कारण। दैनिक जागरण का शीर्षक है, 1 सितंबर से ई बोर्डिंग पास दिखाकर हो सकेगी विदेश यात्रा, एयरपोर्ट पर फिजिकल बोर्डिंग पास और स्टैंपिंग व्यवस्था खत्म होगी। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है, चैटबॉट नहीं, बुजुर्ग सबसे बड़े लाइफ कोच, संकट में सर्च के बजाय संवाद करें, समाधान के साथ नया नजरिया भी मिलेगा। 1500 अमरीकी बुजुर्गों की युवाओं को सीख, जो हाथ में है उसी पर फोकस करें। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार कांगड़ा की अंशिका और प्रवीण राणा बने प्रेरणा स्रोत, एक साथ की LLB, बेटी टॉपर और पिता तीसरे स्थान पर। राजस्थान पत्रिका के अनुसार 3 साल बाद विदेश में टेस्ट सीरीज जीतने उतरेगी भारतीय टीम, श्रीलंका के साथ 2 टेस्ट की श्रृंखला में टीम इंडिया 1-0 से आगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों से वार्ता की, वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में प्रस्ताव पारित। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा समाप्त करने की अधिसूचना जारी की। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आज, ब्रिटेन के सांसदों का संयुक्त राष्ट्र से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष

लोगों की हत्या मामले में हस्तक्षेप का आह्वान। बंगाल की खाड़ी में मालवाहक जहाज डूबा, भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। और भारत की मानसी लाठर ने स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, तन्वी और कोमल को कांस्य। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थी और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर

वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
4: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
3: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
5: थिएटर करते करते ही सारी

0: चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।
3: वाह, तमारा कपड़ा नो फिटिंग तो जोरदार छे ना।
4: थैंक्स टू व्हाइट हाउस, एमनी फिटिंग ने साथे एमनी ऑफर पण जोरदार छे।
3: कई ऑफर?
4: ज्यां प्रख्यात ब्रांड्स ना कपड़ा नी खरीदी पर पैंट अने शर्ट स्टिचिंग फ्री छे।
3: बस एटलू ज?
4: 5 पैंट शर्ट स्टिच करावो अने मेळवो रुपया 5000 सुधी नी बचत।
3: तो हवे घरवाड़ी नी शॉपिंग पण पाकी।
4: व्हाइट हाउस, प्रीमियम फिटिंग, स्मार्ट सेविंग्स एट रावपुरा।
5: શ્રોતા મિત્રો, 93.9 મેગાહર્ટ્ઝ પર આપી ટ્યુન કર્યું છે વિવિધ ભારતીનું વડોદરા કેન્દ્ર। સવારે 8:30 લોકપ્રિય હિન્દી ફિલ્મી ગીતોનો કાર્યક્રમ ચિત્રલોક, જેના પ્રાયોજક છે
6: અશોકા ધ ગ્રેટ એક્સક્લુઝિવ એથનિક એન્ડ દુલ્હા કલેક્શન, વડોદરાનો આધુનિક શોરૂમ, નવરંગ સિનેમા રોડ, રાવપુરા, વડોદરા।
5: એમ કે ફર્નિચર, 5 માળનો ભવ્ય શોરૂમ, પ્રતાપનગર બ્રિજ નીચે, વડોદરા।
7: પૂજા પ્લસ,
8: પૂજા મોનસૂન સેલમાં ફાયદાનો વરસાદ,
9: મેન્સ ગાર્મેન્ટ પર 50% સુધી ડિસ્કાઉન્ટ।
8: પૂજા પ્લસ, રાવપુરા, વડોદરા।
7: સવારે 10 વાગે ફોન ઇન તથા અન્ય લોકપ્રિય કાર્યક્રમો, જેના પ્રાયોજક છે
6: આર્ક બ્લાઇન્ડ્સ, શિવાકૃતિ બિલ્ડિંગ, દાંડિયા બજાર, વડોદરા।
7: સેહત આપકી, સુરક્ષા હમારી, અબ નહીં રહેગી મચ્છરો સે પરેશાની,
6: યે હૈ આર્ક બ્લાઇન્ડ્સ કી જિમ્મેદારી।
10: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह,
11: फसानी।
12: अजाने लिंक्स पर क्लिक ना करो, आरबीआई कहे छे
11: जानकार बनो, सतर्क रहो।
13: दोस्तों, आपने ट्यून की है भारत की लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती। चित्रलोक प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं केसरी फिल्म का ये गीत।

0: जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। तो साथियों, इस गीत को सुनाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आज हम आपको कुछ बताएंगे, आज के गीत कुछ अलग होंगे। कहते हैं अच्छे गीत कभी पुराने नहीं होते, वक्त बदलता है, फिल्में बदलती हैं, आवाजें बदलती हैं, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं जो बार बार नए अंदाज में हमारे सामने आती हैं। आज के इस सफर में हम सुनेंगे ऐसे ही कुछ गीत जो पहले किसी एक फिल्म का हिस्सा बने, लोगों के दिल में बसे और फिर कुछ सालों बाद उन्हीं गीतों को एक नई फिल्म, नई आवाज और नए अंदाज के साथ दोबारा पेश किया गया। तो चलिए सुनते हैं एक ही गीत के दो फिल्मी सफर। पहले उसका आइए पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत और फिर बताई जाएगी इस गीत की जानकारी।
3: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: बद्रीनाथ की दुल्हनिया। इस फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना बप्पी लाहिड़ी, अनुराधा पौडवाल और बादशाह की आवाजों में। इंदिवर की रचना, तनिष्क बागची का संगीत। और आइए अब ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम बादशाह हो। जुबिन नौडियाल और नीति मोहन की आवाजों में सुनिए ये गीत, जिसे लिखा है मनोज मुंतशिर ने। तनिष्क बागची का संगीत।
1: आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स।

0: और प्रतिभा शर्मा।
1: मितवा
0: सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं थैंक यू फिल्म का ये गीत। मीका सिंह की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा है, प्रीतम का संगीत।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा।

प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल कर की।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की आवाज से इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, संदेश शांडिल्य ने इसकी धुन बनाई है।

श्रोताओं, आज हमने जैसे कि आपको बताया कि कुछ धुनें हम आपको ऐसी सुनवा रहे हैं जो पिछले भी किसी फिल्म में बजी होती हैं या गीत बजा होता है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: साथियों, आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। ये दिवस हमें भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करने का अवसर देता है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। ये दिन हमारे वैज्ञानिकों के समर्पण, प्रतिभा और आत्मनिर्भर भारत की ताकत को सलाम करने के साथ साथ युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और आइए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं बटला हाउस, इस फिल्म का गीत नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार और बी प्राक की आवाजों में। तनिष्क बागची और देव कोहली ने इसे लिखा है, संगीत है तनिष्क बागची और विशाल शेखर का।

मुबारका फिल्म का गीत सुनिए मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाजों में। इसे लिखा है कुमार ने, गौरव रोशनी का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं वार। इस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजें हैं। कुमार ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सूर्यवंशी फिल्म का गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में तनिष्क बागची आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और तनिष्क बागची और वीजू शाह का संगीत।

नेहा कक्कर और मीका सिंह और कुमार सानू की आवाजों में सुनिए सिम्बा फिल्म का ये गीत। शब्बीर अहमद ने इसे लिखा है, तनिष्क बागची का संगीत।

0: कमाल
1: तुषार कपूर की आवाज में तो ये था हमारा आज का खास संगीत सफर, जहां अलग अलग धुनों या फिर एक ही धुनों वाले गीत आपको सुनवाए गए, और कभी धुनें अलग थीं, कभी शब्द अलग थे। इस तरह के गीतों का ये सफर था। फिर होगी मुलाकात फिर किसी कार्यक्रम में। फिलहाल चित्रलोक कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानू की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमिया बाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानो को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की

0: दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला, और इसके बाद झुक गया आसमान।
1: उनसे

1966 में ही आई थी ये जिंदगी कितनी हसीन है।

0: दोस्तों, सायरा बानू जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगले आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम।
1: हाँ।
2: ताली भी बज जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।
0: आज

0: ये आज तुम्हें क्या हो गया है? उफ, तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।

और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।

नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

0: धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।
1: रूठा है तो मना ले।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में पूरी हो चुकी थी पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों सायरा बानो एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानो पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने और भविष्य बनाने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।

0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इस मंत्री स्तरीय बैठक में ब्रिक्स के सभी 11 देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडल खेलों में आपसी सहयोग मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। इसमें खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी भाग लेंगी। इस दौरान ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग प्रतियोगिता और द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड की 5 इकाइयों के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद लघु और मध्यम उद्यमों के साथ एक संवाद सत्र भी आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि टीवी प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन अवधि से संबंधित प्रावधानों पर पुनर्विचार करना आवश्यक था। बयान में कहा गया कि भारत में यह क्षेत्र विज्ञापन पर अत्यधिक निर्भर है, फिर चाहे चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। ब्रिटेन के 70 से अधिक सांसदों ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश को पत्र लिखकर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बिगड़ती स्थिति पर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना द्वारा निर्दोष लोगों के रक्तपात को रोकने और नागरिकों की रक्षा के लिए कदम उठाने की मांग की है। पनामा के ध्वज वाला एक मालवाहक जहाज कल बंगाल की खाड़ी में डूब गया। इसमें चीन के नागरिकों सहित चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ओडिशा तट से लगभग 240 समुद्री मील दूर यह दुर्घटना हुई। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय नौसेना ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 2 लोगों को बचाया गया है। दक्षिणी ट्यूनीशिया में प्रवासियों को ले जा रही एक नौका पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य लापता हैं। एक व्यक्ति को बचा लिया गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। मुकाबले में सारांश जैन भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं। श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा।

0: हसर जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म के इस गीत में आपने सुनी।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। हम

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।
4: कौन है जो सब

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर वो गीत सुनवा रहे हैं जो करवाते हैं आसमान की सैर।

0: साधना सरगम की आवाज में आप सुन रहे थे कलाकार फिल्म से गीत इंदिवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: कुछ दिल ने कहा
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाजें सितारा फिल्म के इस गीत में आपने सुनी और इसे लिखा गुलजार ने, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: द बर्निंग ट्रेन फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप, जिसे लिखा साहिल ध्यानवी ने, राहुल देव बर्मन का संगीत, आवाजें सुषमा श्रेष्ठा और पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ साथियों की।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

रोजा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। या रहमान का संगीत, बीके मिश्रा के बोल, एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजें। कार्यक्रम यादों के महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: कहो ना प्यार है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, सावन कुमार टांक के बोल और राजेश रोशन का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को

0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें बातें हैं आसमान की।

कोई मिल गया। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और चित्रा के साथ साथियों की आवाजें, इब्राहिम अश्क के बोल, राजेश रोशन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप विविध भारती पर सुन रहे हैं।

स्वदेश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बता देते हैं आज की इबारत, जिसमें छुपे हैं वो शब्द

जिनसे आज के इस कार्यक्रम में गीत शामिल होने वाले हैं। तो आज की बारत है, माँ ने कहा था चंदा में रहती हैं लाखों परियां, उन परियों के बीच कभी खुद को भी देखा करते थे, सपनों की वो दुनिया जिसमें आसमान के बादल पल में मौसम बदल देते और चांद सितारे अपनी चमक से आंखों को रोशन कर देते। कभी देखी चंदा पर बैठी चरखा कातती एक बुढ़िया माई, तो कभी चंदा ने आप थाली में खाकर हमें प्याले में ही दे दी मिठाई। जितना अनोखा बचपन उतना ही अनोखा हमारा खामुखा संसार, पर बड़े होकर भी कहां बदला चांद से हमारा ये प्यार। रॉकेट छोड़े यान उतारे नाप लिया जग सारा, पर चंदा की सपनीली बातों ने ही मन को संभाला। तो आप किस तरह से देखते हैं चांद को, ये हमें बताइए, और साथ ही ये भी बताइए कि बचपन में कौन सी वो लोरी थी आपको जो सुनाई जाती थी सुलाने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्मी गीतों को भी लोरी के रूप में सुनाया जाता है। वहीं चांद से जुड़ी वो कौन सी बातें हैं जो आपको सबसे अच्छी लगती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपको जाना है चांद की सैर पर? हमें बताइए। तब तक सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, और इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया ये बताइएगा।

0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की तैर को जाएंगे
1: जाएंगे।
0: अरे मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की तैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे
1: खाएंगे। दीदी को भी ले जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे।
2: अरे दीदी बच्चा थोड़ी है।
0: मामा जी के रॉकेट पर हम चांद की तैर को जाएंगे।

पर हम चांद के शहर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।

0: पर हम चांद की सैर को जाएंगे, वहाँ के बच्चों से मिलजुल कर दूध मलाई खाएंगे।
1: दीदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। साहिल उद्यानवी के बोल एन दत्ता का संगीत। हमने आपसे पूछा कि बचपन में कौन सी लोरी है जो आपके लिए गाई जाती थी, और चांद से जुड़ी वो कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और साथ ही ये भी पूछा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप चांद की सैर पर जाएंगे, और बचपन का वो कौन सा सपना है जो अब भी आपकी आंखों में बसता है, ये भी हमें बताइएगा। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चांद आदिकाल से ही मानव के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इंसान ने चांद को निहारा नहीं बल्कि कविता और गीतों में भी उतारा है। चांद को देखने का सबका अपना नजरिया है। बच्चों को चांद में चरखा चलाती बुढ़िया नजर आती है, तो नौजवानों को अपनी महबूबा का चेहरा नजर आता है, और तो और भूखे को चांद में नजर आती है रोटियां। एक ओर चांद को स्त्री पुरुष के प्रेम का साक्षी स्वरूप भी माना जाता है, और दूसरी ओर चांद संदेश वाहक

भी बनता है। चांद को लेकर हमारी हिंदी फिल्में दूरदर्शी रही हैं। अंतरिक्ष में पहला मानव 1960 में गया था, लेकिन उससे पहले ही 1959 की फिल्म दीदी में मामा जी की रॉकेट में हम चांद को सैर पे जाएंगे ये गीत लिखा गया था। इसी तरह चांद पर मानव 1969 में पहुंचा, मगर उससे पहले 1968 में अंतरिक्ष के वासियों की कल्पना को लेकर वहां के लोग फिल्म का निर्माण किया गया था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए

था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चंदा मामा दूर के ये गीत बचपन में बहुत बार सुन चुके हैं और चांद पर बैठी चरखा काटती बुढ़िया माई की कहानी भी सुन चुके हैं। किसी सुंदर स्त्री के गोरे गोरे मुख को भी चांद की उपमा दी जाती है और चांद कितना सुंदर या खूबसूरत है। ये साल 1969 से में 20 जुलाई के दिन अपोलो 11 चंद्रयान ने चांद की धरती पर उतरकर गलत साबित कर दिया कि वहां की जमीन सुंदर रहे या उबड़ खाबड़। दूर से ली गई तस्वीर देखकर महसूस हो रहा है कि जैसे किसी स्त्री के चेहरे पर निकले हुए शीतला के दाग हो यानी चीचक के दाग हो, ऐसा वो कह रहे हैं। हालांकि सुंदरता को इस तरह से आंकना तो हमारी नजर में बिल्कुल सही नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ख्वाब कहीं या सपना, इनकी दुनिया ही अलग होती है। ये चांद के भी कई रूप होते हैं, कभी उसमें दाग तो कभी सूत काटती बुढ़िया परियां। क्या क्या कल्पना कर लेते हैं हम चंदा मामा दूर के बचपन से आज तक सुनते हैं। पूर्णिमा का चांद तो बेहद खूबसूरत होता है, वो अपनी धवल चांदनी से हमें आह्लादित करता है। और हमारी आप जिस तरह से बातें करें कि चांद पर हमने देखा है तो सिर्फ सूत काटती बुढ़िया माई को ही हमने चांद पर नहीं देखा बल्कि और भी अलग अलग आकृतियां हम अक्सर देखते हैं चांद पर भी, सितारों के साथ भी। तो आपने अंतरिक्ष में या कहें आसमान में कौन कौन सी ऐसी आकृतियां देखी हैं चांद और तारों को मिलाकर, हमें बताइए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद बचपन और यादों के हंसी सपनों को समेटे हुए गद्यांश आज अंतरिक्ष का रुख करवाएगा। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि वो उन्होंने अलग अलग गीत लिख भेजे हैं। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि माँ ने अपने बच्चों को चंदा मामा, परियां, चांद, सितारों की कहानियां सुनाकर बचपन में सपनों की दुनिया सजाई जो हकीकत लगी। आज भी चांद में वही सब दिखता है। ऐसा कोई नहीं जिसने चंदा मामा दूर के लोरी माँ से न सुनी हो। आज भी प्लेन आकाश में उड़ता दिखाई देने पर ऊपर देखे बिना नहीं रह पाते। शरद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा की खूबसूरत चंद्रमा को देखने की आदत है, शायद बचपन फिर याद आ जाता है। तो हम बड़े होकर भी तो इन चीजों को देख सकते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में हमें बताइए, क्योंकि बातें तो बचपन की, चांद की, सितारों की और परियों की होने वाली है, साथ ही साथ सपनों की दुनिया में भी हम खोने वाले हैं। हमारे साथी क्या लिखते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आप हमें ये भी बता सकते हैं कि क्या तारों की पहचान करने के लिए आपने आसमान में कभी ताक झांक की है और क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप चांद पर जाएं। इस गीत को किस फिल्म से लिया है हमें बताइएगा।

गीत गाता चल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और साथियों की आवाजें, रविंद्र जैन की बोल, उन्हीं का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा कि आसमान पर चंद्रमा के साथ तारों के समूह जैसे काल पुरुष, तारामंडल, सप्तर्षि मंडल, आकाश गंगा जिसमें अनगिनत तारे हैं, आप टेलीस्कोप या साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना अब मुश्किल नहीं, लेकिन जाने का तो नहीं सोचा है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हमारे राजस्थान में तो चांद को देखकर व्रत भी खोलती हैं सुहागन औरतें। फिल्म गीत गाता चल का ये गीत आपने सुनवाया, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की टॉर्च हूं, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि मलयालम में चंदा मामा दूर के जैसे ये गाना है, अम्बिली अम्बावा तमारा कुंबिलील इन थोड़ू, ऐसा गाना है, मेरी माँ सुनाती थी, ऐसा उनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि बचपन में हम उसे मामा कहकर पुकारते थे और फिर जब बड़े होते गए तो चांद के प्रति जो महसूस करते थे वही अक्स उसमें नजर आने लगा। फिल्मों में और कवियों ने चांद को लेकर कितना सुंदर सुंदर लिखा है, इसकी बानगी वे गीत है जिनकी ठंडक में हम अपना गम बिसरा देते हैं। चांद आसमान में टंगा सबसे सुंदर आभूषण है, समय की खाली आंखों में तैरते आकाश के तारे चांद के पैरों की पाजेब है, उसके घुंघरू हैं, इसको जिस चाहे उस नजर से देखो, ये पल में बच्चों का मामा बन जाता है, किसी बहन को उसमें अपना भाई नजर आता है, तो किसी को दूर देश में बैठा अपना प्रियतम भी नजर आता है। तो जिस तरह से अलग अलग रिश्ते होते हैं एक ही व्यक्ति के जीवन में, कुछ उसी तरह से चांद को भी हमने अलग अलग रिश्तों में बांध रखा है और अलग अलग नजरिए से उसे देखते हैं। वही हमारे साथी लिख रहे हैं कि भले ही विज्ञान ने चंद्र का असली स्वरूप हमें समझा दिया है, चांद तो आज भी हमारे लिए मनोरम परिकथाओं का जनक है। बचपन का पुए पकाने वाला चंदा मामा, अपने अंक पर खरगोश, हिरण की गाड़ी और सूत कताई करती दादी माँ को संभालने वाला प्यारा इंसान है, सजा के तौर पर रोज खुद का आकार बदलने वाला नटखट बेटा है। प्रभु रामचंद्र जी ने भी बचपन में उसे पाने के लिए आतंक मचाया था, सभी के मन पर वो राज करता है। जवां दिलों के सपनों का सौदागर है, करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, कोजागिरी पूर्णिमा, नारियली पूर्णिमा को पूजनीय आराध्य देव भी वो कहलाता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी कहती थी तारों की महफिल में सजता है एक जादुई नगर, जहां जुगनू बनकर हम भी रोज करते थे सफर, कागज की वो नावें जो बारिश के पानी में समंदर पार कर जाती, और वो कागज के हवाई जहाज जो बादलों को छूकर वापस आ जाते, कभी धूप की छांव में परछाइयों से राजा रानी की कहानी बुनते, तो कभी रात को छत पर लेटकर हवाओं की सरसराहट में परियों के गीत सुनते। जितना मासूम वो लड़कपन, उतनी ही जादुई हमारा वो गुजरा जमाना। पर वक्त की इस दौर में भी कहां कम हुआ बचपन का वो फसाना, डिग्रियां ली, दफ्तर संभाले, नाप ले दुनिया की हर डगर, पर बचपने की उन मासूम यादों ने आज भी जिंदा रखा है दिल के अंदर का वो बेफिक्र सफर। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने लिखा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सबसे प्यारी बात इबारत की आखिरी पंक्ति है, रॉकेट और यान से चांद तक पहुंच गए मगर मन आज भी उसी चंदा में अपने बचपन वाली परियों को ढूंढता है, यही तो संगीत भी करता है, हमें बड़ा होने के बाद भी थोड़ी देर के लिए हमारा बचपन लौटा देता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि माँ परियां सपने चंदा दुनिया आसमान बादल मौसम सितारे बचपन, इन वर्ड से आज के गीत हो सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का अगला गीत, और एक ऐसा गीत है जिससे सभी का बचपन कहीं ना कहीं जुड़ा होगा, तो बताइए किसकी आवाज में है और संगीतकार कौन है।

0: कार्नी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक साल से अधिक समय से कनाडा ने अमेरिका के साथ नए व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत के लिए गहन और सद्भावनापूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के साथ एक साल से अधिक की बातचीत के बाद कनाडा के वार्ताकारों को वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कनाडा आने वाले दिनों में अपने जवाबी शुल्क कदमों के बारे में विस्तार से घोषणा करेगा, जो मजदूर दिवस के बाद मंगलवार से लागू होंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: FIH હોકી વિશ્વકપમાં ભારતીય મહિલા ટીમ આજે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમશે। સેમીફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ભારતે આ મેચ જીતવી પડશે। પુલ ઈ મેચ રાત્રે 10:30 વાગે શરૂ થશે। ભારતનું ક્વોલિફિકેશન ચીન અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચેની મેચના પરિણામ પર પણ નિર્ભર રહેશે। જો ચીન જીતશે તો ભારત ઓસ્ટ્રેલિયા સામે જીત મેળવીને પણ બહાર થશે। નેધરલેન્ડ્સ 6 પોઈન્ટ સાથે સેમીફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે। ચીન પાસે 2 પોઈન્ટ છે, જ્યારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે 1-1 પોઈન્ટ છે। ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે 2 ટેસ્ટ મેચ શ્રેણીની બીજી મેચ આજથી કોલંબોના સિંહલીઝ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ગ્રાઉન્ડ ખાતે શરૂ થઈ છે। ભારતીય ટેસ્ટ કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી છે। પહેલી ઇનિંગમાં ભારતે 2 વિકેટે 103 રન બનાવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે ગોલેમાં 165 રનથી જીત મેળવીને ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે। જાપાનના ટોક્યોના ઉત્તર પૂર્વમાં આજે આવેલા 5.9ની તીવ્રતાના ભૂકંપમાં લગભગ 37 લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા હોવાના અહેવાલ છે। ભૂકંપના કારણે પાણીની પાઇપો ફાટી ગઈ હતી અને કેટલાક વિસ્તારોમાં પરિવહન સેવાઓ ખોરવાઈ હતી। જાપાનની હવામાન એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર ભૂકંપ લગભગ 70 કિલોમીટરની ઊંડાઈએ આવ્યો હતો। ઉલ્લેખનીય છે કે જાપાન વિશ્વના સૌથી વધુ ભૂકંપગ્રસ્ત દેશોમાંનો એક છે। અંતમાં મુખ્ય સમાચાર ફરી એકવાર। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે અવકાશ ક્ષેત્રના સ્ટાર્ટઅપ્સે સરકારમાં વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે। અવકાશ ક્ષેત્રના સીઈઓને મજબૂત અવકાશ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવા આહવાન કર્યું। કેન્દ્રીય મંત્રી ગજેન્દ્રસિંહ શેખાવતે જણાવ્યું કે વિકસિત ભારતનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં અવકાશ ટેકનોલોજી મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે। અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિએ ફરીથી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને નવો અમેરિકી પ્રદેશ દર્શાવતી છબી મૂકતા અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધ્યો। કેનેડા અમેરિકા સામે જવાબી ટેરિફ લાદશે, પ્રધાનમંત્રી માર્ક કાર્નીનું નિવેદન। અને FIH હોકી વિશ્વકપમાં આજે ભારતીય મહિલા ટીમનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે મુકાબલો। આકાશવાણી પરથી સમાચાર પૂરા થયા। હવે પછી આપ 2:30 પ્રાદેશિક સમાચાર સાંભળી શકશો।
2: जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी लिख रहे हैं कि सच, बचपन में कितनी देर खुले आसमान के तले चंद्रमा को टकटकी लगा के देखना और कल्पना की दुनिया में खो जाना कितने नजदीक थे प्रकृति के, हम कितने खुशहाल थे। हम स्मार्टफोन की आज स्क्रीन में हम गिरफ्त हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए फोन लेकर बैठते हैं, फिर ध्यान आता है कि सिर्फ 10 मिनट्स के लिए काम था, इस फोन से 2-3 घंटे कैसे बीत गए। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में हमारी नानी हमें कहती थी कि देखो चांद के पास खरगोश है, उसके 2 बड़े बड़े कान हैं। कुछ समझ में नहीं आता था, फिर भी ऊपर देखकर हाँ बोलते थे। वहीं हमारी एक साथी हैं, वो कह रही हैं कि उन्होंने अपनी माँ की बात याद की और लोरी बताई, लिंबाची छाया ज्यादा जड़ा मधे चंद्रा झोपले। ये जो हमने एक मराठी गीत लोरी के बारे में कहा, माफ कीजिएगा उच्चारण के दोष के लिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, जब एक बार गाने में सुने थे तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, तो चांद के लिए थोड़ा मन को अच्छा नहीं लगा था। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चांद पर जाना तो हम में से हर एक ने सोचा है, मैंने भी सोचा है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही कि मैं मराठी मुलगी अभी तक समझ नहीं पाई कि पुए कौन सा पकवान है जो आप थाली में खाएं और मुन्ना प्याली में। भाई पुए तो एक बहुत ही अच्छी मिठाई होती है। अगर आप, अब तो गूगल सर्च का ज़माना है, अगर गूगल सर्च करें तो आपको नज़र आ जाएगी। वो बड़ा ही मीठा सा अच्छा पकवान होता है वो, जिसे कहीं कहीं मालपुए भी कहा जाता है। अगर आप ये सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज बातें चांद की हो रही, जिसमें कभी मामा दिखते हैं, कभी प्यारा प्रियतम, कभी कितनी गजल और लोरियां इस चांद को देखकर बनाई गई हैं। इतना तो याद नहीं, लेकिन दादी बचपन में मैं चंदा मामा दिखाकर खाना खिलाती थी और गाती थी, ए चंदा मामा आरे आवा बारे आवा नदिया किनारे आवा सोने के कटोरी में दूध भात लेके आवा। और हमारे एक और साथी वो ही आगे कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को लल्ला लल्ला लोरी गाना ही सुनाया है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन तो सभी का भूला होता है। बचपन में कृष्ण भी अपनी माँ से कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौना ले हूँ, तो माँ समझाती हुई कहती कि दूध पियो, जब तुम्हारी चोटी लंबी होगी तब चांद खिलौना मिलेगा। वहीं हमारे एक और साथी 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो इसकी

ईद को याद कर रहे हैं। और हमारे एक और साथी कह रही कि मेरी बेटी जब अमेरिका गई तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की क्लास लेने जाती थी, वहां उसे चांद की कलाओं का प्रोजेक्ट मिला जिसमें हर दिन चांद की कला कौन सी दिशा से उगेगी और कितना हो गई, कब डूबेगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन थी। उसने जब क्लास में बताया कि भारत में पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है और चांद को देखकर व्रत खोला जाता है, तो प्रोफेसर और क्लास मंत्रमुग्ध हो गए और इस बात पर लंबी चर्चा हुई। मेरी बेटी ने जब मुझे ये बताया तो वो बहुत खुश थी और कहने लगी भारत की परंपराएं बहुत अच्छी है। बाद में मैंने इस पर एक कहानी भी लिखी, करवा चौथ एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन में वडोदरा में प्लेनेटोरियम में बैठकर आकाश दर्शन किया था, मानो हम आकाश में चांद सितारों के बीच घूम रहे थे। क्या आपने भी इस तरह से कोई सैर किया है, चंद्रमा को देखने वाला कोई टेलीस्कोप से देखा हो आपने, या आपने इस तरह से प्लेनेटोरियम में जाकर उसका आनंद लिया हो, या अपनी ही आंखों से कभी कभी चंद्रमा को हम देखते रहते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद धरती के बिल्कुल निकट आ गया है, खासतौर से जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो ऐसा लगता है। क्या आपने ऐसा कभी महसूस किया है? क्या आपने चांदनी रात में किसी खुले आसमान के नीचे वो रात बिताई है? हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या सपनों में कभी आपने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि सपनों की बातें भी हो रही हैं, और सपने में कभी किसी ऐसे व्यक्ति से आप मिले हैं जिसे वास्तव में आप मिलना चाहते हैं, या उनसे मिलना मुमकिन नहीं हो आपके लिए अब और आप सपनों में उनसे मुलाकात किए हों, ये हमें बताइए। और अंतरिक्ष की वो कौन सी बातें हैं जो आपको आश्चर्य से भर जाती हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं।

0: डूम टकटन्या।
1: सपने में देखा सपना, ओ सपने में देखा सपना।
2: गोलमाल फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि बचपन की दुनिया भी कितनी सुंदर होती है, आसमान में चमकता चांद, टिमटिमाते सितारे, उड़ते बादल और परियों की कहानियां मन में एक अलग ही ख्वाबों की दुनिया बसा देती है। माँ जब चंदा को दिखाकर कोई कहानी सुनाती थी तो लगता था जैसे चांद सचमुच हमारा अपना साथी है। कभी उसमें चरखा काती बुढ़िया दिखाई देती तो कभी लगता चांद परियों का घर है। समय बीता, बचपन पीछे छूटा और हम बड़े हो गए, लेकिन चांद के प्रति वो प्यार आज भी वैसा ही है। इंसान ने रॉकेट से चांद तक पहुंचकर विज्ञान की नई ऊंचाइयां छू ली, फिर भी बचपन के उस चंदा में बसे सपनों और कल्पनाओं की चमक आज भी मन को सुकून देती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि चांद पर परियों का निवास और बादलों से पल में मौसम बदलना कल्पना और सौंदर्य का प्रतीक है, जहां प्रकृति और मनुष्य का मन दोनों मिलकर एक दिव्य लोक की रचना रचते नजर आया करते हैं। ये वास्तविकता से दूर एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां जिज्ञासा और कौतूहल से एक अजीब सी खुशी उत्पन्न हो सकती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब माँ बच्चे को चांद से बहलाया करती थी और बच्चों को लोरी सुनाया करती थी चंदा मामा दूर के। बच्चों को प्यार करती, कहती चंदा है तू मेरा सूरज है तू, और आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। बच्चा जब किशोर से युवा होता तो चांद की परिकल्पनाएं बदल जाती हैं, सौंदर्य की तुलना चांद से करता है। चांद से महबूबा हूँ मेरी तो आज बात होगी चांद की, चंदा हो चंदा किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि किशोरावस्था के किस्सों कहानियों के स्वर्णिम कालक्रम की झांकी दिखाती भारत है, जहां काल्पनिक कथानक में ही संसार बसते थे। कभी विभिन्न चंद्रकलाओं में कल्पना नजर आती तो कभी टिमटिमाते सितारों में स्वयं को नियोजित कर स्वप्न संसार में विचरण करते थे। पता ही नहीं चला कि कभी चरखा तो कभी खरगोश की झांकी दिखाती वही चंद्रकलाएं पूर्ण व्यस्कता प्राप्ति पर महबूब के सौंदर्य की झांकी में कब तब्दील हो गई। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि बचपन की सुरीली यादें, माँ के आंचल में छुप जाना और माँ की गोद में सर रखकर सोना, उसकी ममता भरी आवाज में लोरी सुनना आज भी याद आता है तो आंखों से अश्क बहने लगते हैं। एक माँ ही तो थी जिसकी गोद जन्नत से कम नहीं थी। आज अपने प्रोग्राम से दिलों में दस्तक आप गीतों के जरिए दी जाएगी। हमारे और साथी कह रहे कि ममता, माँ और बेटा बेटी का एक अजोड़ रिश्ता, सबको निछावर करने वाली माँ और उनका प्यार दुनिया में भगवान से उच्च दर्जे का माना जाता है, और बच्चों को संभालना, रूठना, मनाना शायद यही गीतों की इबारत है। लोरी के बिना माँ का साथ, प्रेम मरते दम तक उनकी लोरी याद रहती है। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि वो क्या कहते हैं आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किसकी आवाज में है और किसने लिखा।

हरिहरन और साधना सरगम की आवाजों में सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आप चांद को, सितारों को देख सकते हैं, सूरज को नहीं, इसलिए मामा कहते हैं क्योंकि बहन भाई को बहुत लाड प्यार करती है लेकिन बार बार भाई का नाम नहीं ले सकती और अपने बच्चों को जरूर याद दिलाती है। लेकिन हमारे एक साथी ने कहा कि चंदा एक ऐसा रिश्तेदार होता है जो सबसे अच्छा होता है, तो सूरज की बात अगर हो की गई है तो हम ये भी बताना चाहेंगे कि सूरज के लिए भी एक रिश्तेदारी रखी गई है, तो किस नाम से सूरज को बुलाया जाता है? अगर चंदा मामा है तो सूरज क्या है? एक गीत में भी इसका जिक्र आता है, आप बताइए। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि बहनें चांद को अपना भाई मानती है, अक्सर छोटे भाई को प्यार करती हैं, बहनें चंदा ही कहती हैं, वे छोटे भाई के रूठने पर अक्सर कहती हैं कि अगर तुमने खाना नहीं खाया तो मैं ऊपर वाले भाई के पास चले जाऊंगी, रूठ जाऊंगी तो फिर नहीं आऊंगी। ऐसे में कटोरे में दूध भात लेकर माताएं भी अपने लल्ला को समझाते हुए कहती कि तू जल्दी जल्दी खा नहीं तो ऊपर से चंदा उतर के आएगा और तेरा दूध भात गटक जाएगा। माँ की बातों पर विश्वास करके बच्चे जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और चांद कभी उतरता नहीं है। परियों की कहानी तो अलग ही मशहूर है कि चंदा के पास तमाम परियां हैं जो बच्चों को सुलाने के काम आती हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज हम लोग भले ही फ्लैट संस्कृति में जीवन जी रहे हैं जिसके फलस्वरूप चांद तारे हमारे लिए दुर्लभ है, लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए भरी दोपहरी में ही केवल चांद तारों के सफर में रहेंगे बल्कि अपने बचपन से यौवन तक की उपलब्धियों को नाना नानी दादा दादी की कहानियों के माध्यम से परियों द्वारा भी मुखातिब होंगे। हमारी एक और साथी कह रही कि आसमान चांद सितारों का नजारा, बचपन में चांद को देखकर सपनों की दुनिया में खो जाना, आप माँ से सुनी थी कहानियां, लाखों परियां रहती थी, कई आकृतियां दिखाई देती थी, चरखा काटती बुढ़िया, चंदा ने थाली में खाई मिठाई और हमें दी प्याली में अनोखा बचपन, बड़े होकर भी चंदा से प्यार कम नहीं हुआ। और हमारे एक और साथी कह रहे कि बचपन में चांद से लेकर मन में एक अनोखी और जादुई दुनिया बसी होती थी, तब लगता था चांद पर परियों का बसेरा, एक बुढ़िया माई चरखा काटती, समय के साथ बड़े हो गए और अंतरिक्ष में विज्ञान ने तरक्की कर ली, रॉकेट यान भी पहुंच गए, लेकिन चांद से हमारा वो पुराना और प्यारा रिश्ता आज भी वैसा ही है। चांद और बचपन

कल्पनाओं में चांद कोई दूर का ग्रह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह लगता है। बच्चे उसे खिलौना मानते हैं और उससे जुड़ी सारी कहानियों को सच मानते हैं। वाकई जब चंदा की बातें होती हैं तो आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है बच्चों की और चेहरा कितना रोशन नजर आता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवाते हैं हम और आप हमें ये बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है, फिल्म का नाम क्या है और ये आपने बताया नहीं कि सपने में आप किसी व्यक्ति से मिलना चाहते थे क्या। गोलमाल फिल्म के उस गीत की तरह ही हमने आपसे ये पूछा कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप मुलाकात करना चाहते हैं पर वास्तविक जीवन में मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन सपने में हुई है। वो सपने हमसे साझा कीजिए और सुनिए ये गीत।

पारसमणि फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि चांद को यदि मामा कहा जाता है तो सूरज को क्या कहा जाता है, वहीं हमने तो सुना है चाचू, जिसके बारे में हमारे बहुत से साथियों ने कहा। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि सूरज संग अक्सर बेटे की तुलना या उपमा की जाती है, वंश का नाम सूरज की तरह रोशन करेगा। हमारे एक और साथी कहते हैं हम तो अपनी नन्ही परी को चांद की बहुत बातें बताते हैं, चांद दिखाते भी हैं क्योंकि हमें तो चांद बहुत अच्छा लगता है, और हमने अपनी परी से कई बार पूछा कि चांद अच्छा लगता है कि सूरज, कि दोनों, पर उसने सदा ही चांद को अच्छा कहा। हमने उसे समझाया कि सूरज भी बहुत अच्छा है, तो लगता है आपको सूरज की कहानियां भी उन्हें सुनानी पड़ेंगी, क्योंकि चांद इस तरह से सुकून देता है रातों में कि सभी को वो ज्यादा प्यारा लगने लगता है। वही हमारे साथी कह रहे कि बचपन और चांद का अटूट रिश्ता रहा है, श्री कृष्ण ने भी तो चांद

के लिए हट किया था, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। प्राइमरी कक्षा में चांद पर कविता पाठ्यक्रम में हुआ करती थी, जिसमें जिसे आज भी पोते पोती को सुनाता हूँ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। वाकई ये कविता हमें भी याद आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन की कहानियों में चांद एक आसमानी गोला नहीं था, उसकी गोद में परियां रहती थी, बुढ़िया चरखा काती थी, कभी कभी वो हमारे थाली में चुपके से खीर पूड़ी भी रख देता था। बड़े हुए तो रॉकेट ने चांद की दूरी नाप ली, मगर बचपन की वो दूरी आज भी वही है, जहाँ ख्वाब हाथ बढ़ाने से पहले ही आंखों में उतर आते थे। चांद से मोहब्बत उसकी रोशनी से कम और उन कहानियों से ज्यादा है जो माँ ने उसकी चांदनी में हमारे भीतर रख दी थी। उम्र गुजर गई, चांद वही रहा, बस हम कहानी से निकलकर जिंदगी में आ गए। हमारे एक साथी ने कहा कि सपने में वो श्रीदेवी और राहुल द्रविड़ से मिलना चाहते थे, अभी तक मिल नहीं पाए हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि सूरज को दादा भी कहते हैं, और हमारे एक साथी ने कहा कि सूरज को चाचा चाचू मुन्ना भाई MBBS में कहा गया था इस गीत में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भौतिक प्रगति और तार्किकता के बावजूद इंसान को अब मानसिक सुकून और ठहराव अपनी कल्पनाओं, जड़ों और बचपन की मासूम भावनाओं में ही मिलता है। विज्ञान ने चांद पर रॉकेट और यान भले उतार दिए, लेकिन इंसान के भीतर का वो भावुक बच्चा आज भी चांद की सपनीली कहानियों में ही सुकून तलाशता है। लोक कथाओं के जादू और आधुनिक वैज्ञानिक यथार्थ के बीच के भावनात्मक संतुलन को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। हमारे एक और साथी कहने की चंद्रमा ने सदियों से कवियों को शब्द दिए, प्रेमियों को सपने दिए और अकेले लोगों को एक मौन हमसफर दिया। उसकी शीतल रोशनी में जैसे हर दुख थोड़ा हल्का हो जाता है और हर याद थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। वो दूर होकर भी अपना सा लगता है, शायद इसलिए कि चंद्रमा हमें सिखाता है अंधेरी रातों में भी उजाला बिखेरना संभव है। उसकी चांदनी उम्मीद का वो संदेश है जो हर रात हमें ये विश्वास दिलाती कि अंधकार कितना भी गहरा हो, प्रकाश का रास्ता हमेशा बना रहता है। तो ये सारी बातें आपने भेजी और हमें ये भी बताई कि क्या आपने कभी सफर किया है चांद के साथ। जब हम ट्रेन या बस ऐसे जाते हैं और रातों में जाते हैं तो कई बार हमारी नजर चांद पर पड़ जाती है और ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही सफर कर रहा है। तो वो याद भी हमसे साझा कीजिए और बताइए कि जो गीत सुनवा रहे हैं किस फिल्म का है और संगीत किसका है।

अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, राहुल देव बर्मन की तर्ज और आनंद बख्शी के बोल। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथ ही बार बार कह रहे हैं कि सूरज को चाचू नहीं बल्कि दादा या पिता की उपाधि मिली है, क्योंकि उसे सभी ग्रहों का पिता भी कहा जाता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि सूरज के लिए कौन सा ये रिश्ता तय किया गया है, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इस तरह से चांद सितारों की जो बातें होती हैं, सपनीली दुनिया होती है, कभी कभी कल्पना लोक में जीना भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और एक तरह से मन को सुकून देता है ये। तो इस तरह से आप भी खुश रहें, आबाद रहें। और आज का सुरीला सफर कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार साथियों, आज है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आज का दिन उत्सव मनाता है उन कठिन वैज्ञानिक लक्ष्यों का जो संपूर्ण विश्व के समक्ष भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की मेहनत और क्षमता को सामने लाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड अनंत है और अंतरिक्ष उसकी असीम गहराइयों का एक अद्भुत संसार है। अनगिनत तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली दुनिया है और इसी पृथ्वी पर हमारा देश भारत, जो न सिर्फ सभ्यता संस्कृति के लिए पहचाना जाता है बल्कि हमारे खगोलविदों के महत्वपूर्ण खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, भास्कराचार्य द्वितीय, ये वो नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को समृद्ध खगोल विज्ञान का विशाल ज्ञान दिया। इन्हीं से प्रेरित होकर देश ने नवीन उपलब्धताएं हासिल की। जब एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखता है तो उसे देशों की सीमाएं नहीं दिखाई देती, उसे सिर्फ जीवंत ग्रह दिखाई देता है। जब उस विशाल अंतरिक्ष से अपने देश को देखने का अवसर मिलता है तो मन देश प्रेम के प्रति और अधिक गहरा हो जाता है। इसी भावना को व्यक्त करते हुए जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये केवल उनकी नहीं करोड़ों भारतीयों के हृदय की आवाज थी।

अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। इन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष यात्रियों ने सिद्ध कर दिखाया कि विज्ञान और तकनीक क्षेत्र में भी महिलाएं किसी भी स्तर पर पीछे नहीं हैं। कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जिन्होंने नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की वो अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताया है और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कई वैज्ञानिक मिशन पूरे किए। इसी प्रकार इसरो में भारतीय महिलाओं का योगदान अत्यंत मूल्यवान रहा। ऋतु करिधाल, जिन्हें मंगलयान की रॉकेट वुमेन कहा जाता है, वे मंगलयान मिशन की संचालक प्रमुख में से एक थीं और भारत को मंगल ग्रह तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका रही उनकी। मुथैया वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहीं। नंदिनी हरिनाथ इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक जिन्होंने मंगलयान मिशन में नेविगेशन और मिशन डिजाइन का कार्यभार संभाला था। भारत की अंतरिक्ष यात्रा का इतिहास हमें बताता है कि विज्ञान और तकनीक किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं है। भारतीय महिलाएं और पुरुष मिलकर देश को अंतरिक्ष की नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।

हमारे देश ने अंतरिक्ष की दुनिया की यात्रा आर्यभट्ट उपग्रह से शुरू की और चंद्रमा और सूर्य तक अपने मिशन भेज चुका है। भारत का चंद्रयान 2 मिशन जुलाई 2019 में प्रक्षेपित किया गया था। उद्देश्य था चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करना, लेकिन इस मिशन के अनुभव और सीख को साथ लेकर चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा। 23 जुलाई 2023 को इसके लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की और रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसी सफलता के साथ हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट उतरने वाला पहला देश बना। इसी ऐतिहासिक सफलता को सदा याद रखने के लिए और अंतरिक्ष उपलब्धियों का सम्मान करने हेतु हर वर्ष 23 जुलाई को हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। चंद्रयान 3 की उपलब्धि हमें सिखाती है कि यदि लक्ष्य बड़ा हो, मेहनत सच्ची हो और असफलता से सीखने का साहस हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष स्टार्टअप्स से मजबूत इकोसिस्टम बनाने की अपील की ताकि वे वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकें। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की शुभकामनाएं दी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिवसीय रूस दौरे पर रवाना होंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ईरान ने पड़ोसी देशों को आगाह किया कि वे अमरीकी आर्थिक अभियान में शामिल न हों। भारत और श्रीलंका के बीच क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच कोलंबो में जारी। और हॉकी विश्व कप में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत के लिए मैच जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है, हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के कार्य की भी सराहना की।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। श्री चांदना ने बताया कि उनकी कंपनी ने 3 कारखाने स्थापित किए हैं। इस वर्ष 18 जुलाई को श्री चांदना की कंपनी ने भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस के इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
0: कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक वीएन राव भी उपस्थित थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: देश आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। हर वर्ष 23 अगस्त को यह दिन चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है। वर्ष 2023 में इस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया और साथ ही विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में अपनी जगह बनाई। संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर नेविगेशन और आपदा प्रबंधन तक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी लोगों के दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक इस समय आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में चल रही है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने ब्रिक्स के सभी 11 सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और शिष्टमंडल के प्रमुखों का स्वागत किया। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच खेलों के माध्यम से सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जा रही है। बैठक के अंत में साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। ब्रिक्स युवा अलायंस ने आज लगातार दूसरे दिन ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ विषय पर चर्चा का आयोजन किया। ये ऑनलाइन चर्चा मुख्यतः वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित थी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वस्थ जीवन शैली के लिए साइकिल चलाने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। डॉ. मांडविया ने आज विशाखापट्टनम में ब्रिक्स मैत्री साइकिलिंग कार्यक्रम के बाद मीडिया से कहा कि साइकिल चलाना फिट इंडिया आंदोलन का अभिन्न हिस्सा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। विदेश मंत्री व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सहअध्यक्षता करेंगे। डॉ. सुब्रमण्यम रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव से भेंट के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 27 अगस्त तक जापान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे टोक्यो, नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे। उनके साथ भारत का एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी जापान जा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत और जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी संबंधों की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सफाई के काम में मानवीय श्रम को कम करने और मशीनों के अधिक इस्तेमाल की आवश्यकता है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए सुरक्षा उपाय, सुरक्षा उपकरण और प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य बीमा जरूरी हैं। नौसेना का प्रशिक्षण जहाज सुदर्शनी और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जहाज पर सवार चालक दल के सदस्य और प्रशिक्षु पुर्तगाल की नौसेना और भारतीय समुदाय के साथ पेशेवर और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे। ये INS सुदर्शनी का 15वां पुर्तगाल दौरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित।

0: किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में भी दिन में ऐसे ही मौसम की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां उफान पर हैं।
1: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के नए क्षेत्र के कारण उड़ीसा के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश हो रही है। आईएमडी ने आज केंदुझर, मयूरभंज, रायगढ़, कोरापुट और कलाहांडी में बारिश से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। कलाहांडी के थुआमूल रामपुर में पिछले 24 घंटे में 345 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो राज्य में सबसे ज्यादा है। लगातार बारिश के बीच बंशधारा और सालंदी जैसे नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाके अभी भी जोखिम की स्थिति में है। 7 जिलों में हालिया बाढ़ से लगभग 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और राहत व बहाली का काम जारी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्धपोत निर्माण, अपतटीय पोत और अन्य रक्षा क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। श्री राजनाथ सिंह आज कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड से जुड़े 5 केंद्रों के भूमि पूजन समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार आंतरिक सुरक्षा के मामले में पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 11,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। उन्होंने कहा कि GRSE ने हाल के समय में 100 से अधिक पोत उपलब्ध कराए हैं। GRSE की परियोजनाएं शिपयार्ड की विनिर्माण क्षमता और बुनियादी ढांचे को मजबूत करेंगी। इन परियोजनाओं से समुद्री बलों और अन्य रक्षा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यंत्र इंडिया लिमिटेड के मेटल एंड स्टील फैक्ट्री ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 2 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इनसे स्वदेशी धातुकर्म और रक्षा विनिर्माण को मजबूती मिलेगी। चौथे चरण की औद्योगिक क्रांति और ऊर्जा कुशल तकनीकों से लैस ये दोनों केंद्र उच्च स्तर के विनिर्माण को बढ़ावा देंगे। आयात पर निर्भरता कम होगी और रक्षा, रेलवे तथा रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रेजाई ने पड़ोसी देशों को ईरान के खिलाफ अमरीका के आर्थिक अभियान में शामिल न होने की चेतावनी दी है। उधर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर अमरीकी इलाका बताए जाने के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने फिर कहा है कि जब तक अमरीका अपना रुख नहीं बदलता, हॉर्मुज बंद रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने हॉर्मुज पर अमरीकी दावों को खारिज करते हुए श्री ट्रंप के बयानों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य और अमरीका के बीच की दूरी 7,000 मील से भी अधिक है और ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमरीका ईरान पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारियां कर रहा है। ईरान ने कहा है कि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान होगा और प्रमुख व्यापारिक साझेदारों तथा खासकर चीन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो ईरान के कच्चे तेल का एक प्रमुख आयातक बना हुआ है। समाचार कक्ष से मुनीष शर्मा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को स्थगित किए जाने और कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने की इच्छा एक बार फिर व्यक्त करने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विवाद और गहरा गया है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कनाडा पर आरोप लगाया कि वो अमरीकी किसानों पर काफी अधिक शुल्क लगा रहा है। उधर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिका की मांग को अनुचित और व्यापार समझौते की अनदेखी करने वाली है। श्री कार्नी ने कहा कि कनाडा अपने कामगारों, किसानों, परिवारों और कारोबार की रक्षा के लिए अमेरिका जितना ही शुल्क लगाएगा। प्रधानमंत्री कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा स्वतंत्र रूप से व्यापार समझौता वार्ता करेगा और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जापान में राजधानी टोक्यो के उत्तर पूर्वी प्रांत इबाराकी में आज तड़के 5.9 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप से पानी की पाइप फट गई और कुछ इलाकों में यातायात सेवा पर भी असर पड़ा। भूकंप का केंद्र 70 किलोमीटर की गहराई में था। और अब कुछ खेल खबरें। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 2 विकेट पर

शागिर्द फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सायरा बानो का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर हम उन्हीं की अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, झुक गया आसमां फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल आपने सुने तर्ज शंकर जयकिशन की फिल्म जंगली।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, जिसमें आज अभिनेत्री सायरा बानो अभिनीत फिल्मों से गीत।

आओ प्यार करें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल, उषा खन्ना का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत, दीवाना फिल्म का ये गीत। हसरत जयपुरी ने लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम की शुरुआत में सुन लेते हैं कार्यक्रम में खत भेजने के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा, और कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं मल्हार फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें इस गीत को सुन ले हैं, और उसके बाद आपको बताते हैं कि किसने इसकी फरमाइश भेजी है। इस गीत को लिखा कैफ इरफानी ने, रोशन का संगीत। तो सुनिए मल्हार फिल्म से ये गीत।

मल्हार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, कैफ इरफानी की बोल, रोशन का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता गुजरात से अनिल देसाई, परिमल, बिंदी दत्त और देसाई परिवार, मोरटक्का माफी, खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, शुभम देवी, मिशन भावना, मनमानस और कनिका पटेल, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिर और नूर, चलाला काठियाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल, महबूब दल, इकबाल दल, कटारिया कच्छ से मंतिक राधाणी, डॉक्टर निशांत राधाणी, कबीर राधाणी और रमजान राधाणी। आप सभी की पसंद पर आपने सुना मल्हार फिल्म का ये गीत। और कार्यक्रम का अगला गीत है धर्मात्मा फिल्म से, और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हेवर खेड़ तेल्हारा अकोला महाराष्ट्र से आप हैं, विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारस पायल, श्वेता उर्वीबेन अढ़िया, रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, गुमारेता नगर उपारे से अनिल कवलाले, सुषमा और सबीहा, छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विन कुमार, गणेश राम, बनियापारा धमतरी से रामचंद्र मखीजा, काफिर भाई, सविता मखीजा, बेबी स्वाति और इनका पूरा परिवार सुनना चाहता है धर्मात्मा फिल्म का ही गीत। तो आप सभी की पसंद पर सुनते हैं मुकेश और कंचन की आवाज में धर्मात्मा फिल्म से गीत, जिसे लिखा है इंदिवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

धर्मात्मा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और हम सुनवा रहे हैं आपकी ही पसंद पर आधारित गीत। और अगला गीत मेरा गांव मेरा देश फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश हमें आई है प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर से, वी पूनम नायडू, साजन के, मास्टर शिवांशु, ऋषु, अक्षय और अभिषेक नायडू, अगनपुर धर्मपुरा बस्तर से डी वनिता नायडू, डी कृष्णाराव नायडू, अमृता और संतोष, मालीवेस बीड़ शहर से किशोर उबाले, मंगला उबाले, कोरदा लदन से लवन से शिव कुमारी वर्मा, हेमलता वर्मा, वेद किरण वर्मा और जुनातार फैल, अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन वाघमारे और नेहा वाघमारे, मराठवाड़ा नांदेड़ से वामन मगरे और उनका पूरा परिवार आप सभी के पसंद पर सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज और बोल आनंद बख्शी के। तो सुनिए आपकी ही पसंद पर ये गीत।

मेरा गांव मेरा देश, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत हमने आपकी पसंद पर सुनवाया और आपको हमने ये बताया भी किन किन पसंद पर ये गीत सुनवाया जा रहा है। वैसे हमारे साथी मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहते हैं और अब हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है कि चंबल की कसम फिल्म से, और इस गीत की फरमाइश की है छत्तीसगढ़ दुर्ग शीतलानगर से अर्पा पैरी पार्वती राधा शिवचंद्राकर भगवान चंद्राकर खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति सावित्री देवी मधु आयाम और प्रतीक कुमार ग्राम खकल कोंच जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक सिंह गुर्जर अंशराज सिंह गुर्जर और इनका परिवार गर्ल्स रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता भोलू नीलू विशालराज और वंशराज बर्गीनगर जबलपुर से रविन्द्र गड़े सुभाष दिगंबर राजेश गड़े शिवम शुभांग और सृष्टि गड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए चंबल की कसम फिल्म से ये गीत।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, साहिल धानवी के बोल खय्याम का संगीत। विविध भारती पर समय आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत कार्यक्रम, और अगला पसंदीदा गीत जो हम सुनवाने वाले हैं वो है फिल्म प्यार का मौसम। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत, और फरमाइश किसने की है ये आपको बताएंगे इस गीत के बाद।

प्यार का मौसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसे पसंद किया था एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ, परी, संजना मराठा और मालती चौधरी, स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव, सेक्टर 67 मोहाली छत्तीसगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजलीवाले, शेख शमा परवीन, अलकमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबीन शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। आप सभी के पसंद पर ये गीत हमने आपको सुनवाया। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं शरीफ बदमाश फिल्म का। ये गीत पसंद किया है विट्ठल मंदिर चौक बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, संतोष पगारिया, केशव पटेल, सांगा मगर लोड छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन। और साथ ही भरी टोला डोंडी से नमित कुमार गौतम, पीहू नीतू मुरली गौतम। और आप हैं इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर। आप सभी के पसंद पर सुनिए शरीफ बदमाश फिल्म का ये गीत।

नाट्य तरंग। आज के इस कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर दो फूल जूही के। लेखन एवं अनुवाद किया है हृदय कौल भारती ने। निर्देशन है दीनानाथ।

0: तो आए के मानी। अरे चीटक तो हमारे शहर के सामने ही रुका। बाप रे, कितना सामान भरा है इसमें। बॉय के माने खिलौना। कितना बड़ा है ये ट्रक, कैसी कैसी चीजें हैं इसमें। संदूक, बिस्तर, सोफा, मेज और वो साइकिल, कैसी प्यारी छोटी साइकिल। इसकी तो सवारी करनी चाहिए। ट्रन ट्रन ट्रन, बचके जरा बचके भाई साहब। मैं नीचे जाकर इसको दिखाता हूँ। पर नहीं, फिर मम्मी डांटनी है तो कभी पड़ता भी है। टी ओ वाई टॉय। तो क्या हुआ, मैं नीचे जाकर ही पढ़ूंगा। बी ओ वाई बॉय। टॉय के माने खिलौना। बी ओ वाई बॉय।
1: अरे धीरे धीरे उतारो भाई, जरा सावधानी से, इसमें काकरी है।
2: अरे चिंता न करो साहब, हम तो फूल की तरह सामान उतारेंगे।
0: बी ओ वाई बॉय, बॉय के माने लड़का, लड़का।
1: अरे क्या करते हो भाई, जरा देखना छूट न जाए हाथ से।
2: एक छूटेगा साहब, रस्सी से जो बंधा है।
0: बॉय के माने खिलौना, टॉय के माने लड़का। इस साइकिल तो नीचे उतार ही नहीं रहे हैं। बी ओ वाई टॉय, टॉय के माने लड़का। टी ओ वाई बॉय, बॉय के माने खिलौना। तू किस बात पे हंसती है रे?
3: टी ओ वाई बॉय
0: होता है क्या?
3: नहीं, पर तुम तो यही पढ़ रहे थे। टी ओ वाई
0: टॉय होता है, टॉय के माने खिलौना। जैसे मुझे नहीं मालूम।
3: फिर क्यों कह रहे थे?
0: मैं साइकिल को देख रहा था।
3: साइकिल? कौन सी साइकिल?
0: जो इस ट्रक में रखी है, ये लोग उतार ही नहीं रहे हैं उसे।
3: ये किसकी साइकिल है?
0: पता नहीं।
3: तुम्हें चलानी आती है?
0: नहीं, मेरे पास साइकिल ही नहीं।
3: मुझे चलानी आती है?
0: मुझे सिखाएगी?
3: ये साइकिल मेरी ही है।
0: मुझे इस पर बैठनी

0: तुम्हारा घर कहाँ है?
1: वो सामने। तुम्हारा?
0: वो वाला जहाँ ये सामान ले जाया जा रहा है ना, ये हमारा अपना घर नहीं है।
1: तो
0: पापा की बदली हुई है तभी हम लोग यहाँ आए हैं। पापा वापस बदली करवा लेंगे तो हम फिर अपने घर वापस जाएंगे।
1: कब?
0: पता नहीं।
1: मुझे अपनी साइकिल पर बैठने देगी?
0: ना पापा ना, मुझे नहीं आता दूसरों को बिठाना, मैं गिर जाती हूँ ऐसे।
1: तो
0: मैं तुम्हें सिखा दूंगी, फिर हम दोनों सवारी किया करेंगे, है ना?
1: तब मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। अरे मैं तुम्हें ही देख रहा था।
0: झूठ।
1: और नहीं तो क्या, मैंने आज स्कूल से आते ही सारा होमवर्क कर लिया।
0: तो फिर बेल सुनते ही बाहर क्यों नहीं आए?
1: मम्मी होमवर्क क्यों देख रही थी, आता कैसे?
0: तुम्हारी मम्मी भी होमवर्क देखती हैं क्या?
1: हाँ। तुम्हारी?
0: मेरी मम्मी भी देखती हैं।
1: मेरी मम्मी को पढ़ना आता ही नहीं पर होमवर्क फिर भी देखती हैं।
0: मेरी मम्मी तो फर फर फर फर सारा कुछ पढ़ लेती है। मैं झूठ कहती हूँ, उसे भी पढ़ना नहीं आता। सीखोगे साइकिल चलाना?
1: हाँ, मैं समझाता तुम भूल ही गई होगी।
0: पापा की तरह, जैसे मैं भी कोई पापा हूँ।
1: वो क्या होता है?
0: जब मैं पापा से कुछ लाने के लिए कहती हूँ ना, शाम को आकर वो कहते हैं, अरे बेटा मैं तो भूल ही गया।
1: मेरी डैडी तो मेरी कोई चीज नहीं भूलते।
2: झूठ, वो भी इसी तरह भूलते हैं।
0: नहीं तो क्या पापा भूल जाते हैं? मम्मी की तो हर चीज उन्हें याद रहती है।
1: नहीं तो वो झगड़ा करेंगी ना।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: मुझे मालूम है, मेरी मम्मी डैडी भी झगड़ते हैं ना।
0: हाँ, मेरे भी।
1: मैं उस समय नींद का बहाना करता हूँ
0: और मैं साइकिल लेके गली में निकल जाती हूँ।
1: मुझे सिखाएगी साइकिल चलाना?
0: तुम सीख ही नहीं रहे हो तो चलो उठो, पहले इस पर पैर रखो। ना ना, नहीं नहीं, ये पैर नहीं बाबा, वो पैर रखो।
1: अच्छा।
0: हाँ, अब बैठो सीट पर। उफ़ो, नहीं, पहले एक हाथ से इस दीवार का सहारा लो।
1: अच्छा, ले लिया।
0: हाँ बस, अभी हाथ नहीं हटाना। अच्छा, जब मैं कहूँगी तब छोड़ना, ठीक है?
1: अच्छा अच्छा, छोड़ू?
0: नहीं नहीं, अभी नहीं, अब सामने देखो ऐसे।
1: ऐसे?
0: तुम तो डरते हो डरपोक कहीं के।
1: नहीं तो
2: मैं डरता हूँ, मुझे कहीं चोट लगी तो मम्मी मारेगी। वो इसकी मम्मी के साथ झगड़ा करेगी, इसको भी मारेगी, फिर ये मेरे साथ कभी नहीं खेलेगी।
1: अब धक्का दो ना।
0: हैंडल ठीक से थामना।
1: अच्छा
0: देखो, मैं अब धक्का देने जा रही हूँ, मैं तब कहूँगी गो, ठीक है?
1: हाँ।
0: लगी तो नहीं?
1: नहीं।
0: अब मैं एक बार चलाकर दिखा दूंगी, तुम ध्यान से देख लेना, ठीक है?
1: अच्छा।
0: देखो ऐसे, फिर घुमाओ ऐसे, फिर ऐसे, देखा?
1: हाँ। तुमने किससे सीखी?
0: खुद ही सीखी।
1: नहीं?
0: और नहीं तो क्या।
3: झूठ, मुझे तो मामा जी ने सिखाई,
0: मैं एक बार भी नहीं गिरी थी। जानते हो ये साइकिल मुझे किसने लाके दी है?
1: पापा ने।
0: नहीं।
1: तो फिर?
0: तुम ही बताओ।
1: मुझे क्या मालूम?
0: मामा जी ने।
1: पापा मम्मी ने चलाने दी।
0: और क्या, मैं इस पर बैठकर बाजार जाती हूँ, सब्जी लाती हूँ, पापा के लिए सिगरेट लाती हूँ, मम्मी पापा मुझे कुछ भी नहीं कहते।
1: एक दिन मैंने भी सिगरेट पी थी।
0: झूठ।
1: झूठ क्यों? चोरी चोरी पी थी।
0: फिर?
1: शाम को डैडी ने सिगरेट ढूंढी, मम्मी ने भी ढूंढी।
0: फिर क्या हुआ?
1: फिर मम्मी ने थक कर कहा, वो चूहे ले

0: गई हूँ।
1: चूहे।
0: फिर उन्होंने झगड़ा किया। मैंने झूठ मूठ नींद का बहाना किया। अब डैडी सिगरेट अपनी अलमारी में बंद रखते हैं ताकि
1: ताकि चूहे न ले जाए। तुम चूहे।
0: जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा मैं भी सिगरेट पीऊंगा डैडी की तरह।
1: फिर तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।

0: खासी ऐसी ही कार थी, उसमें जब चाबी भरते थे वो दीवार के पास पहुंचकर खुद ही मुड़ जाया करती थी।
1: झूठ कहा मैंने, पापा कहते हैं ऐसी चीजें लाने से पैसे बर्बाद हो जाते हैं।
0: मेरी एक सहेली ने उसे तोड़ दिया।
2: तुमने उसे कुछ नहीं कहा?
0: सहेली को क्या कहती?
2: मैं होता तो झगड़ा करता, काय की तोड़ा मेरा
0: बीओ
2: नहीं बीओ वाई
0: बीओ भी पंख होते।
2: आहा, तब हम भी उड़ते।
0: ना बस के लिए खड़ा रहना पड़ता, ना साइकिल सीखनी पड़ती,
2: मैं एक ही उड़ान में स्कूल पहुंच जाता, फिर नाना जी के पास, फिर घर।
0: तब हम खिड़की से अंदर आते
2: चिड़ियों की तरह। मुझे स्कूल की बस बहुत बुरी लगती है।
0: क्यों?
2: और नहीं तो क्या, हम उसमें समा ही नहीं पाते। मैडम सीट पर बैठती है, हम खड़े रहते हैं। पीछे से कंडक्टर अंकल कहते हैं शाबाश, आगे चलो आगे चलो, और आगे से मैडम डांटती है पीछे चलो पीछे चलो। परसों मुझे पीटी सर ने मारा।
0: क्यों, उसे क्या हुआ?
2: हम बस में बैठे थे, ड्राइवर ने एकदम से बस रोकी, मैडम सीट पर बैठी थी, मैं गिर पड़ा। मैडम के होठों का रंग मेरी कमीज पे लग गया।
0: फिर
2: स्कूल पहुंचकर पीटी सर ने पकड़ा और कहा शर्ट पर दाग क्यों है बैड बॉय, फिर मारा। ना मैडम को कुछ कहा ना ड्राइवर से।
0: तुमने पीटी सर से कहा नहीं?
2: मैं क्या कहता, वो उस मैडम को कुछ कहते ही नहीं, बस उसे ही देखकर हंसते।

0: अरे तुम यहाँ बैठी हो, पता है क्या हुआ?
1: क्या?
0: वो थे ना हमारे पेड़ पर बुलबुल के दो बच्चे।
1: हाँ थे तो?
0: वो वहाँ है ही नहीं, जाने कहाँ भाग गए। वहाँ उनकी मम्मी डैडी अब अकेले हैं।
1: उन्होंने शादी की होगी।
0: शादी? तुम्हें कैसे पता?
1: अरे तुम्हें नहीं मालूम, शादी के बाद ही अलग हो जाते हैं।
0: अलग? अलग क्या?
1: उफ़ो, अलग भी नहीं मालूम, नहीं मालूम। BOY टॉय। अलग होता है दूसरे घर में रहना, अलग से खाना पकाना और बस।
0: तुम्हें कैसे पता?
1: बस है पता, मेरे अंकल भी तो शादी के बाद अलग रहने लगे। पहले उन्होंने पापा और मम्मी के साथ खूब झगड़ा किया, फिर अलग घर में रहने लगे। मम्मी बेचारी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी झगड़ा नहीं किया। झूठ कहती हूँ मैं, मम्मी ने बहुत झगड़ा किया, गालियाँ दी, बहुत गालियाँ, फिर खींच कर माथे पर गड़वी मारी। आंटी बेचारी रो रही थी, मुझे तो अंकल बहुत अच्छे लगते हैं।
2: मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी? हंसते किस बात पर हो?
2: तुम्हें इतना भी नहीं मालूम, अलग लड़कियां नहीं होती, लड़के हो जाते हैं। अंकल क्या कोई लड़की थे?
0: लड़कियां क्यों नहीं अलग होती?
2: पता नहीं, डरती होंगी शायद। नहीं नहीं, शर्माती होंगी। मम्मी भी कहती है ना, लड़कियों को शर्माना चाहिए।
0: तुम भी क्या शादी करने के बाद अलग रहोगी?
2: और तुम?
0: ना नहीं, मुझे तो डर लगता है अकेले में।

0: झूठ बोला होगा। मम्मी कहती हैं जो झूठ बोलता है उसे कुछ भी याद नहीं रहता।
1: चल चल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जानती भी हो झूठ बोलना पाप है।
0: तब तो तुम्हें पाप लग गया। कल तुमने झूठ बोला ना, कहा था मम्मी डैडी के साथ कल घूमने जाना है, देर से लौटूंगा।
1: कहा था तो क्या हुआ, नहीं गया?
0: पाप लगा कि नहीं?
1: क्यों, मम्मी डैडी तो गए,
0: तुम क्यों नहीं गए?
1: मुझे उनके साथ घूमने में मजा नहीं आता।
2: झूठ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे अपने साथ लिया ही नहीं। पहले मम्मी ने डांटा, फिर डैडी ने चॉकलेट ला के दी, कहा हम अभी लौटेंगे। झूठ कहा डैडी ने, उन्हें भी तो पाप लगेगा झूठ बोलकर।
1: वो रास्ते में चलते चलते जाने क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं। डैडी को कोई दोस्त मिलते हैं तो ऑफिस की बातें करते हैं, बीमारियों की बातें करते हैं। मम्मी को कोई सहेली मिले तो बस वो यही पूछती है, बड़ी कमजोर लग रही हो, घर में सब ठीक ठाक है ना? मैं उनकी उंगली थामे खड़ा खड़ा थक जाता हूँ। उनका हाथ खींचता हूँ तो उंगली दबाकर तोड़ देती है। मम्मी बस चिल्लाती ही रहती है, किनारे किनारे बेटे, किनारे किनारे चल। जैसे मुझे नहीं मालूम सड़क पर किनारे किनारे चलना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अकेले घूमने जाया करूंगा।
0: मैं भी।
1: तुम कैसे जाओगी, लड़कियां थोड़ी ही घूमने जाती हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ जाया करूंगी।
1: हाँ, हम बहुत दूर घूमने जाया करेंगे, टैक्सी में।
0: हम रास्ते में किसी से बातें नहीं किया करेंगे।
1: हाँ, हम बस आपस में ही बातें करेंगे। मैं सिगरेट पीता रहूंगा जैसे डैडी पीते हैं।
0: जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया करूंगी।
1: क्यों,
0: और क्या, मुझे सिगरेट के धुएं से खांसी आती है।
1: अच्छा, मैं धुआं दूसरी ओर फेंक दिया करूंगा ऐसे।
0: फिर एक दिन तुम्हारी सिगरेट भी चूहा ले जाएगा।
1: खेलेंगे हमारे बाग में, वहाँ कोई नहीं है ना।
0: तुम्हारे सभी खिलौने तो अंदर कमरे में बंद होंगे।
1: नहीं तो, मैंने वो पहले ही निकाल रखे हैं।
0: मम्मी ने कुछ नहीं कहा?
1: जब उन्हें घूमने जाना होता है वो मुझे कुछ नहीं कहती।
0: तो चलो फिर।
1: चलो
0: चलो।
1: देखो ये मेरी कार है, गाड़ी है।
0: मुझे तुम्हारी ये कार बहुत अच्छी लगती है, ये चाबी के बिना ही चलती है ना, सचमुच की कार की तरह।
1: अगर ये सचमुच की कार ही होती
0: तब तुम्हारे मम्मी डैडी इसी में घूमने जाते।
1: जब मैं देता तभी ना, हम खुद इसमें घूमने जाते।
0: हाँ, कार मैं चलाती।
1: अरे, लड़कियाँ भी कभी कार चलाती है क्या?
0: क्यों नहीं चलाती, मैंने क्या पिक्चर में नहीं देखा है?
1: तब स्कूल की बस ड्राइवर क्यों चलाते हैं?
0: पता नहीं, बस बड़ी होती है ना, शायद इसलिए।
1: क्या पौधों को सींचेंगे?
0: वो क्या होता है?
1: सींचना भी नहीं मालूम। इसे नहीं मालूम सींचना क्या होता है।
0: तो क्या हुआ, तुम्हें मालूम था क्या अलग होना क्या होता है?
1: सींचना होता है पानी पिलाना, पौधों को पानी पिलाना, समझी?
0: मुझे आएगा क्या पानी पिलाना?
1: क्यों नहीं आएगा, मैं सिखा दूंगा। चलो बाहर
0: चलो। अरे देखो तो, पानी किस तरह इस लकीर में से अंदर अंदर गायब हो जाता है।
1: इस पौधे को बहुत प्यास लगी होगी।
0: तुम्हें कैसे मालूम?
1: और क्या, हमें जब बहुत प्यास लगती है हम बहुत सारा पानी नहीं पीते क्या? अरे ये बुलबुल तो मर गई।
0: कहाँ?
1: यहाँ तो आओ।
0: अरे ये तो वही बुलबुल है।
1: हाँ वही, जिससे वो अलग हो गए थे, अलग मकान में।
0: अगर वो किसी दिन लौट आएंगे, यहाँ तो ये होंगे ही नहीं, उन्हें कौन बताएगा?
1: अब क्या करें इसका?
0: मैं बताती हूँ, मुझे मालूम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम, झूठी कही की?
0: सच, मुझे मालूम है, जब दादी माँ मरी थी, डैडी की मम्मी ना, सब बहुत रोए थे, मम्मी भी रो...

0: झूठ कहती हूँ मैं, वो तो बस ट्रंकों अलमारियों में कुछ ढूंढ रही थी। झूठ मुंह थी, उस समय रोती थी जब बाहर से कोई आता था। फिर उसने अंकल के साथ बहुत झगड़ा किया।
1: मुझे दादी माँ के पास जाने ही नहीं दिया था किसी ने। मैंने दालान में से चोरी चोरी झांक कर देखा, उसे सफेद कपड़े में लपेटा था उन्होंने।
2: चल हम भी इसे सफेद कपड़े में लपेटेंगे।
1: कहाँ से लाएंगे कपड़ा?
2: हाँ वो लाएंगे कहाँ से? तुम ठहरो, मैं अभी आया।
1: तुम कहाँ जा रहे हो?
2: बस मैं अभी आया। ये रहा सफेद कपड़ा।
1: रुमाल?
2: हाँ डैडी का है, मम्मी ने सुखाने के लिए डाला था।
1: डैडी मारेंगे।
2: वो कुछ नहीं कहेंगे।
1: झूठ।
2: कहा ना, जिस दिन उन्हें घूमने जाना होता है उस दिन वो मुझे कुछ नहीं कहते। अगर मैं बराबरी का बल्ब भी तोड़ दूं, वो आज मुझे कुछ नहीं कहेंगे।
1: क्यों?
2: वो बहुत देर से लौटते हैं ना।
1: अच्छा लपेटो फिर।
2: ना तुम लपेटो।
1: क्यों? तुम क्यों नहीं लपेटोगे?
2: मुझे नहीं पता कैसे लपेटते हैं, मैंने नहीं देखा ना, तुमने देखा है।
3: नहीं मैं डरता हूँ इसे हाथ लगाने से।
1: अच्छा ला रुमाल, मैं ही लपेटती हूँ।
2: लो।
1: मुझे बहुत दुख हो रहा है इसका।
2: मुझे भी।

0: नहीं आ गई?
1: मैं आज स्कूल गई ही नहीं।
0: तुम्हें मजा आ गया होगा घर में बैठे। डैडी मुझे एक दिन भी घर में नहीं बैठने देते, कदाफी से छुट्टी लेते हैं। बड़ों की तो मजे होते हैं।
1: खाक मजे होते हैं, मुझे नहीं लगता अच्छा घर में बैठना।
0: क्यों?
1: वो हर छुट्टी के दिन झगड़ते हैं।
0: हाँ ये तो है।
1: कल पापा और मम्मी ने इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया।
0: तुम्हें साइकिल लेके निकल जाना चाहिए था।
1: आग लगा दूंगी उस साइकिल को, मैं अब उस पर कभी भी नहीं बैठूंगी। लाए पापा अपने लिए खुद ही सिगरेट, मैं क्यों लाऊंगी? मैं तो उस साइकिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगी।
0: क्यों?
1: वो साइकिल मामा जी लाए है ना,
0: उससे क्या होता है?
1: मामा जी की शादी है।
0: तब तो वो भी अलग हो जाएंगे।
1: पता नहीं, मम्मी ने कहा उनके लिए सूट और घड़ी होनी चाहिए।
0: क्यों?
1: अफो, तुम तो कुछ भी नहीं समझते। शादी पर देते हैं ना घड़ी और सूट। पापा को आ गया गुस्सा, कहने लगे मैं कहाँ से लाऊंगा, है इतने फालतू के पैसे मेरे पास। मम्मी ने कहा वो भी तो बेबी के बर्थडे पर साइकिल लाया था।
0: फिर?
1: बस फिर क्या, दोनों ने बहुत झगड़ा किया। मम्मी बहुत रोई, उन्होंने खाना भी नहीं खाया। मुझे पापा अच्छे नहीं लगते जब वो मम्मी के साथ झगड़ते हैं। तुम्हें?
0: मुझे भी नहीं।
1: मेरी मम्मी तो यूं ही पापा से डरती हैं। मैं नहीं डरती वरती पापा से। झूठ कहा मैंने, मैं मम्मी से भी ज्यादा डरती हूँ उनसे। तुम डैडी से डरते हो?
0: मैं क्यों डरूंगा? झूठ, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, वो मारते हैं ना।
1: चल आज पौधों को फिर सींचेंगे।
0: नहीं।
1: क्यों?
0: क्या पता आज और कोई बुलबुल मरी हो। खिलौनों से खेलेंगे।
1: बाय।

0: मुझे ये बारी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें?
1: मुझे नहीं लगती।
0: क्यों?
1: मम्मी कहीं जाने ही नहीं देती, कहती है बीमार हो जाओगी।
2: झूठ, वो कहती है कपड़े भीग जाएंगे। रोज रोज ना कपड़े धुल सकते हैं, ना प्रेस हो सकते हैं। अपने पापा से कहो नौकरानी रखें।
1: तुम्हारी मम्मी तुम्हें कुछ नहीं कहती?
0: कहती तो है, फिर?
1: अरे देखो बैलगाड़ी।
0: कहाँ?
1: वो नहीं देखते, उस मोड़ के पास।
0: अरे हाँ, इधर ही आ रही है।
3: तुमने कभी बैलों को लड़ते देखा है?
0: नहीं, तुमने?
1: मैंने भी नहीं देखा।
0: एक बात कहूँ?
1: क्या?
0: ये लड़ ही नहीं सकते।
1: क्यों?
0: क्यों क्या, इतना भी नहीं समझती? ये बैलगाड़ी में बंधे हैं, लड़ेंगे कैसे?
1: अरे

0: अरे इसने भी बहुत सारा सामान भरा है, जैसे उस दिन तुम्हारी ट्रक में भरा था।
1: वो मैं तो भूल ही गई तुम्हें बताना।
0: क्या?
2: पापा मम्मी से कह रहे थे हमारी वापस बदली हो गई है।
0: सच?
2: और नहीं तो क्या, अब हम अपने घर जाएंगे।
0: कब?
2: पता नहीं।
0: अगर मेरे पास भी बैलगाड़ी होती मैं भी कहीं दूर चला जाता।

0: क्या मैं तुझसे नहीं बोलता कुट्टी है तुम्हारी मेरे साथ?
1: क्यों?
0: मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, आई क्यों नहीं? मम्मी मुझे हर रोज डांटती है, आया ना कांच कपड़ों का सत्यानाश करके।
1: मुझे मम्मी आने ही नहीं देती थी, कहती है इस बारिश में आदमी बीमार हो जाता है।
0: झूठ कहती है, मैं क्यों नहीं हुआ?
1: जानते हो हम जा रहे हैं।
0: कहाँ?
1: वापस अपने घर।
0: कब?
1: अभी, पापा ट्रक में सामान भरवा रहे हैं।
0: तुम भी जाओगी?
1: और नहीं तो क्या।
0: जाने दो उन्हें, तुम यही रहो, वो झगड़ा करते हैं ना।
1: लेकिन पापा मम्मी के बिना कैसे रहूं?
0: तुम अलग हो जाओ।
1: कह तो दिया कि लड़कियां अलग नहीं होती।
0: हाँ, लड़कियां अलग नहीं होती।
1: तू किसके साथ खेला करेगा?
0: पता नहीं। और तू?
1: किसके साथ खेलूं? अपने साथ।
0: एक बात बोलूं?
1: क्या?
0: हम शादी करेंगे।
1: क्या?
0: शादी करेंगे। क्यों?
1: हम छोटे हैं ना।
0: है तो क्या हुआ?
1: हमारी शादी करेगा कौन?
0: हम खुद करेंगे, फिर अलग रहेंगे। जाने दो जिसको जहाँ जाना है, हम यही रहेंगे।
1: मम्मी डैडी के बगैर ही?
0: हाँ, जैसे बुलबुल के बच्चे अलग हुए। पर वो बुट्टी बुलबुल जो मर गई, भी होगी।
1: अरे टैक्सी, पापा हॉर्न बजा रहे हैं, मैं जाती हूँ।
0: जाओगी? तुम ठहरो, मैं भी आया। तुम्हें ये कार अच्छी लगती है ना? ये तुम रखो।
1: कुछ कहेंगे तो नहीं?
0: क्यों कहेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूँगा जो मेरा मन चाहे। तुम इस कार के संग रोज खेलना, खूब खेलना, ऐसे ऐसे, ऐसे।

0: दो फूल जूही के। अभी आपने कश्मीरी नाटक गिली तुरी का हिंदी रूपांतर सुना। लेखक और अनुवादकर्ता थे हृदय कौल भारती, निर्देशन दीनानाथ का था। यह हमारे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति थी।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
3: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
3: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के,
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
3: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: वामन केंद्रे जी, जो ये पूरा ब्यौरा मैं जिस तरह से सुन रहा हूं तो आंखों के आगे पूरे दृश्य चल रहे हैं। एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो है आगे बढ़ने की और अपनी मंजिल को पाने की जबरदस्त ललक, जबरदस्त ऊर्जा, क्योंकि 40 घरों के गांव से आप निकल के आते हैं और फिर एक एक कदम आगे बढ़ता जाता है और आपकी दृष्टि और आपका क्षितिज बड़ा हो रहा है और दिल्ली तक आप जिस तैयारी के साथ और जिस तेवर के साथ पहुंचे वो बहुत बेमिसाल है। ये ऊर्जा जो है जी, ये कहां से आ रही थी?
2: ये ऊर्जा मुझे लगता है कि आपके डिटर्मिनेशन से आती है
1: जी।
2: आपके सारा बैकग्राउंड ऑड है,
1: हाँ,
2: सब के खिलाफ
1: विरुद्ध है
2: और मुझे लगता है जीतने का एक ही जज्बा हो सकता है, जो होती है जिद।
1: वाह वाह,
2: क्योंकि कोई भी ऊर्जा आती है वो आपके जिद से निर्माण होती है कि मुझे तो जाना ही था, मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही पढ़ना था।
1: ये बात,
2: और वो मैं नहीं पढ़ता तब भी मैं और कुछ करता जो इससे बेहतर भी हो सकता था, पता नहीं
1: जी जी,
2: पर मुझे तो वहीं जाना था। तो इसीलिए वो जो तैयारी होती है, जो होमवर्क है, रिसर्च है, आपका प्रेपरेशन है, लक्ष्य अगर आपको मालूम है और जाने का तरीका अगर आपको मालूम है तो पूरी शक्तियों के साथ अपने आप को झोंक देने का आपका स्वभाव होना चाहिए।
1: वाह वाह वाह,
2: मैं स्टूडेंट मूवमेंट में भी था तो मैं इतना सा छोटा नाटा था तो 5000 लोगों के मोर्चा को कंट्रोल कर रहा हूँ और आप जवाबदेह है। उस सारे मोर्चा में किसी ने कुछ भी मिसबिहेव किया तो वो सारा का सारा ठिकरा तो आपके ऊपर फूटने वाला है
1: जी।
2: तो ये सारी जिम्मेदारी का एहसास भी था और इसीलिए वो जिद और श्रम, मेहनत करने की ताकत, मुझे लगता है ये दोनों अगर आपके पास हो तो आपको कहीं से भी कहीं भी जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। आप कहां से आए हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, कहां क्या कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, गरीब हो अमीर हो, आपको कोई मान्य नहीं रखता। आपका लक्ष्य सीधा आपके सामने होना चाहिए और वहां पहुंचने की ऊर्जा, पूरी ताकत के साथ पहुंचने की

0: ख्वाहिश बहुत लंबी होनी चाहिए, पुख्ती होनी चाहिए और काम करने का मादा होना चाहिए।
1: क्या बात है, छोटे कद के हल्की सी दाढ़ी वाले दुबले पतले वामन केंद्रे जब दिल्ली पहुंचे तो वहां की शुरुआती दिन कैसे थे?
0: मैं जब दिल्ली पहुंचा तो मैं कुछ एक आप इमेजिन करते, मैं कभी दिल्ली गया नहीं था, पहली बार गया
1: जी।
0: तो एनएसडी में पहुंचते ही पहले तो ऐसा लगा, मुंबई देख के थोड़ा बहुत गया था तो ये बड़ी 10-12 मंजिला बिल्डिंग होगी, ये थिएटर बड़े बड़े, ये होगा वो होगा वो, वहां गया तो एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, वन प्लस वन का कुछ एरिया है, बाकी तो सारा वन वन एरिया है ऐसा फैला हुआ 7-8 एकड़ में। और मैं जब जा रहा था तो बाहर कुछ वहां की विद्यार्थिनियां आ रही थी, जुलाई का महीना था और जुलाई में बहुत गर्मी होती है दिल्ली में
1: जी,
0: तो जो कुछ लड़के लड़कियां वहां से बाहर निकल रहे थे, चाय का टाइम हुआ था 4:30-5 बजे का, और उसी समय मैं अपना रिक्शा लेके वहां उतरा हूं और एक पायजामा पहना हुआ और एक 3 बटन का शर्ट, और पैंट और एक शर्ट, ऐसे दो ही पेयर थे मेरे पास
1: जी।
0: एक पैंट शर्ट सूटकेस में रखा था ताकि वो दूसरे दिन स्कूल में जाने के समय में पहन लूंगा, और ये पहन के ऐसे ही गया था तो देखा तो सामने से हाई फाई सारे लड़के लड़कियां आ रही कुछ, और हाथ में पैकेट है, सिगरेट पीते हुए जा रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा कि एनएसडी किधर है,
1: वाह,
0: तो मेरी तरफ देख के हंसे हो, बोले यही तो है एनएसडी सामने जहां से हम आए हैं। मैं उनके नाम नहीं लूंगा, वो शॉर्ट्स पहने हुए हैं और वो समय एक ये था फैशन का कि वो सारे धागे जो है वैसे छुटे हुए होते थे शॉर्ट्स के, लगभग इज्जत ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उतनी ही थी, गर्मी बहुत थी। तो ऐसे देखने के बाद मुझे पहला तो शॉक लगा, कल्चरल शॉक, माय गॉड ये एनएसडी है और यहां पर मुझे 3 साल रहना है
1: जी।
0: तो अंदर ही अंदर ऐसा हो गया, वामन केंद्रे संभालो, अब कब वापस जाओगे तो ऐसे एक कुछ सोच मन में आई और धीरे धीरे अंदर गया और रिसेप्शन पे जाके बोला मेरा नाम फलाना है और मैं फर्स्ट ईयर के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। एक साड़ी पहनी हुई औरत थी तो मुझे लगा ये टीचर होगी, तो उन्होंने कहा हाँ अच्छा है, उधर बाहर जाना है आपको, तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर आप अपना सूटकेस और वो जो भी रखना है रखो, और वहां पर एक फर्स्ट ईयर के साथ गैदरिंग होने वाला है सारे उनका स्वागत आगत, तो वहां रख के मैं चला गया। तो जिस महिला से मेरी बात हुई थी तो मुझे लगा वो टीचर होगी, कोई एक्टिंग पढ़ाती होगी या डायरेक्शन। वहां गया तो जब मैं बैठा फर्स्ट ईयर के लाइन में तो मेरे बगल में बैठी थी, मैंने कहा मैडम आप यहाँ क्यों तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं फर्स्ट ईयर में ही मेरा एडमिशन हुआ है।
1: ओके।
0: और उनका नाम था अनामिका हक्सर।
1: ओ हो, घोड़े को जलेबी खिलाना।
0: तो वो मेरी क्लासमेट जो पीएन हक्सर जो इंदिरा गांधी जी के एडवाइजर थे, इलीगल एडवाइजर थे, तो उनकी वो बेटी।
1: वाह वाह।
0: तो फिर वहां से कारण जी आए, फिर माहौल बन गया, फिर क्या कहते हैं स्वागत हो गया, परिचय हो गया, कौन क्या कहां से आया है, तो एक आध दो गाना गाओ, ये करो वो करो, सब हो गया। तो लगा कि नहीं नहीं ठीक है, ये जो पहला शौक था उस शौक से उस सदमे से थोड़ा मैं बाहर आना शुरू हो गया कि नहीं नहीं यहाँ माहौल ठीक है।
1: वो पहले दृश्य में जो लोग थे उनकी कोई सुराग
0: नहीं, नहीं वो नहीं बता उनका नाम बताऊंगा तो मुझे मार पड़ेगी अभी भी अजीज दोस्त थे दोनों तीनों भी।
1: अच्छा ठीक है।
0: और ये मुंबई में ही रहती है
1: चलिए हम लोग अंदाजा लगा लेंगे।
0: ठीक है।
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं।

0: फर्स्ट ईयर जो है वो बहुत तूफानी होता है?
1: नहीं, सारा ही तूफानी होता है एक्चुअली। पढ़ने वाले के लिए मैंने ये तय किया था कि कोई एक सेकंड मुझे फालतू में बर्बाद नहीं करना है।
0: जी जी,
1: मतलब कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरा कोर्स खत्म होगा उसके एक दिन पहले मैं दिल्ली से निकलूंगा।
0: अरे कसम,
1: मतलब मैं रहूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए यहाँ नहीं रहना है, मुझे जाना तो महाराष्ट्र है।
0: वाह वाह,
1: क्योंकि मेरी जो मातृभाषा है वो मराठी है और थिएटर की जो यहाँ की हालात है उससे बेहतर तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, खासकर हिंदुस्तान की कक्षा में तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर थिएटर तो या तो बंगाली है या मराठी है, तो मैं वहां से क्यों हटूं?
0: जी,
1: तो इसीलिए मैंने, मेरा जो हर दिन था वहां का, मैंने कोई क्षण ये था कि शाम को अगर मेरी रिहर्सल नहीं है और वहां जो भावलपुर हाउस में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहां कुछ देखने के लिए मेरे लिए नहीं है तो मैं भाग जाता था। हम दो तीन लड़के लड़कियां जो हमारी दोस्ती हो गई, तो ये तो कमानी ऑडिटोरियम में जाके कुछ किशोरी ताई यामोनकर के गाने सुन रहे, भीमसेन जोशी की महफिल अटेंड कर रहे हैं, या शिव कुमार शर्मा जी का संतूर अटेंड कर रहे हैं, या खान साहब का सरोद अटेंड कर रहे हैं, या श्रीराम सेंटर में जाके कोई और बाहर का नाटक देख रहे हैं, या बगल में रशियन सेंटर था वहां जाके कुछ फिल्म देख रहे हैं, या जापानी सेंटर था वहां जाके कोई उनका फोक आया है वो देख रहे हैं। नहीं तो यहां भी कुछ नहीं है तो सीधा कोई एक दूर दराज पे चाणक्यपुरी में थिएटर हॉल था, जो फिल्म समझ में नहीं आए ऐसी अंग्रेजी फिल्में जाके देखते थे।
0: वाह वाह वाह,
1: वो इसीलिए था कि शाम फालतू में बर्बाद नहीं करनी।
0: क्या बात,
1: मेरी रिहर्सल है तो मैं रिहर्सल में रहूंगा, या मुझे किसी और को मदद करनी है तो उनके साथ रहूंगा, सीनियर्स के साथ। तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का बहुत ही अच्छा खूबसूरत माहौल था। वो सुबह 8 बजे क्लासेस शुरू होती थी और रात को कितने बजे खत्म होगी इसका कोई अंदाजा नहीं था। सुबह 8 बजते ही आप योगा कर रहे हो, दो दिन हफ्ते में, दो दिन डांस कर रहे हो, दो दिन ट्रेडिशनल डांस कर रहे हो, दो दिन मॉडर्न डांस कर रहे हो, इस तरीके से ये था। किसी दिन फिर मार्शल आर्ट के गुरु मणिपुर से आए हैं, वो अपने को तलवार चलाना सिखा रहे, उसके बाद कोई छाऊ वाला आया है वो पूरा आपकी बॉडी को तोड़ मरोड़ रहा है। एक महीना पहले जाते ही अस्ताद देबो का मॉडर्न डांस एंड मूवमेंट का वर्कशॉप लगा, एक महीना निरंतर उन्होंने हमारे साथ काम किया, तो उन्होंने हमारे शरीर को खड़े रहने की क्या कहते हैं एक तरीके से 4-5 दिन के बाद इतना टर्न ट्विस्ट हो गया कि बॉडी इतना दर्द करती थी कि किसी के हाथ पे या पैर पे टिचकी मारो तो पूरा हाथ पूरा शरीर थरथराता था। तो इस तरीके से कौन जेंडर है, कौन मेल है, कौन फीमेल है, ये सारा खत्म कर दिया एक महीने के अंदर। तो इस तरीके से फिर क्लासेस, थ्योरी क्लासेस होती थी, प्रैक्टिकल क्लासेस होती थी, सौभाग्य से बेहतर एक टीचर मिले
0: जी,
1: और कारण जी जैसा आदमी हमारे डायरेक्टर थे वो भी पढ़ाते थे, और उन्होंने इतने सारे दुनिया भर के टीचर इकट्ठा करके लाए हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और उसमें सौभाग्य से अलकनंदा समर
0: वाह
1: नाम की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन में पढ़ी हुई और वहां कई सालों से पढ़ा रही थी एक्टिंग, वो फ्रेंच आदमी से शादी हुई थी उनकी, सौभाग्य से उनके हस्बैंड

0: कई ट्रांसफर दिल्ली में हुई एज एम्बेसेडर, फ्रांस के एम्बेसेडर दिल्ली में, तो उनका यहां आना हुआ और सौभाग्य से कारण जी को जैसे पता चला कि अलकनंदा समर्थ यहां आई तो उनको उन्होंने 2 साल निरंतर हमें पढ़ाने के लिए बुलाया, इनवाइट किया, तो हफ्ते में उनकी 2 या 3 क्लासेस होती थी। तो इस तरीके का माहौल था, आप लाइटिंग भी पढ़ रहे हो, आप सेट डिजाइन भी पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर भी पढ़ रहे हो, नाट्यशास्त्र भी पढ़ रहे हो, वेस्टर्न ड्रामा भी पढ़ रहे हो, क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो, मॉडर्न इंडियन ड्रामा भी पढ़ रहे हो और उस तरीके के प्रोडक्शन भी कर रहे हो, देख भी रहे हो और पूरी दुनिया से जो थिएटर आता है, मतलब वो एक दिल्ली ऐसा शहर था, तब तो भारंगम वगैरह कुछ नहीं होता है, उस समय एक श्रीराम सेंटर का एक नेशनल फेस्टिवल हुआ करता था 6-7 दिन का, वहां जो भी नाटक आते थे वो तो हम जाके देखते ही थे। पर इस वजह से नाटक आया, कभी महाराष्ट्र से आया, कभी कर्नाटक से आया, कभी केरल से आ गया, अपने अपने, तो वो हमें पता चलता था तो हम जाके देखते थे। तो एक मुझे लगा कि ये अंदर 4 दीवारों में हम जो पढ़ रहे थे उसके साथ साथ बाहर जो घटित हो रहा है उससे कनेक्शन हमारा निरंतर रहा, देश का और दुनिया का नाटक जो देखने का मौका मिला और नाटक करने के तरीके कितने हो सकते हैं, संभावनाएं कितनी बनती हैं, फिर एक से बेहतर एक विद्वान, चाहे वो बादल सरकार है उस समय के जो थियोरेटिशियन भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, सारे बंगाल के थे, कोई गुजरात का था, कर्नाटक का, गिरीश कारनाड जी से लेकर चंद्रकर कंबार जी से लेकर ये सारे लोग आ रहे थे। तो उधर रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता आके कुछ नाटक कर रहे फर्स्ट ईयर में हमारे साथ, तो दूसरा कोई आके रतन थियाम मार्शल आर्ट पढ़ा रहे, तो कावालम नारायण पनीकर नाटक लेके आए मध्यम व्यायोग, उनकी अपने तरीके का, हबीब साहब के नाटक पहले जाते ही पहले महीने में मुझे लगा कि 10 दिन उनके चरणदास चोर के शो मंजर थिएटर में प्रगति मैदान में लगे थे, 10 के 10 शो हमने उस नाटक के देखे।
1: वाह, एक ही नाटक के 10,
0: एक ही नाटक के 10, हर दिन शो कैसे बदलता है और क्या मैजिक है उस थिएटर का
1: जी।
0: ये सारा जो था, फिर एमके रैना थे, बंसी कौल थे जो हिंदी में थिएटर करने वाले भी थे, और भी भाषाओं के आने वाले लोग थे, प्रसन्ना जी थे, तो ये मुझे लगा कि शांता गांधी का क्या कहते हैं रेपर्टरी कंपनी का नाटक देख रहे, जसमा वडन, सैया भय कोतवाल भी देख रहे हैं, उसके बाद बर्नम वन भी देख रहे हो, तो एक इतना एक्सपोजर, थिएटर करने की संभावनाएं, थिएटर कितने तरीके से आदमी इस समय सोच रहा है दुनिया में, वो सबका एक्सपोजर मिलने का एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि मेरे बनने में बहुत बड़ा उसका रोल है
1: जी।
0: फ्रिट्स बेनिविट्स भी हम वहां से ब्रेक की नाटक करने के लिए आ रहे हैं, फलाना कोई और भी ब्रेक के ऊपर नाटक कर रहा है, कोई स्टैनिस्लावस्की पे कर रहा है, कोई चेखव का नाटक कर रहा है, कोई इप्सेन कर रहा है, कोई शाकुंतल कर रहा है, कोई भास का नाटक कर रहा है, कारण जी खुद हमारे साथ विद्या सुंदर नाटक किए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, तो एक तरीके का ग्राइंडिंग जिसको कह सकते हैं, 3 साल में आपको एक ऐसे ग्राइंडर में डाल दिया है और आप उसके साथ घूमते जा रहे हो और देखते जा रहे हो और फिर आपको बाहर फेंक दिया गया कि जाओ अब अपने तरीके का थिएटर देखो।
1: वाह,
0: तो ये मुझे लगा कि पढ़ने पढ़ाने का जो सिलसिला होता है वो वहां पर विजनरी डायरेक्टर, विजनरी फैकल्टी, विजनरी क्या कहते हैं नेशनल इंटरनेशनल थिएटर थिंकर और प्रैक्टिशनर के साथ जब मुकाबला होता है आपका, जो पीटर ब्रुक को आप पहले साल ही समझ रहे हो,
1: बड़ी बात है।
0: सौभाग्य से उनका एम्प्टी स्पेस पहले ही पड़ा हुआ था, पीटर ब्रुक कौन है मालूम थे, तो उनके साथ आमना सामना होना और उनकी फिलॉसफी को और दोबारा उनके मुंह से सुनना, उन्होंने वो व्याख्यान दिए थे और जिसकी किताब छपी थी, उसके बाद उनकी जर्नी जो आगे बढ़ी है उसके बारे में समझना, महाभारत जो उन्होंने किया था उसका डॉक्यूमेंटेशन वो कर रहे थे उस समय, उसके लिए वो बार बार हिंदुस्तान आते थे, तो ये सारा का सारा मुझे लगता है कि जो आनंद का पढ़ाई लिखाई का माहौल होता है वो मुझे उस समय बहुत अच्छी तरीके से मिला और इसीलिए फिर हर तरीके का नाटक।
1: बिल्कुल,
0: आप छोटे सैयद बड़े सैयद जैसा नाटक हो रहा है, आप सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक जैसा नाटक रेपर्टरी कर रही है, श्रीराम सेंटर की रेपर्टरी क्या कहते हैं अंजी तेंदुलकर का कर रही है, घाशीराम कोतवाल कर रही, फलाना कर रही, ये तो मैंने कई सारे मराठी नाटक पहले हिंदी में देखे और फिर वापस महाराष्ट्र में आने के बाद फिर यहां मूल रूप में घाशीराम देखा, वो भी 7-8 साल के बाद
1: जी।
0: तब तक वो बंद हो चुका था, फिर

0: 500 शो के लिए रिवाइव हो गया, वो देखने का मौका मिला यहां रविंद्र नाट्य मंदिर में। तो ये सारा जो होता है, मुझे लगता है कि आपको सैद्धांतिक पक्ष भी समझने की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष रूपांतर कैसे होता है, प्रैक्टिकल में रूपांतर कैसे होता है, उसकी कड़ियों को जोड़ने, खुद के मन में जोड़ने की आदत हो जाती है। क्रिएटिव माइंड तभी पनपता है जब ये कड़ियां जोड़ने लगते हो। तो ये सोचना समझना, कहां पर आज भारत का थिएटर है, कहां पर दुनिया का थिएटर है, मतलब जितना भी एक्सपोजर, उससे आप ये संचित इकट्ठा करते हो, आप अपना एनालिसिस करते हो। पर मैंने ये तय किया था, जो मुझे मिलेगा वो मैं सीखूं।
1: ये बहुत अद्भुत बात है,
0: मुझे कोई ये रिजेक्ट नहीं करना है, ये मेरे काम का है क्या नहीं है, मेरे काम का है क्या नहीं, वो नहीं, जो मिलेगा वो खाना है।
1: वाह वाह,
0: बचाना है, बाद में देखेंगे खून में किसको रखना है और खून से बाहर किसको उतारना है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
2: ए भाई दरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही

दुनिया ये सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के कोड़े पर

0: बड़ा बाजार है, आता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: जिस समय आप एनएसडी में थे, आपके बैच और आपके सीनियर बैच के कुछ लोगों के नाम बताइए।
1: बहुत है, अभी सीनियर बैच में देखिए आलोकनाथ, नीना गुप्ता, सुरेश भारद्वाज, ये श्रीराम बड़े उसी बैच में थे, जो पॉपुलर है उनमें से तो यही है। उसके सेकंड बैच के बाद रत्ना पाठक शाह, दीपा सहाई, उसके बाद उस बैच के बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरे देश में प्रांजल साइकिया है, वहां आसाम में काम कर रहा है, वो सुपरस्टार है आसामीज फिल्म के थिएटर के। उसके बाद मेरे बैच में बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने अनामिका अक्सर का नाम लिया, वीरेंद्र सक्सेना का नाम लिया, अशोक मिश्रा जिनको इतने सारे नेशनल अवार्ड मिले हैं फिल्म लिखने के लिए, और कटल उन्होंने लिखी हुई
0: अवार्ड विनिंग फिल्म,
1: और उनके बेटे ने डायरेक्ट की हुई फिल्म है, वो क्लासमेट है। ब्रिज में होन व्यास है, उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स लिखी है, वो हिमानी शिवपुरी है जो मेरी क्लासमेट है, वो थिएटर और फिल्म और टेलीविजन तीनों मीडिया में काम कर रही है। हेमा सहाय, हेमा सिंह, हेमा सहाय जो रघुवीर सहाय की बेटी, वो दिल्ली में रेपर्टी के साथ काम कर रही थी, फिर एनएसडी में एक्टिंग पढ़ा रही थी, अभी मैं था तभी, अभी अभी रिटायर हो चुकी है। तो ये सारे हैं, सुंदरशी है वहां, एक पूर्णिमा साइकिया है आसाम में, गुलाम सरवर और बहारुद्दीन ये बांग्लादेश में है, राज किरण बम्मा है वो मॉरिशस में है, तो ये सारे भी, अशोक भाटिया है जो यहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, जो चाणक्य में सेकंड लीड में काम करते हैं, तो ये सारे के सारे इतने अच्छे क्लासमेट्स मुझे लगता है हमारे थे, कि जिनसे भी मुझे बहुत सारा सीखने को मिला। चिदंबरा राव जाम्बे हैं जो कर्नाटक में हैं, जिनको संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। नीनासम थिएटर का वो प्राचार्य रहे कई साल तक, और हमारा जो एनएसडी का सेंटर था उसके भी वो डायरेक्टर रहे। तो ये इतने सारे, प्रताप सामल है, वो ये सब छोड़ के यूनियन में चला गया, वो भोपाल में स्थित है, वह था ओडिशा का, पर वो अभी भी वो लिफ्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है, वो भोपाल में है। तो जो भी थे हमारे साथ, मुझे लगता है लगभग सारे उसमें से बहुत सारे लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सतह पर आए हुई बहुत सक्सेसफुल बैच में मुझे रहने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला उन लोगों से। दीपम उत्सल है करके एक हमारा क्लासमेट है, वो लद्दाख में है, तो लद्दाख कल्चरल एकेडमी का वो डायरेक्टर भी रहा है, और अभी वो अपने तरीके से अपना ग्रुप चला के थिएटर वहां भी कर रहा है।
0: क्या एनएसडी में रहते हुए ये आपके जहन में आया कि अभिनय पीछे जाएगा और निर्देशन आगे आएगा?
1: मैं तो गया था एक्टर होने के लिए
0: जी,
1: पर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो ही रहा है। मेरे सारे टीचर बहुत दुखी हो गए, उनको पता चला कि मैंने एक्टिंग से ज्यादा ऑप्ट आउट किया बाहर आने के बाद। सौभाग्य से मेरा कोर्स इंटीग्रेटेड था, मुझे एक्टिंग भी सीखना था, मुझे डायरेक्शन भी सीखना था, स्टेज क्राफ्ट भी सीखना था, स्क्रीन प्रिंटिंग भी सीखना था, फोटोग्राफी भी सीखना था, साउंड डिजाइन भी सीखना था। ये सौभाग्य से सब कुछ 3 साल में जितनी संभवता ट्रेनिंग की संभावनाएं थी वो सब सीखने का मौका मिला। आपको कारपेंट्री भी सीखना है, आपको कॉस्ट्यूम करना भी

0: सीखना है, लाइटिंग भी सीखना है, इससे बड़ा मौका कुछ नहीं। क्योंकि कारण जी का यह कहना था कि भारत में अब स्पेशलाइज उस समय लोगों की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी जाके वो थिएटर करे और सबको अपने साथ लेके चले, ऐसे लोगों की भारतीय थिएटर को आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने स्पेशलाइजेशन से कोर्स इंटीग्रेटेड कर दिया। वो दो या तीन ही बैच के साथ रहा, सौभाग्य से मैं उसमें से एक बैच का हूँ
1: जी।
0: तो मुझे पता चल रहा था कि मेरा एक्टर तो ग्रो हो रहा है, पर साथ साथ ये मेरा ऑब्जेक्टिव देखने का जो स्वभाव है चीजों को, वो ज्यादा ग्रो हो रहा है, मेरे विजुअल्स ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। ह्यूमन हैंडलिंग का तो मुझे अनुभव था ही
1: जी,
0: स्टूडेंट मूवमेंट की वजह से, और लीडरशिप जो भी छोटी मोटी थी उसका अनुभव तो था ही कि चलो एक 10-20 लोगों को इकट्ठा करके कुछ हंगामा करते हैं, ये वाला माहौल तो था। पर ये मेरे अंदर का क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव डायरेक्टर्स माइंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग कल्टिवेट हो रहा है। डायरेक्शन चुनने के दो वजह हैं, एक्टर होता मैं बेहतर एक्टर तो जरूर हो जाता, पर एक्टर होना ये पैरासाइट करियर है
1: जी।
0: इसी के ऊपर निर्भर हो आप। कोई नाटक लिखेगा, सिनेमा लिखेगा, सिनेमा तो मेरे फ्रेम में ही नहीं था, पर वो नाटक लिखेगा, वो आपको उसमें रोल होगा, फिर वो आपको अप्रोच होगा, फिर वो कोई प्रोड्यूसर मिलेगा, उसके बाद नाटक। मैं जिस कारण से स्टूडेंट मूवमेंट और ये सारा छोड़ के गया था कि ताकि मुझे अपनी कहानियां, अपने नैरेटिव्स, अपनी बातें, अपनी विवंचना, आपके आनंद, सो किसी ना किसी की मुझे आवाज बनना था, मेरा नाटक कुछ बात कहें, वो केवल मनोरंजन ना करे, मनोरंजन तो करना ही है, पर मनोरंजन से आगे प्रबोधन और अंतर्मुख और अस्वस्थ बनाना आपको, ये मेरा काम है मेरे नाटक का, जो मैं निरंतर करते आया हूँ। आप जुलवा से देखिए, सैया भय कोतवाल से देखिए, उसके बाद जाने मन से देखिए, रणांगण देखिए, एक झुंझवारे से, जितने भी मैंने मराठी हिंदी में नाटक किए, अब जो लास्ट नाटक किया गजब तेरी अदा
1: जी,
0: या गजब तिची आधा मराठी में
1: जी,
0: या मोहे पिया मध्यम व्यायोग जो है इसका भास का नाटक, उसको भी मैंने आज के चश्मे से देखा है, हिडम्बा के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डायरेक्ट किया हुआ है। तो ये सारा का सारा जो है, मुझे लगा कि ये अगर करना है तो मुझे पैरासाइट करियर चुनना नहीं चाहिए। मेरे सामने ये कि मुझे एम्प्टी स्पेस है और दो लाइट है और दो एक्टर है, मैं अपनी बात कह दूंगा।
1: वाह वाह, क्या बात।
0: तो यहां से मुझे वो भी मैंने सीखा, 300 लाइट इस्तेमाल करना, 3 मंजिला सेट लगाओ, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में एनएसडी आपको नाटक पढ़ाता है। पर अंत में आते आते हमने अपने, तब वो डायरेक्टर थे बीएम शाह, कारण जी निकल गए थे भारत भवन के लिए, तो हमने उनको कहा कि अब हमने बहुत लग्जरी में नाटक करना तो बहुत सीखा, पर अब हमारे पास कोई रिसोर्सेस नहीं है और हमें नाटक करना है, वो भी सीख।
1: ये बात
0: कि मैं जाऊंगा भीड़ जाऊंगा तो वहां दो फ्लड लगी हुई है,
1: उसी में करना है,
0: उसी में। जयदत्त सिरसागर कॉलेज के, वो केशरभाई काकू के बेटे हैं, तो जब वो इंजीनियरिंग कोर्स करके आए तो तब हम ये 3 अंक की नाटक कर रहे थे, तो वो आए एक दिन, बताया कि वो इंजीनियर है, तो हमने कहा कि हमको ऐसा ऐसा कुछ करवा के दोगे, तो उन्होंने डालडे के डिब्बे मंगवा के उसको ट्विस्ट ट्राइन करके उसको बड़ा बल्ब लगा के उसको लटका के हमको उन्होंने 2 या 3 फ्लड लाइट बनवा दिए।
1: गजब।
0: तो ऐसे स्थिति में भी हमारे यहाँ सारे के सारे मुंबई या दिल्ली में रहेंगे नहीं, हम अपने अपने गांव में भी जाएंगे, तो वहां नाटक करने के लिए भी हमको मिनिमम रिसोर्सेस में नाटक करना है। तो बोले क्या करना होगा, हमने कहा आप हमें नाटक करने का टाइम दो, हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम में से हर कोई एक नाटक डायरेक्ट करेगा।
1: अच्छा।
0: हमने अपने 24-25 लोग थे तो 8-8 के इसमें हमने 3 ग्रुप बांट लिए और 8 ग्रुप में हम नाटक करेंगे, एक डायरेक्टर होगा, बाकी एक्टर होंगे, कोई डिजाइनर होगा और बाकी दूसरे जो 2 ग्रुप थे उसमें से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो उस एक साल में हमने 22 नाटक किए।
1: अरे बाप रे,
0: जो हमारे मेन नाटक का हिस्सा नहीं
1: एक्स्ट्रा
0: है,
1: थे
0: एक्स्ट्रा थे ये। मैंने महेश एलकुंजवार जी का यातनागर हिंदी में किया,
1: बहुत इंटेंस नाटक
0: है, और वो जब मैं हैंडल कर रहा था तब मुझे लगा कि आई कैन हैंडल बेटर डायरेक्शन देन एक्टिंग।
1: ओके, ये वो पॉइंट,
0: ये अनुभव होता है ना आपको। और ये एक्टर ब्लॉक्ड हो गया, अब इसको क्या करना है, भले दूसरा डायरेक्ट कर रहा है तो सोल्यूशन आप देते हो, अरे इसको ना ऐसे करने से ना ये जो मेंटल ब्लॉक हो गया ना वो ब्लॉक टूटेगा, और वो जब करके देख रहा है तो आपकी आइडिया एग्जीक्यूट हो रही है। तो मुझे लगा कि नहीं है, मेरे पास लीडरशिप की क्वालिटी है और डायरेक्टर कैप्टन होता है तो उसके पास लीडरशिप तो होना जरूरी है। और कंफर्टेबल जोन में आप अपने टीम को कैसे ला सकते हो और उनसे काम कैसे निकलवा सकते हो, ये सारा मैंने फ्रिट्स बेनिविट्स, बीएम शाह, कारंजी।

0: हबीब कन्वीर जी, रतन थियाम जी, कावलम नारायण पनीकर जी, इनसे सीखा। मतलब वो फ्रिट्स बेनिविट्स एक नाटक करने आए थे हमारे साथ, बैच के साथ, उन्होंने जानबूझकर ब्रेक्ट नहीं किया हमारे साथ, वो मास्टर थे ब्रेक्ट के। वो बर्निनारा और थिएटर अंसाम्बल जो है, जो बड़ी रेपर्टरी है, जिनने ब्रेक्ट को पूरे दुनिया में पॉपुलर किया, उसके वो डायरेक्टर थे। उन्होंने कहा एवरी टाइम आई कम एंड आई डायरेक्ट बर्टोल्ड ब्रेक्ट, सो दिस टाइम आई वॉन्ट टू डायरेक्ट शेक्सपियर विद दिस बैच।
1: क्या बात,
0: हमने करिए। और वो ऐसा होता था कि रोटेशन में आपको काम मिलता था, एक्टिंग, डायरेक्शन या बाकी सारा जो काम है। तो तीन साल के रोटेशन में जिनको कोई काम नहीं मिला था, जैसे मतलब मिनिमम काम मिला था, तो हमारे अशोक मिश्रा, ब्रिज मोहन व्यास, ऐसे सारे जो, उनको उन्होंने लीड रोल दिए।
1: वाह।
0: तो तब तक ये धारणा बन जाती है ना पहले दूसरे नाटक के बाद कि ये बड़ा अच्छा एक्टर है, ये बड़ा अच्छा एक्टर नहीं है वगैरह। उन्होंने उन सारे जिनको काम कम से कम मिला था उनसे वो इतना बेहतर नाटक निकलवाया। अनफॉर्चुनेटली आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, आई ऑप्टेड आउट, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ या तो सेट डिजाइन करूंगा या आपका असिस्टेंट बन के रहूंगा। तो देखा कि हाउ ही हैंडल्स मिरेक्युलसली एक्टर, इतने सहजता से उनसे परफॉर्मेंस कैसे निकलवा रहे हैं ये डायरेक्टर। और दैट वॉज द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑल थ्री इयर्स टाइम।
1: वाह वाह वाह, अद्भुत अनुभव,
0: अद्भुत अनुभव। और कोई सेट नहीं, कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो एक एक्टर के मन में घुसकर उससे आप उस कैरेक्टर तक कैसी जर्नी करवाते हो और उसके जो अर्थ के, भाव के जो सच्चाई है, ट्रूथ जिसको कहते हैं, ट्रूथ इन एक्टिंग, उस ट्रूथ कर ले जाने की जो किमया है, वो जो जादू है, वो मैंने उनसे डायरेक्ट सीख ली। और मुझे लगा कि क्या बात है, ओहो मजा आ गया। और उसके बाद एक्चुअली फिर मैंने सीरियसली लिया, आई शुड बी द डायरेक्टर।
1: ये पॉइंट जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट रहा एनएसडी में, जहां आपने अपनी एक दिशा
0: चेंज की। मतलब दो तीन चीजें एक साथ हो गई कि एक रियलाइजेशन हो गया, दूसरा मेरा संस्कार था, और तीसरा जिस बात के लिए मैं नाटक में आया था, मुझे अपनी बात कहनी है।
1: यस।
0: और मैं आज भी इतने सारे व्यावसायिक भी नाटक किए जहां मुझे अपनी बात नहीं कहनी थी, ऐसे कई सैकड़ों नाटक, कितने भी पैसे देने के लिए प्रोड्यूसर तैयार थे, मैंने आज तक एक भी ऐसा नाटक डायरेक्ट नहीं किया।
1: क्या बात है,
0: जो मुझे अंदर से नहीं लगा।
1: जी, यहां एक गाना सुनते हैं, फिर आगे बहुत दिलचस्प सवाल।
0: बिल्कुल, दिल की बात।

0: वामन केंद्र जी, ये जो एनएसडी का पूरा आपने खाका खींचा के इस तरह की इंटेंस गतिविधियां, लेजेंड लोग, सिखाने वाले, साथी, सब एक तरह से भरपूर, जो किसी भी रंगमंच के प्रशिक्षु का सपना हो सकता है वो आप जी रहे थे उस समय जब आप एनएसडी का कोर्स फिनिश कर रहे थे। केरल का रुख हो गया अचानक।
1: जी, वो इसलिए कि मेरा 3 साल पूरा हो गया
0: जी,
1: और मेरे सामने 2 चॉइस थे।
0: एक तो आपने कहा एक दिन पहले वापस लौटना है।
1: एक दिन पहले मैं वापस लौटा। फिर मुझे दिल्ली से फोन आ गया कि भाई आपका एज एन एक्टर अप्रेंटिसशिप मिलती थी
0: जी,
1: 8 लोगों को, 6 लोगों को एनएसडी रेपरेटरी के साथ 1 साल काम करने का मौका मिलता था और 2 लोगों को एक्सटेंशन प्रोग्राम में मौका मिलता था। तो मुझे बीएम शाह, जो हमारे तब के डायरेक्टर थे और बहुत आदरणीय शिक्षक भी रहे और बहुत अच्छे डायरेक्टर भी रहे अपने आप में, नाटक के भी बाहर,

0: तो उनका मुझे मैसेज आया, चिट्ठी आई कि आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपका रेपर्टरी में भी अप्रेंटिस के हैसियत से सिलेक्शन हो गया है और आपके लिए अगर आप एक्सटेंशन में जाना चाहते हो तो आपके लिए एक नया प्रोग्राम हम डिवाइस करना चाहते हैं।
1: वाह वाह, मतलब दो अलग अलग रास्ते,
0: अलग दोनों भी, दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ है
1: जी
0: और चॉइस मेरे ऊपर छोड़ा है। अब मैं दिल्ली पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सब एक्सप्लेन किया और बोले आपको रेपर्टरी में जाना है तो बिल्कुल जा सकते हो। और उस समय फॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया इंग्लैंड में हो रहा था
1: जी,
0: और वहां पर एनएसडी रेपर्टरी के 6 नाटक जा रहे थे परफॉर्म करने के लिए, जिसमें अलकाजी साहब के 2 नाटक, तुगलक भी था और बहुत सारे 5-6 नाटक थे। और वो केवल इंग्लैंड नहीं है, पोलैंड भी जाएंगे और 6 यूरोप कंट्रीज का टूर लगा हुआ है आपके सामने टेम्पटेशन के लिए। मैंने कहा दूसरा क्या है, आपने कहा कि वी आर डिराइविंग समथिंग, तो बोले आपके लिए हम फेलोशिप देना चाह रहे हैं। तो किस बात की, बोले ड्रामा स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ड्रामा स्कूल त्रिचूर, वहां के जो डायरेक्टर थे तब डॉक्टर जी शंकर पिल्ले
1: जी, तो
0: प्ले राइट
1: एंड
0: नॉवेलिस्ट और बहुत अच्छे टीचर भी, तो उन्होंने कहा कि वो उनके साथ मिलकर हम एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं रिसर्च के लिए और उसका एम होगा टू फाइंड आउट इंडियननेस इन इंडियन थिएटर।
1: अरे गजब।
0: और हमने सब देख लिया है कि यू आर एन आइडियल स्टूडेंट और फेलो फॉर दैट, आप ही ये कर सकते हो और एक सिद्ध कर सकते हो कि वो किस तरीके का रिसर्च किया जा सकता है। तो बोले आपके साथ एक और स्टूडेंट को हम सेलेक्ट करेंगे एनएसडी के आप ही के क्लास में से, और वहां के 2-3 स्टूडेंट आपके साथ रहेंगे जो दे विल हेल्प यू एंड दे मे ऑल्सो डू द सेम टाइप ऑफ रिसर्च। तो बोलो आप कहां जाना है आपको, तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए।
1: अच्छा, एक तरफ इंग्लैंड की चमक दमक दिख रही है,
0: एक तरफ इंटरनेशनल। तो रात में मैंने सोचा कि एक तरफ मैं, मुझे लीड रोल तो कोई देगा नहीं 6 देश में जाने के लिए, पकड़ना तो भाला ही होगा किसी का या एक या दो डायलॉग की एंट्री का। ऑब्वियस है इतने सारे बड़े बड़े एक्टर हैं, जहां पर पंकज कपूर जी है, जहां पर गोविंद नामदेव है, जहां पर आनंद देसाई है, ये सारे के सारे, राजेश विवेक जी है, कौन नहीं है, के रहना है, रघुवीर यादव जी है, ये सारे एक्टर हैं, डॉली आलूवालिया है, इनके सामने उत्तरा भावकर है, सुरेखा सीकरी है, मनोहर सिंह खुद है,
1: बापरे।
0: तो ये सारा इतना, मतलब जो हमारे आइकॉनिक एक्टर्स थे, तो हाँ उनके साथ रहकर सीखने का मौका तो जरूर था उसमें। तो हिमानी शिवपुरी ऑप्टेड दैट, तो वो हेमा ये सब चले गए वहां। तो मैंने कहा मुझे 12 घंटा दीजिए, और मैं दूसरे दिन जाके बोला मैं केरल जाऊंगा, केरल में ही जाना था। तो बोले क्यों, मैंने कहा मैंने सोचा सर क्योंकि ये तो मैं 5-6 देश जाके सीखूंगा तो डेफिनेटली वहां का थिएटर देखने का मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब देखूंगा, पर मुझे गुजरात नहीं मालूम है, मुझे ढंग से कर्नाटक नहीं मालूम है, मुझे ढंग से बंगाल नहीं मालूम है, ढंग से यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड कुछ नहीं मालूम है मुझे, मुझे अपना देश ही नहीं मालूम है, तो मैं बाहर का देश को क्यों समझूं।
1: गजब।
0: मैंने कहा मुझे पहले एक मौका मिल रहा है कि मुझे अपने ही देश को समझने का मौका मिल रहा है, और वो भी केरल जैसा, जहां पर पूरा द्रविड डोमिनेशन है कल्चर में। तो एक आर्य कल्चर से तो मैं हूं, लेकिन मुझे द्रविड कल्चर का एक्सपोजर नहीं है, तो मैं वहां जाना चाहूंगा, और वो भी रिचुअलिस्टिक थिएटर फॉर्म से आपको ये सब्जेक्ट के, क्या कहते हैं, आत्मा तक पहुंचना है, भारतीय नाटक में भारतीयता। तो मैंने कहा इससे बेहतर चांस तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा मुझे रेपर्टरी नहीं जाना है, मुझे केरल जाना है, और मेरा टिकट कर दिया और मैं सीधा केरल पहुंच गया। और वहां जाने के बाद जो 2 साल मैंने बिताया वहां, वो इतना हिप्नोटिक था
1: जी,
0: वो 35-35, 40-40 फुट के हेडगेयर आप देख रहे हो,
1: हाँ,
0: उसके बाद इतने बड़े बड़े कॉस्ट्यूम देख रहे हो, प्रिमिटिव कलर से इतनी ब्यूटी क्रिएट की जा रही है, 100-100 चंडे बज रहे हैं, वो इतनी धारदार हथियार लेके, वो उर्मी और ये मार्शल आर्ट कलरी पाइटू सब उसमें सम्मिलित है। तो वो देखने के बाद तो एक पहले दिन तो मैं 6 घंटा उसी को देखते ही रह गया
1: जी,
0: खाना पीना सब भूल गया, क्योंकि वो अप्लाइड थिएटर है,
1: हाँ,
0: वो रिचुअल को पॉपुलर करने के लिए थिएटर का यूज किया है। तैयम का मतलब होता है दैवम,
1: अच्छा,
0: दैवम मतलब देव
1: जी,
0: उसका वो मलयाली करप्ट प्रोनंसिएशन है, गलत, मतलब जो मलयाली के हिसाब से ठीक है
1: जी जी जी,
0: पर वो प्रोनंसिएशन है तैयम, तैयम का मतलब है देव,
1: देव
0: जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो देव

0: कर आपके सामने नाच रहा है।
1: क्या अनुभूति है, वाह।
0: मतलब वहां कोई जो एक्टर है पीछे, उसकी आइडेंटिटी खत्म की जाती है मेकअप से, कॉस्ट्यूम से, और पता ही नहीं चलता
1: कि कौन
0: है, यूनुस जी परफॉर्म कर रहे हैं या वामन केंद्रे कर रहे हैं और कोई है। उसका एक एक मेकअप करने के लिए चार चार पांच पांच घंटा लगता है, उसकी आइडेंटिटी खत्म करने के लिए। और वो सारा का सारा जो करने वाले लोग है वो गांव के है, कम्युनिटी के सबसे निचले स्तर के लोग है। उसको एक दिन भगवान बनने का मौका मिल रहा है, पूरी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार है।
1: वाह, यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: इतना बड़ा वो कॉस्ट्यूम, मतलब कोई भी अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के तार है तो उसके नीचे से जर्नी हो नहीं सकती।
1: इतना बड़ा है वो,
0: इतना ऊंचा है और कुछ कुछ राउंड है, कुछ कुछ जो वॉरियर्स है वो और स्लीक है, उसके हाथ में वो जो लपलपाती तलवार होती है दूधारी, दोनों धाराएं काम करती है, ऐसे दो दो तलवार से वो लड़ता है, दिखाता है उसका कसब कौशल। तो वो सब करने के लिए उसका प्यूरिफिकेशन होता है तीन तीन महीना, जैसे हमारे रामनगर में या रामलीला में होता है, वो बच्चे सेलेक्ट करते हैं तो उनका प्यूरिफिकेशन होता है, उसी तरीके से इस आदमी का भी प्यूरिफिकेशन होता है। वो दिसंबर से मई के बीच में तैयम होता है, तो तीन महीना पहले उसको अपने औरत के साथ से दूर रहना है, उसको ये नहीं खाना है, उसको ये खाना है, उतनी इतनी बार नहाना है, वगैरह वगैरह वगैरह जो भी उनकी रिचुअल्स है। और जब वो पूरा गांव उसके सामने नतमस्तक होता है, अब मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, ती चामुंडी, ती का मतलब होता है फायर, आग, उसकी देवता। अब जैसे हमारी यहां होली होती है, बड़े बड़े ट्रक के ट्रक लकड़ियां वहां लाई जाती हैं और जो मंदिर का परिसर है उसको कावो बोलते हैं, तो वो बहुत बड़ा होता है कावो, वो मंदिर छोटा है क्योंकि वो गांव का मंदिर है, पर उसके आंगन में और वहां पर जो कठड़ा होता है, जो बैरिकेड वाली दीवारें होती, उसी के साथ बैठने की व्यवस्था है, काइंड ऑफ ऑडिटोरियम, और वो आग

0: जलाई जाती है ती चामुंडी में, और रात भर वो आग जलने के बाद जब जलते कोयले में वो मेकअप कॉस्ट्यूम पहन के उसको 32 बार पेट पे जंप करना है,
1: अरे बाप,
0: 32 बार पीठ के बल जंप करना है। वो जो नारियल के कॉस्ट्यूम बनाए जाते हैं नारियल के पत्तों से जलकर, जिसको बोलते हैं ना हम, जो खराटा हो जाना मराठी में बोलते हैं, वो जल के राख हो जाते हैं। ऐसा काम जो करता है, और वो देखने के लिए हजारों की तादाद में ऑडियंस है वहां, जो वो परफॉर्मेंस देखने नहीं आए, वो भगवान को देखने आए,
1: आस्था है,
0: आस्था है उसके पीछे। इसीलिए वो एक काइंड ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है
1: जी,
0: जैसे अमेरिका में थैंक्स गिविंग है। तो भाई इतना सारा इस साल क्या धान आ गया, नारियल आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये भगवान को ऑफर वापस करना तेरे हिस्से का, उसको धन्यवाद करने के लिए तैयम वो भगवान निकलता है।
1: अच्छा,
0: सो नोबडी परफॉर्म्स दैट, इट इज बिलीव्ड दैट दैट पर्सन इज गॉड हिमसेल्फ।
1: वाह,
0: अब ये सब देखने के बाद ऐसा लगा कि ये बनने के लिए वो पूरी कम्युनिटी वही करती है, दो तीन कम्युनिटी है जो वहां का वंचित कम्युनिटी है, दलित कम्युनिटी से ये लोग काम करते हैं। तो मैंने ऐसे टी चामुंडी करने वाले कुछ कलाकारों को मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा स्किलफुल वही है। तो 40-42 साल में वो सारे खटिया पे पड़े हैं अपने अपने गांव में, जल जाता है
1: जी, जी, जी।
0: अंदर कितना जलता है किसको नहीं मालूम, वो सारे टीबी के इन्फेक्शन से पड़े हुए लोग हैं। उनके इंटरव्यू किए मैंने, और कोई एक पेपर में तब मैंने एक आर्टिकल लिखा था, गॉड ऑन फायर। तो ये सब देखने के बाद आपको वो सब समझ में आता है, जो इंडियननेस को हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ कहाँ है, कलर्स में है, साइज में है, शेप्स में है, आकारों में है, अनुभूति में है, वाद्यों में है, माहौल में है, और कुल मिलाकर आपको वो, मुझे लगता ही नहीं था ये मेरा माहौल है, मुझे लगता था कि ये मेरा है, पर मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया
1: जी।
0: वो द्रविड़ी कल्चर का पूरा गढ़ है ये चार राज्यों ने, मुझे लगता है कि एक भारत की बहुत अलग अस्मिता को आज तक जिंदा बनाए रखा हुआ है। एंड आई एम कॉम्बिनेशन ऑफ दैट एक्सपोजर एंड नॉर्थ इंडियन एक्सपोजर,
1: एक संगम हो रहा है।
0: तो मेरे नाटकों में अगर आपको कुछ अलग दिखता है तो ऊर्जा वहां की, विजुअल्स वहां के, नो इमिटेशन, इट इज इवॉल्व्ड थिंग
1: जी।
0: तो मुझे कभी भी ये मोह नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नाटक में डायरेक्टर बनना चाहता था तो मेरे सामने मेरी फिलोसफी क्या होगी, मैं कौन से फिलोसफी के नाटक करूंगा, मतलब जिसको हम रंग भाषा बोलते हैं नाटक की भाषा में, वो कौन से करूंगा। वो सारा रिसर्च खत्म होने के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे सामने ये सवाल था, लोक शैलियों में हमने चाहे भवाई में किया, तमाशा में किया, रामलीला में किया, रासलीला में किया, यक्षगान में किया, नौटंकी में किया, या नाच में किया, सब हो गया। उसमें तो हमारे दो जो महाकाव्य है, रामायण है या महाभारत है, वो तो फिट हो ही जाते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, जो भी है वो सारी फिट हो जाती है। आप चरणदास चोर को कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो भी एक कथा है, दंत कथा, ये जो भी कथा है। तो मेरे सामने सवाल था कि मैं हबीब साहब की तरह नाटक करूंगा, मैं कावालम नारायण पनीकर की तरह नाटक करूंगा, मैं जब्बार पटेल की तरह नाटक करूंगा, मैं विजया मेहता की तरह नाटक करूंगा, शांता गांधी की तरह नाटक करूंगा, या प्रसन्ना की तरह नाटक करूंगा, किसकी तरह का नाटक करूंगा। मैंने पहले तय किया कि मुझे किसी भी तरीके का नाटक नहीं करना है। वो रतन थियम मेरे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग डायरेक्टर रहे, उनका भी मैंने कुछ नहीं लिया, लेना ही नहीं, क्योंकि तब तक ये था कि चलो कव्वाली एक फोक फॉर्म पे बेस्ड नाटक किया, या इस फॉर्म से लिया, इस फॉर्म से लिया, इसको हम कहते हैं कि गुलदस्ता बना के भी नाटक करके देखे। मेरे सामने एक सवाल था, मैं जिस मूवमेंट से आया हूं, जिसकी आवाज मुझे बनना है, उसकी बर्निंग समस्या जो है, आज की जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, उसको मुझे उठाना है। और ये मैंने जो देखा है, बचपन से भी देखा है, रिसर्च भी किया है, मॉडर्न थिएटर और नेशनल इंटरनेशनल थिएटर का एजुकेशन भी लिया है, अब ये सब अगर वो मुझे मेरी कहानी कहने के लिए उपयोग में आता है तो मैं इसके शरण जाऊंगा।
1: वाह वाह वाह।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।

से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग मनीषा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

ये धड़कनों का कारवां जो कभी किसी के नाम से तेज हो जाता है, बहकने लगते हैं कदम, प्यार में किसी से मिलने की ऋतुएं भी इन वादियों में कई महकते हुए गुल खिला देती हैं, जिनकी रंगत किसी के हुस्न की मिसाल बनकर तन मन को उमंग से भर देती हैं और दिल गा उठता है।

अंतराल के बाद छाया गीत में आप और हम आ गए हैं साथ साथ। पेश है मोहब्बत भरे दिलों की दास्तां। ये इजहारे मोहब्बत भी खूब रंग लाया, मेरे दिल की सदा उनके दिल की सदा बन गई। वो पहलू में आए और यूं बैठ गए जैसे चांद के पास चांदनी रहती है। उनका वो साथ, गर्म सांसों का एहसास, फिर ओठों पे उनके थिरकते गीतों की फुहार इस मुलाकात को और भी रोशन कर उठी। बस दिल की ना पूछिए, वो तो चुपके चुपके आहें भरने लगा।

लेकिन खामोशी बहुत देर तक कहाँ खामोश रह पाती है। जब बात आशिकों के दिलों की हो तो जुबां बोल पड़ती है।

कहीं ना कहीं इन गीतों ने आपके दिल को छुआ तो होगा, आपकी यादों ने दस्तक भी दी होगी। फिलहाल मुझे इस सफर से विदा लेनी होगी। प्यार भरे नमस्कार के साथ मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई,
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

तरानी ने पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की।
1: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
0: ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बैठक 2026 के अंतर्गत सदस्य देशों के खेल मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने खेल विकास, युवा भागीदारी तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने व्यवहारिक और सतत सहयोग के साथ ब्रिक्स खेल भागीदारी का निर्माण करने का आह्वान किया। उन्होंने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धा और खेल विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी साझा करने का प्रस्ताव किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
2: हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। ICMR के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह

0: आने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ताल प्रभा भाग 7। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन की।

विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा शाम 7 बजे। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। संपादन एवं प्रस्तुति तेजश्री कामले। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें सुनिए क्लैरिनेट पर अमर सिंह जस्सल की धुने। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका किसकी हार किसकी जीत। लेखन श्री कृष्ण, निर्देशन सत्येन शरत। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री शायरा बानो पर, प्रस्तुति रमेश गोखले। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेन नेगी। ढलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और रात्रि 11 बजे कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 290। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ताल प्रवाह भाग 8। कलाकार हैं तबला वादक पंडित कालीनाथ मिश्र, प्रस्तुति मनीषा जैन और अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर राजेश झा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे 8:30 पर। आज के फनकार का समय रहेगा सुबह 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के। इसमें सुनिए नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NST नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्र से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। संपादन सहयोग योगिता जाधव, प्रस्तुति तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे का समय रहेगा सखी सहेली का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में सुनिए बालों की समस्या और देखभाल। इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत MD डर्माटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। छाया गीत ये कार्यक्रम होगा शाम 5 बजे। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। संध्या रंजन आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे जयमाला सुनवाई जाएगी। इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। कल की फिल्म है आई मिलन की रात। हवा महल का समय रहेगा वही रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए नाटिका महाकवि तुक्कड़ की सगाई। लेखन शारदा प्रसाद मुरशुंडली, निर्देशन जयदेव शर्मा कमल। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए आज के फनकार। कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार कल्याण जी पर, प्रस्तुति रमेश गोखले। छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर सलमा सैयद का, प्रस्तुति राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने लता मंगेशकर की आवाज में संजोग फिल्म का गाना सुना। इसे लिखा था अनजान ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए अब सुनते हैं आदि पुरुष फिल्म का गाना। सचेत टंडन और परंपरा टंडन की आवाजों में, गीत मनोज मुंतशिर ने लिखा है, संगीत सचेत परंपरा का।

0: संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ताल प्रवाह। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध तबला वादक कालीनाथ मिश्र। आपसे बातचीत की है रामकृष्ण दास ने। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: नमस्कार, संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मैं रामकृष्ण दास स्वागत करता हूं। आज फिर हम उपस्थित हुए हैं तबला वादक, तबला साधक श्री कालीनाथ मिश्रा जी के साथ। ताल प्रवाह में ताल के बारे में, ताल के बारीकियों पर चर्चा हो रही है। हमने सुना है कि जल तरंग, काच तरंग, नल तरंग के साथ साथ एक तबला तरंग भी हुआ करता था
2: जी।
1: उसमें तबले पर राग बजाए जाते हैं, धुन बजाए जाते हैं, और इसके अलावा तबले पर पढ़ंत भी की जाती है। तो पढ़ंत में हमने पंडित बिरजू महाराज जी का बहुत अच्छे पढ़ंत सुने हैं, पंडित किशन महाराज के भी सुने हैं, पंडित गुदई महाराज के भी सुने हैं। इसी सिलसिले में मिश्रा जी से ये पूछना चाहूंगा कि तबला कभी बहुत जोरदार बजाया जाता है
2: जी जी जी,
1: कभी प्रेम से मृदु बजाया जाता है, तो इस बारे में आप श्रोताओं को बताएं ताकि उनको पता लगे कि तबले में क्या खासियत है।
2: पहले तो मैं अपने श्रोताओं को फिर से प्रणाम करता हूं, और हमारे रामकृष्ण दास बाबू ने बहुत अच्छा सवाल किया। पढ़ंत, हर तबला वादक पढ़ंत जरूरी है। जैसे कभी कभी गायक जो गाते हैं तो शब्द पब्लिक तक पहुंचना चाहिए। अगर आप बोल घुमा के बोलेंगे तो शब्द पब्लिक तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए खाली डांस को नहीं, तबला वाले का पढ़ंत बहुत जरूरी है। और रहा तरंग का सवाल आपने कहा, तो ये बहुत पहले बजाया जाता था, अभी आजकल कोई नहीं बजाता है। मैंने जाकिर भाई को सुना है। तो पहले तो हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे भारत में कुछ ऐसे से कलाकार हुए हैं, पंडित राम नारायण जी, जिन्होंने पहले बोलते थे कि आपने, आपको पता है दास बाबू, आपको भी पता है और मैं श्रोताओं को बताऊं कि बहुत साल पहले एक जमाना हुआ करता था कि डांसर के पीछे, भजन गायक के पीछे तबला वाला कमर में तबला बांध लेता था।
1: जी जी, और सारंगी भी,
2: सारंगी वाले सारंगी बांध लेते थे, हारमोनियम वाला हारमोनियम बांध के उनके पीछे पीछे पीछे पीछे जाए,
1: और नाचने वाला या नाचने वाले खुद गाती थी।
2: हाँ, गाती थी। तो ये पहले के जमाने में हुआ करता था मनीषा जी,
1: अदा की ठुमरी।
2: जी हाँ, और करते करते मैं धन्यवाद देता हूं अपने गुरु पंडित किशन महाराज जी को कि उन्होंने तबला, बोले तबला वाले को बुलाओ, सारंगी वाले को बुलाओ, गाने वाले को बुलाओ, ये शब्द खराब नहीं है तो वो चुभता है बात। तो ये श्रेय जाता है हमारे पंडित राम नारायण जी को, जिन्होंने सारंगी को कहां से कहां पहुंचा दिया, फारूक के पिताजी लतीफ खान साहब को। तबले में नाम आता है पंडित किशन महाराज जी का
1: जी।
2: उन्होंने एक गद्दी दे दी कि नहीं, तबला पर भी उठान बजाएगा तो बजाएगा गुदई महाराज जी। संतूर एक कहां से आया, और आज पंडित शिव कुमार शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, मैं प्रणाम भी करता हूं क्योंकि बहुत
1: किस बुलंदी पर पहुंचा
2: दिया। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया जी को ले लीजिए। आज के जमाने में भारत में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, तबला वादक अनिंदो चटर्जी हैं, अरविंद आजाद हैं, सपन चौधरी हैं, अनिस प्रधान हैं, कुमार दादा का तो खैर जवाब ही नहीं है। तो पढ़ंत, पढ़ंत बहुत जरूरी है। आज मैं श्रोताओं को पढ़ के सुनाता हूं कि पढ़ंत का क्या अंदाज है। तिन तिन ना द्रुत लय की चीज है। इसको कहते हैं द्रुत लय का मतलब क्या हुआ, लय के तीन प्रकार हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। विलंबित का मतलब होता है ठहराव, आपको ठहरा। साधक का मतलब होता है, आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि साधक बैठे हैं, साधक का मतलब होता है तपस्या। आजकल तो लोग प्रैक्टिस बोलते हैं कि प्रैक्टिस किया, रियाज और प्रैक्टिस में अलग अलग शब्द है वो। तो श्रोताओं को, और ताल प्रवाह, प्रवाह का मतलब होता है कि चाहे उसको गंगा की तरफ ले लीजिए कि कैसे वो, उनकी क्या धारा है, तो हम धारा लेते हैं तिन तिन ना तक, दिन दिन ना, दिन दिन ना, दिन दिन ना, दिन दिन ना। इसमें मैं फारूक भाई को निवेदन भी करूंगा कि थोड़ा झाला टाइप का बजाएंगे। उठान, पढ़ंत का उठान, दिन दिन दा, दिन दिन ना, ना, दिन दिन ना, था। एक बड़ा सुंदर बंदिश पढ़ रहा हूं, तीन दर्जे का। तीन दर्जा क्या चीज है दास बाबू? एक ही बोल के तीन अलग अलग अंदाज, उसे कहते हैं तीन दर्जा। एक स्पीड, दो स्पीड, तीन स्पीड, आ दिन दिन ना, आ दिन दिन ना, दिन दिन ना, तक दिन दिन।

0: ये है पढ़न। अब इसी तीन ताल में हम देखिए अलग छंद लेते हैं। कतिन नाता कतिन नाना कतिन नाना कतिन नाता कतिन नाता कतिन नाना। आड़ कुआड़ बियाड़ का अंदाज
1: जी जी।
0: तक दिन सात का छंद है। बिजली परन क्या चीज होती है, ये खास बनारस का अंदाज है।
1: अच्छा।
0: तड़ी तड़ तड़ धेते धेते धेते धेते क्रांत न कतिन था करते नाना दिन दिन नाना तिन तिन नाता कतिन तड़ी तड़ तड़ धेते धेते धेते धेते क्रांत न कतिन था घगरात बिजुगटान घगिदन था तक घगिदन था तक घगिदन था दिन ना दिन दिन नाना दिन दिन नाता दिन दिन
1: बजा के भी बताइए ना।
0: तड़ी तड़ तड़ धेते धेते धेते करते ना दिन दिन नाना दिन दिन ना अब शुपरन क्या है? ओम दिमिक दिम डमरू बाजे गिर कैलाश शिखर पर नाचे धीमिक धीमिक। अब देखिए धीमिक धीमिक तो वजन में वजन आना चाहिए, ये नहीं कि मैं खाली चिल्ला के बोल रहा हूँ
1: जी।
0: ओम धीमिक धीम डमरू बाजे गिर कैलाश शिखर पर नाचे धीमिक धीमिक धीम मृदंग बाजे शीश गंग अरधंग विराजे उमा रमा हर सब सुर साजे कर त्रिशूल डमरू दी नाचे था। यह है पढ़न। अब ये ताल द्रुत लय हमने लिया है आज श्रोताओं को, तो मैं फारूक भाई से निवेदन करता हूँ कि एक छोटा सा झाला कांग

0: तो ये था चार दर्जे का चीज। अब एक बात और बताना चाहूंगा
1: जी
0: कि हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार जैसे अब्बा जी मतलब जाकिर भाई के पिताजी अलरखा खा साहब
1: जी जी
0: बहुत से पिक्चरों में म्यूजिक भी दिए हैं वो। और मैं एक फिल्म का नाम बताना चाहूंगा जिसमें पंडित शिव कुमार जी का तबला है पूरा।
1: अच्छा
0: हाँ जी
1: आपको हाँ, वो तो तबला भी बजाते थे
0: लाजवाब
1: जी जी।
0: और लयकार तो ऐसा थे कि मतलब आप बताइए
1: संतूर में दिखाते
0: जी शब्द। हाँ जिस पिक्चर का नाम है गाइड।
1: अच्छा
0: राग है मिश्र खंबावती बहुत कम सुनने को मिलता है
1: जी।
0: ताल है कहरवा अद्धा तीन ताल और झाला।
1: अरे वाह
0: ये शिव जी का खास तबला बजाया हुआ है। गाना है

ताल प्रवाह। इस श्रृंखला की ये थी सातवीं कड़ी। जाने माने तबला वादक कालीनाथ मिश्र से बातचीत की रामकृष्ण दास ने। इस श्रृंखला में कालीनाथ मिश्रा जी को सारंगी पर लहरा दे रहे हैं उस्ताद फारूख लतीफ खान और हारमोनियम पर हैं विनोद पड़गे जी। तकनीकी सहयोग वंदना ठाकुर और निखिल धामापुरकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

0: आजादी, जरा याद करो कुर्बानी।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

के विशेष जयमाला कार्यक्रम में हम सलाम करते हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को।

साथियों, भारत भूमि आदिकाल से ही जहां एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम प्रेम और अपनत्व के मर्म को दिल में समाये रखती है, वहीं दूसरी ओर ये धरती अपने योद्धाओं के पराक्रम और अतुलनीय शौर्य के लिए भी प्रख्यात है। जहां हर काल में देश के वीरों ने अपने लहू से वीरता की इबारत लिखी और देश विदेश में आर्यावर्त का परचम लहराया। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, पंजाब में जन्मे और बचपन में ही शेर का शिकार करने वाले शेरशाह सूरी, राणा सांगा, समाना के युद्ध में मुगलों को धूल चटाने वाले बंदा सिंह बहादुर की दास्तान हो, छत्रसाल बुंदेला की बात हो, वीर शिवाजी महाराज, महारानी लक्ष्मीबाई, या फिर बात करें बाबू कुंवर सिंह की वीरता की, जिन्होंने जीत की इस मशाल को कभी भी बुझने न दिया और मातृभूमि के लिए मर मिटने की अलग को जगाए रखा। सदियां आईं और गईं, वक्त बदला, तारीखें बदलीं, जमाने आए और गए, लेकिन शौर्य और पराक्रम का वो दस्तूर बदस्तूर कायम रहा कि देश के वीरों और मां भारती के रणबांकुरों के बढ़ते कदमों की आहट, आसमान में उड़ता गुबार, विजय घोष का नाद, सिंह सी गर्जना, बिजली सी टंकार, फौलाद का जिगर और फतेह के तिरंगे को चूमने का वो हुनर, इनके बेखौफ कदमों की आहट ये बताती है कि ये जुनून भी पुराना है, ये लहू आशिकाना है, जिसने दास्तान हिंदुस्तान के इतिहास में जाने कितनी ही जंगी हवाओं का रुख मोड़ा है। फिर चाहे सिकंदर आजम की बात हो, हूणों की नस्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का मादा हो, मुगलिया सल्तनत के मगरूर सिर को झुकाने का हुनर हो, या फिर बरतानिया हुकूमत को घुटनों के बल लाने का फन हो, देश के वीरों ने कुर्बानियों पे कुर्बानियां दी, लेकिन अपने सिर को कभी दुश्मनों के आगे झुकने न दिया। बदलती तारीखों ने समय समय पर हीरे और माणिक जैसी चमक लिए, हमारे देश की धरती को कई न भूलने वाले जख्म भी दिए। 18वीं और 19वीं सदी के पूर्वार्ध का दौर भी कुछ ऐसा ही था, जब सांसों में घुटन थी, हवाओं में बेड़ियों की जकड़न को महसूस किया जा सकता था। विश्व मानचित्र पर बरतानिया हुकूमत के बढ़ते कदम भारत तक आ पहुंचे थे और इस परतंत्रता की बेड़ी से आजाद हुए मुल्क भारत ने फिर एक बार वीरता का इतिहास रचा। सन 1947 को देश की आजादी के साथ ही इस देश के दो हिस्से भी हुए। आजादी की खुशियां तो मिली, लेकिन दिल का सुकून जाता रहा, अमन और चैन की तलाश में हाथ खाली ही रहा।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। सन 1948 के इस युद्ध की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता था कि जम्मू कश्मीर की सीमा से सटे इलाके जिनमें पुंछ, गुरेज, झांगर, नौशेरा और राजौरी तक शत्रु आ पहुंचा और यहाँ के रास्ते बारामूला तक घुसपैठ बेहद तेज थी, जिसमें शत्रु बहुत मायने में खुद को कामयाब समझता भी रहा। बारामूला के रास्ते श्रीनगर और फिर कश्मीर घाटी को तबाह बर्बाद करने की ख्वाहिश लिए जैसे ही दुश्मन राजौरी तक पहुंचा, उसे कलाल गांव में लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की डोगरा रेजिमेंट

गवर्नमेंट ने घेरना शुरू किया। कर्नल बुटालिया के लिए चुनौतियां बड़ी थीं, क्योंकि यहां युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। एक तरफ चार डोगरा रेजिमेंट, जिसे चार सतारा भी कहते हैं, जिनका युद्ध पर विजय प्राप्त करने का शानदार इतिहास था। दूसरी तरफ 19 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक कुमाऊं रेजिमेंट के जांबाज सिपाहियों ने मोर्चा संभाल रखा था। सेना की आवाजाही, हथियारों को मुहैया कराना, रसद की सप्लाई और घायल सैनिकों को शिविर तक ले जाने का भी काम सेना के ही सुपुर्द था। ये बात गौरतलब है कि 22 फरवरी 1948 को चार डोगरा रेजिमेंट के प्रथम कमांडिंग अफसर IJS बुटालिया को युद्ध के मोर्चे कलाल के रास्ते आ रही 19 इन्फेंट्री बटालियन की दो टुकड़ियों की वापसी को कवर देना था। साथ ही कलाल की तरफ बढ़ रही एक कुमायूं बटालियन को भी सुरक्षा प्रदान करना था, और ये काम चल रहे भीषण युद्ध के दौरान ही करना था। इस महीने ठंड से सिकुड़ती और बर्फ से ढकी वादियों ने सेना की मुश्किलें खासी बढ़ा रखी थीं। कलाल की बर्फीली दर्रा घाटी के रास्ते आगे बढ़ते हुए चोटी तक सैनिकों को पहुंचना था। पहले भी कलाल के इलाके चावा, झांगर और बरवाली रिज में फतेह का झंडा बुलंद कर चुकी डोगरा रेजिमेंट के हौसले बुलंद थे। लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया ने आगे बढ़ती एक कुमाऊं रेजिमेंट की दाहिनी ओर अपने सैनिकों को तैनात किया। सेना आगे बढ़ने लगी और 19 इन्फेंट्री की दो टुकड़ियां वापसी के रास्ते थीं। हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही, खामोश फिजाओं में बारूद घुलती रही, पंछी आशियानों में फड़फड़ाते रहे, ऊंचे दरख्तों पर मौन का साया था। दर्रा घाटी की बर्फ का रंग लाल हो चला था। रेंग कर घुसते शत्रु सैनिकों को हमारे सैनिकों ने कई मोर्चों पर धर दबोचा, उनके हथियार असलाहे छीनकर उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। कुछ तो हाथापाई में संगीन के हत्थे चढ़े, न हड्डियां कपा देने वाली ठंड की परवाह थी, न मुश्किल रास्ते कर्नल बुटालिया को रोक सके। असलाहे बेशक कम और आधुनिक न थे, फिर भी इनकी परवाह किए बिना शत्रुओं का गिरेबां चाक होता रहा, और चार डोगरा रेजिमेंट के सैनिक अफसर लेफ्टिनेंट बुटालिया की अगुवाई में आगे बढ़ते रहे और बिना रुके, बिना थके नजरें शत्रु की ओर गड़ाए भारतीय सैनिक साथ ही साथ दूसरी रेजिमेंट के भी आगे बढ़ते ही रहे, और सेना की अन्य टुकड़ियों की सुरक्षित आवाजाही की जिम्मेदारी भी IJS बुटालिया निभाते रहे।

इस भीषण युद्ध में कुछ साथी सैनिक साथ छोड़ गए और वतन की राह में अपनी जानें कुर्बान की। अपने कुछ शहीद हुए सिपाहियों को अलविदा कह सेना के जवान अपनी पूरी सूझबूझ से कर्नल बुटालिया के साथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी शत्रु सैनिकों की तरफ से आते एक हथगोले के विस्फोट से लेफ्टिनेंट कर्नल बुटालिया का बायां हाथ उनके कंधे से अलग हो गया, लेकिन इतने पर भी कर्नल बुटालिया न रुके और शत्रुओं को मौत की नींद सुलाते रहे। साथ ही सैनिकों ने उन्हें चिकित्सा शिविर लौटने का इशारा किया और सहायता को आगे बढ़े, लेकिन लेफ्टिनेंट बुटालिया की वीरता का ये फन था कि मोर्चे पर बिना फतेह पाए उन्होंने लौटना कभी सीखा नहीं। सो इस हाल में भी सेना का संचालन करते हुए खुद भी आगे बढ़ते रहे।

के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

भारतीय फौज की डोगरा रेजिमेंट ने इस मुहिम को तेज करते हुए कलाल के पर्वतीय इलाकों से शत्रु को चुन चुनकर मौत की घाट उतारा और कलाल पर आखिरकार डोगरा रेजिमेंट ने फतह हासिल कर सेना के इतिहास में एक और जीत दर्ज की। साथियों, वैसे तो ये युद्ध कुछ और महीने आगे चला, शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर मारा गया, उनके असलाहे, गोला बारूद, तोपखाना, बंकरों और साथ ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को भी भारतीय सेना की टुकड़ियों ने अपने कब्जे में लिया और दुश्मनों को भारतीय सीमा के पार ठिकाने लगा दिया। इस युद्ध में अपनी शर्मनाक हार से शत्रु इस कदर बौखलाया कि आज भी रह रहकर इसकी टीस को महसूस करता है। हम सलाम करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया को।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल IJS बुटालिया की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है गब्बर मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

श्रोताओ, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण की लिखी हास्य नाटिका किसकी हार किसकी जीत। इसके निर्देशक हैं सत्येंद्र शरद।

0: मैंने कहा विजय बाबू हैं क्या?
1: अरे भाई कौन है?
0: मैं हूँ तुम्हारा चचा अनिल।
1: चचा?
0: वाह उस्ताद, वाह वाह, हमें नहीं मालूम था कि तुम खाना भी बखूबी बना सकते हो। भगवान कसम हुआ ना इस वक्त कैमरा।
1: अरे जोड़ो भी इस बात को, आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
0: अब यार जब आए हैं तो बैठेंगे भी। लो
1: बोलो चाय पियोगे?
0: वो तो मैं जानता हूँ कि तुम बिना पिलाए मानोगे नहीं।
1: अच्छा जी,
0: पर

0: अभी साहिबा कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही।
1: ए, ए, ए, ए, ए, उसका तो मेरे सामने नाम भी मत लो समझे।
0: भाभी जी से इतना क्रोध?
1: अबे मैं कहता हूँ।
0: क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई? भाभी तो बेचारी बड़ी सुशील है। भगवान कसम, जब आता हूँ तभी दौड़ कर एक गिलास ठंडा पानी पिलाती हूँ।
1: खैर खैर, ये तो फायदे की बात थी, पर इन औरतों का आजकल दिमाग बहुत चढ़ गया है। दिन भर इनकी चिंता में दफ्तर में खटो, भैंस की तरह इनकी सेवा टहल करो, ऊपर से जब घर में घुसो तो ताने भी सहो, बैठी बैठी कोई ना कोई तीर छोड़ती रहती है।
0: ओहो, ऐसा कौन सा तीर मार दिया भाभी ने, जरा मैं भी तो सुनूं।
1: अब औरतों की तरह मुझे जबानी डायरी तो रखनी आती नहीं। अरे मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि जब भी मैं किसी काम को कहता था तभी कुछ न कुछ सुनने को मिलता था।
0: अच्छा,
1: अब उसी दिन की बात ले लो, कमीज के एक दो बटन टूट गए थे।
0: हाँ हाँ।
1: सिनेमा को देर हो रही थी। मैंने कहा जरा कमीज में बटन तो टांग दो, तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया?
0: क्या
1: बोली? मेरे बस का नहीं है, अपने आप टांग लो।
0: बस बस रहने दो, मैं समझ गया तुम्हें इसमें अपनी इंसल्ट लगी। और
1: या तो तुम मतलब ही लगा लो या फिर मेरी सुन लो।
0: अच्छा अच्छा, या तो नाराज क्यों होते हो?
1: नाराज
0: लो, अब नहीं लगाऊंगा मतलब। तुम ही बताओ आगे क्या हुआ?
1: अरे होना ही क्या था, घर का कोना कोना ढूंढा। अच्छा। तब तो जाकर कहीं एक बटन मिला, सुई डोरा लेकर बटन लगाने जो बैठा तो पहला टांका लगाते ही खट से सुई अंगूठे में घुस गई और खून निकल आया।
0: ओ, खून बहने लगा।
1: ये तो हुआ नहीं कि दौड़कर पट्टी बांधती, ऊपर से कटे पर नमक छिड़क दिया। बड़े चले थे 30 मार खां बनने, एक बटन तो लगा नहीं, इसीलिए तो कहती थी मर्द सिवा डींग हांकने के और कुछ नहीं कर सकते। भैया मैं तो चुप रहा, सोचा अपने आप कुछ लिहाज आएगा, चुप हो जाएगी, मगर वहाँ तो भैया ग्रामाफोन बज रहा था। क्या कहने इन मर्दों के, ये ऐसे ही हैं, ये वैसे हैं, इनसे ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, औरतों के बिना एक रोज भी तो जी नहीं सकते, औरतें ना हो तो एक दिन में ही नानी दादी याद आ जाए। आखिर कोई भैया कोई हद भी हो है। मैं कहता
0: हूँ ये कहा भाभी ने?
1: अजी अगर इतना ही कहा होता तो भी गनीमत थी, ऊपर से धौंस भी तो देती थी।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तवे पर उंगली रख दी ना, भाभी की बुराई कर रहे थे।
1: खाक बुराई कर रहा था यार, हर वक्त धौंस दिया करती थी, पियर चली जाऊंगी पियर। अरे तो धौंस किसे देती हो, बला से चली जाओ। खाना बनाना गुट्टी में पढ़ाया था, देखो तो कैसे कैसे सुनहले रंग के पराठे बनाए हैं। मैंने कहा खाओ तो दूं एक आध चाय के साथ।
0: बस भाई मुझे तो बख्शो।
1: अच्छा
0: गुरु, पराठों में तो तभी मजा आता है जब परोसने वाले के हाथों में भी कुछ नमक हो।
1: अच्छा
0: तुम्हारे तो हाथ क्या है, लोहार के चिमटे हैं।
1: कहती थी देखूं कैसे काम चलता है, दो दिन में बुलाते नजर आओगे। अपन तो चुप थे कि जाने दो भाई, क्यों एक कहकर चार सुनी, मगर हर बात की हद होती है, न जाने अपने आप को कहाँ की वीरांगना समझती है। मुझे भी गुस्सा आ गया, आखिर कह ही जो दिया, तुम हो किस भुलावे में, एक बार जाओ तो 100 बार न पूछूं।
0: अच्छा।
1: अपने आप झींकती न चली आओ तो कहना मेरी तरफ से कल की जाती आज चली जाओ।
0: अरे वे, क्या सचमुच तुमने ऐसा कह दिया?
1: अरे सिर्फ कह ही नहीं दिया, जब गई तो एक बार फिर कर भी नहीं देखा। मैंने तो कसम खा ली है कि जब तक खुशामद भरा खत न भेजेगी तब तक बुलाने का नाम भी नहीं लूंगा, देखूं कब तक आकर चलती है।
0: यार डर लगता है कहीं तुम्हारी किरकिरी ना हो जाए।
1: बे, बे, बे, कैसी मरी मरी बातें करते हो तुम, मैं और भला अपनी पत्नी से ही मात खा जाऊं हैं?
0: मगर यार तुमने बेचारी भाभी के साथ की ज्यादती।
1: क्या कहते हो, ज्यादती की थी।
0: हाँ।
1: यार तुम रहे हमेशा से औरतों के पिट्ठू ही।
0: क्यों,
1: आखिर हम औरतों से किस बात में कम हैं? अरे खाना हम बना सकते हैं, कपड़े हम धो सकते हैं, अपना बिस्तर हम खुद बिछा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने पैर भी हम खुद ही दबा सकते हैं।
0: हाँ। ये तो मानता हूँ भाई, मगर मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी शामत आई है।
1: शामत आई है
0: तो फिर क्या यही तुम्हारा आखिरी फैसला है?
1: देखो भाई, मैं या तो कहता नहीं हूँ और अगर कहता हूँ तो फिर उसे पूरा भी करके दिखाता हूँ।
0: बस बस रहने दो गुरु, मैंने बड़े बड़े सूरमा देखे हैं।
1: फिर मैं देखे,
0: एक हमारे भाई साहब हैं।
1: अच्छा
0: जनाब, 3 दिन में भीगी बिल्ली बनते नजर आए। सच कहा है किसी ने, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। बेचारी कितने प्रेम से पानी पिलाती थी।
1: अरे तो हम क्या कम प्रेम से पिलाते हैं, वो पानी देती थी हम चाय दे रहे हैं। ले पी पी पकड़ा ले,
0: तेरी चाय पी के तुझ पे एक एहसान भी कर दें।
1: अच्छा जी बोल
0: यार। हाँ? एक बात कहूँ अगर बुरा ना माना तो।
1: हाँ कह कह,
0: इसमें तो उतना भी मिठास नहीं जितना उनके दिए पानी में आता था।
1: आप देख ले मेरे हाथ से मार खाने की जी में। हाँ, हंस रहा है ऊपर से।

0: अरे भाई अनिल बाबू है क्या?
1: चले आइए बरखुरदार, हमें मालूम था कि आप एक ना एक दिन जरूर तशरीफ लाएंगे। अरे ये क्या हालत बना रखी है तुमने, चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ी हुई है यार? कमीज फटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, ये मजनू जैसी हालत क्यों बना रखी है?
2: अरे यार क्या बताऊं, हाय हाय, एक चीज हो तो भुगतू ना।
1: क्यों क्यों?
2: सुबह की चाय तो छूटी गई, खाना बाजार का अच्छा नहीं लगता, घर बनाता हूँ तो फिर कुछ और काम नहीं हो पाता, हजामत बनाना, नहाना धोना, बर्तन माजना, कपड़े धोना, बस यूं समझो कि आदमी नहीं घनचक्कर बनकर रह गया हूँ, घनचक्कर। अरे वो तो कहो कि मैं जरा दिल का मजबूत हूँ भैया, तुम होते तो कभी के नाक कटा लेते।
1: वाह प्यारे, हमें ही चला रहे हो?
2: या?
1: रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, देखने में मजनू के भी बाप दिखाई दे रहे हो और हमें कह रहे हो कि नाक कटा लेते। सच कहना, दिल अब क्या कह रहा है?
2: अब
1: कहो तो दूं एक तार भाभी को।
2: क्या तुम समझते हो कि मैं हिम्मत छोड़ रहा हूँ?
1: मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ भाई।
2: शुक्रिया।
1: डटे रहो प्यारे, खूब डटे रहो। भाई हमारा क्या है, हमें तो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियों की फिक्र करनी पड़ेगी। सो तुम उसकी फिक्र ना करो, एक पत्थर तुम्हारी समाधि पर लगवा देंगे कि ये शख्स जिंदगी भर औरतों से संघर्ष करता रहा है और इसी में बलिदान हो गया है।
2: कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे इतने पोच विचार है। अरे मुझे क्या मालूम था कि तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो किसी स्त्री का नाम सुनते ही पूंछ हिलाने लगते हैं।
1: मैं तो सोचता हूँ यार कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए होते हैं।
2: अच्छा जी।
1: एक के बिना दूसरा चल ही नहीं सकता। हाँ तुम चला सकते हो तो चला कर दिखाओ, मरे क्यों जा रहे हो, सीखिया पहलवान क्यों हो जा रहे हो?
2: अरे ये तो जरा काम का झंझट है।
1: अच्छा जी।
2: धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, मगर काम तो चल रहा है कि नहीं बता?
1: जी हाँ चल रहा है, भगवान करे सदा ऐसे ही चलता रहे। मगर फिर भी अगर किसी दिन तुम्हारा दम खम जवाब देने लगे तो मुझसे कहना।
2: मुंह धो रखो भैया। अच्छा अब चलता हूँ, फिर आऊंगा।
1: फिर क्या? अरे गुरु आओगे तो तुम 10 बार।

0: लो भाभी जी भी आ गईं।
1: अजी मैंने कहा हो तुम?
2: आए डॉक्टर साहब, बड़ा दर्द हो रहा है।
3: ये वॉमिटिंग कब से हो रही?
1: हाय हाय, मुझे ये पता होता तो।
0: बोलो मत, डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है, शोर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, वॉमिटिंग तो होती ही नहीं।
3: जरा जीप तो निकालिए बाहर। बस। और भी कोई शिकायत है आपको?
0: और डॉक्टर साहब, इन्हें खून सूखने की शिकायत है।
3: एनीमिया?
0: जी हाँ।
3: वेरी बैड। यानी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसे ये लग जाती है उसे तो बस ऊपर वाला ही बचाता है। खैर, फिर भी भरोसा रखो।
1: हाय हाय, ये तो मैं ही थी जिसने अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारी। डॉक्टर साहब
0: यार, चुप रहिए। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ और पता लगा?
3: देखिए, इनके दिल को बहुत भारी सदमा पहुंचा मालूम। कहीं इनका कोई सगा संबंधी तो नहीं मर गया?
1: हाय हाय, मैं ही मर गई थी डॉक्टर साहब, और कौन मरा था? मेरी अकल ही मारी गई थी।
0: भाभी जी, क्या कर रही हैं आप? आप बिल्कुल ना बोलिए। डॉक्टर साहब, सदमा तो बहुत भारी लगा था।
3: तभी
0: क्या डॉक्टर साहब,
3: जिगर तो बिल्कुल ही बेकार हो गया है।
0: अजी डॉक्टर साहब, बस यही तो एक चीज है जिसे ये उस दिन से खा रहे हैं। अन्न का तो एक दाना भी नहीं गया मुंह में।
1: कुछ भी नहीं खाया।
3: हालत सीरियस, जिगर के रोगी बचा नहीं करते। ये तो गनीमत है कि ये अब तक जी रहे हैं।
1: हाय हाय, मुझे क्या पता था कि इनके दिल में मेरे लिए इतनी जगह, नहीं तो क्यों मैं अपना माथा फोड़ दी।
0: चुप रहो भाभी, देखती नहीं हो इनके दिल पर बातचीत कितनी दहल पहुंचती है।
1: लो, मैं तो चुप ही हूँ भैया, मैं क्या कुछ कह रही हूँ।
3: खैर खैर खैर, अभी तो इनमें दम है, जान बच सकती अगर कोई सेवा करने वाला हो। हाँ, थोड़ा सा खून भी चाहिए।
1: ये क्या कहते हो जी, मैं कल मुई और किस दिन काम आऊंगी। डॉक्टर साहब, मेरी लहू ले लो, पर इन्हें बचा लो।
3: मगर आपका खून किस तरह लिया जा सकता है?
1: क्यों,
3: आप तो खुद ही बहुत दुबली पतली है।
1: मेरी फिक्र न

0: कीजिए डॉक्टर साहब, किसी तरह इनकी जान बचा लीजिए, इन्हीं से सब कुछ है ना।
1: नहीं जी, इनके पागलपन की सजा आप क्यों भुगतते? मरने दीजिए, मैं कहता हूँ मरने दीजिए। ऐसे आदमी को जिंदा रखने से क्या फायदा?
0: ये क्या कह रहे हैं आप?
1: हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहा हूँ। अब देखिए ना, जो आदमी अपनी पत्नी से लड़ता भिड़ता हो, मेरी राय में उसका मर जाना ही अच्छा है।
0: अरे आप डॉक्टर हैं या कसाई, आपको इससे

0: डॉक्टर है या कसाई, आपको इससे क्या मतलब? हम लड़ते हैं तो अपने लिए, नहीं लड़ते तो अपने लिए। आप अपना काम पूरा कीजिए डॉक्टर साहब।
1: तो बस मेरा काम तो पूरा हो चुका है, अब आप चाहे लड़िए चाहे प्रेम कीजिए।
2: लाइए लाइए मेरी फीस। लाइए
0: आपकी फीस।
1: जी हाँ।
0: आपने कोई दवाई तो लिखी ही नहीं।
1: दवाई जो थी सो लिख दी थी। पूरे 5 फीट की शीशी है।
0: 5 फीट की शीशी कहाँ है? ये क्या मस्करापन है?
1: लीजिए, आपको विश्वास नहीं होता? कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, आप अगर उस दवाई की शीशी को देखना चाहें तो शीशे के सामने खड़ी हो जाइए।
3: अरे भाई खड़ा हो जा अब। अब अच्छा तो हो गया, और क्या डॉक्टर साहब को खाएगा?
0: हाय रे दैया, तो ये सब तुम लोगों की मकारी थी? ये बीमार बीमार कुछ नहीं थे।
3: दरअसल बात ये भाभी जी, हम एक नाटक खेल रहे हैं, सो ये उसका रिहर्सल हो रहा था। अब आप पार्ट तो खूब अच्छा करती हैं। बस हम लोगों को चाय पिलाइए, साथ में कुछ गर्मा गर्म खिलाइए, और इस डॉक्टर के बच्चे के सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दीजिए। फीस मत दीजिए, ये तो वही है अपना रमेश।
0: रमेश?
3: जी हाँ। और आगे जब कभी आप दोनों का झगड़ा होगा तो हम सुलहनामा कराने की जिम्मेदारी लेते हैं।
1: जरूर जरूर।
3: क्यों बे रमेश, तू बहुत डॉक्टर की दुम बना फिरता है, अब बोलता क्यों नहीं?
1: हम बिना पढ़े ही मैंने अपनी सारी डॉक्टरी खर्च कर दी है। मैं दावा करता हूँ कि इतनी जल्दी दुनिया में कोई ऐसे मरीज को ठीक नहीं कर सकता जो खून पीता हो और जिगर को खाता।
4: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बड़े आए 30 मार हाँ बनकर। असल में सारी मेहनत तो मेरी ही है। बीमार पड़ा, कराहा, रोया धोया, फिर बीमारी के बीच में ही अच्छा होकर खड़ा हो गया।
0: मुझे रुलाया, मैं किसे एकदम दौड़ी आई, आधी जान निकल गई मेरी, छाती पर सांप लूट
4: गए।
0: करूँ
3: तो भाभी जी,
0: आपको पता है कितने
3: अच्छा ही तो हुआ।
0: क्या अच्छा हुआ
1: भाभी जी, देखिए ना झगड़ा निपट गया। आप क्यों रोती हो भाभी? अरे अरे अरे अरे, चुप भी हो जाओ ना।
0: क्या चुप हो जाओ?
1: देखो मैं तो फिर तुमसे नहीं लड़ूंगा, समझे? मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा तुमसे। अच्छा देखो, फिर मैं सचमुच बीमार हो जाऊंगा अगर तुम इसी तरह से रोते रहो यहाँ।
5: किसकी हार किसकी जीत। श्रोताओ, ये हास्य नाटिका आप सुन रहे थे आज के हवा महल कार्यक्रम में। लेखक थे श्री कृष्ण, निर्देशक सत्येंद्र शरत। विविध भारती दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की आवाज में डिशकाऊ फिल्म का गाना। गीत सनमजीत तलवार का है, संगीत पलाश मुछाल का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे ब्रेक के बाद।

0: ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की,
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।

0: अच्छा।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुझे बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं वो लम्हे फिल्म का गाना केके की आवाज में। इसे लिखा है नीलेश मिश्रा ने, संगीत प्रीतम का है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ सम्पन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
1: दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, वे कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें

0: करना है, हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेसटेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस विधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सज्जित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध पोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रूपये की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है।
4: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा

0: नया पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
1: बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, एआई, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
0: केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देशभर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए।
2: महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति की द्वारा, नृत्य गीत की द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं शादी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है।
3: देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें।
0: राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे।

0: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह।
1: ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरंड कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पड्डीकल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक, खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम फिल्म आपके लिए से। इस गाने को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सलामी फिल्म का गाना सुनिए, अलका याग्निक की आवाज में। गीत सुरेंद्र साथी का है, संगीत नदीम श्रवण का।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे से

0: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसकी प्रायोजक है विकू वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया, एक निर्देशक और एक प्राध्यापक। तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम के अंत में सुनिए पूर्णिमा और उदित नारायण की आवाजों में सातवां आसमान फिल्म का गाना। इसे लिखा है सूरज सानिम ने, संगीत राम लक्ष्मण का है।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरे कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
3: आज के फनकार।

जी हाँ दोस्तों, कमसीन तो वो थी ही और है भी। इसी मारूफ कमसीनियत की बदौलत उन्हें कई फिल्मों का ऑफर मिला। सारा बानू की माता जी उस जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थी नसीम बानो। उनके पिता प्रोड्यूसर थे एहसान उल हक साहब। उनकी दादी भी नामचीन थी छमियाबाई, जो कि शमशाद बेगम ऑफ दिल्ली के नाम से मशहूर थी। उत्तर प्रदेश के हसनपुर से ये परिवार था। सायरा बानू को अदाकारी जैसे विरासत में ही मिली थी। पहली ही फिल्म जंगली में उन्हें काफी सराहना मिली और फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन भी मिला।

फिल्म जंगली के कहानीकार और संवाद लेखक थे मशहूर उर्दू राइटर आगा जानी कश्मीरी। लंदन से तालीम याफ्ता सायरा बानू को उर्दू की डायलॉग डिलीवरी की सलाहियत आगा जानी कश्मीरी ने ही सिखाई, वो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई। शम्मी कपूर के साथ उनकी पहली फिल्म जो जंगली बनी, इसके बाद उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई। इसी वजह से वो उस जमाने की लव स्टोरीज की जैसे रोमांटिक हीरोइन बन गई।

दोस्तों, उस जमाने के चार्मिंग चॉकलेट हीरो जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ उनकी 1964 में आई थी फिल्म आई मिलन की बेला और इसके बाद झुक गया आसमान।

0: दोस्तों, सायरा बानो जो 1966 तक एक एस्टैब्लिश्ड अदाकारा बन चुकी थी, उनके शादी के लिए किसी नवाब, शहंशाह, बादशाह सी आन बान वाला राजकुमार उनकी नजरों में रहा होगा और वो ख्वाब जो उन्होंने देखा होगा सच हुआ जब उनकी शादी मुगल आजम के शहजादा सलीम यानी दिलीप कुमार अर्थात यूसुफ खान साहब के साथ तय हुई और 11 अक्टूबर 1966 में उनका निकाह हुआ।
1: अरे गोपी, क्यों ठाकुर के पैसों का नाश करते हो? हम जो हैं दोनों उत्तम कलाकार, भूल गए?
2: अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं आया, उस दिन की तरह मिलजुल के जमा देंगे प्रोग्राम। ताली भी पिट जाएगी और ठाकुर का पैसा भी बच जाएगा। चलो।

0: प्यार मोहब्बत क्या समझाए इसको राम और शाम के तेरी मेरी नई निभनी के तेरी मेरी नई निभनी नई नई के तेरी मेरी नई निभनी।
1: इसी दौरान उन्होंने राजेंद्र कुमार अभिनीत फिल्म अमन में एक रोमांटिक रोल किया और उनके चाहने वालों को ये संदेश भी दिया कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम करना बंद नहीं करेंगे।

0: कि आज तुम्हें क्या हो गया है। तो अपने दिल को समझाओ ना।
1: दोस्तों, फिल्म पड़ोसन जो 1968 में आई थी, सायरा बानू के लिए उनके करियर की एक जबरदस्त मोड़ देने वाली फिल्म थी। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। इस फिल्म के सक्सेस ने उन्हें दिलाया उस दौर की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में एक ऊंचा मुकाम।

0: 1968 में उनकी एक फिल्म आई दीवाना, जिसमें उनके साथ दीवाना के मुख्य किरदार में थे राज कपूर। महेश कौल निर्देशित इस फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन का था और बड़ा ही कर्णप्रिय और लोकप्रिय बन पड़ा था। दोस्तों, दिलीप कुमार के साथ उनकी तीन फिल्में आई हैं, सगीना, बैराग और गोपी। इसमें सिर्फ गोपी को ही कमर्शियल सक्सेस मिली थी।
1: जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन जेंटलमैन।

0: और हाँ दोस्तों, देवानंद के साथ उनकी एक फिल्म आई थी प्यार मोहब्बत। मनोज कुमार के साथ भी दो फिल्में उन्होंने की, बलिदान और पूरब और पश्चिम।
1: आओ
2: ओए ट्विंकल।

0: हुआ है।
1: नवीन निश्चल के साथ भी दो हिट फिल्में उन्होंने दी, पहली थी पैसे की गुड़िया और दूसरी विक्टोरिया नंबर 203।

0: धर्मेंद्र के साथ उनकी कुल 6 फिल्में आई थी, आदमी और इंसान, रेशम की डोरी, पॉकेट मार, इंटरनेशनल क्रूक, चैताली और ज्वारभाटा।
1: रूठा है तो मना लेंगे।

सुनील दत्त के साथ एक और सफल फिल्म उनकी आई थी नहले पे दहला। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी सुनील दत्त साहब के साथ पहली फिल्म थी पड़ोसन। दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म दुनिया में जो आई थी 1984 में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। दोस्तों उनकी आखिरी रिलीज फिल्म थी फैसला। इस फिल्म में उनके हीरो थे विनोद मेहरा। हालांकि फिल्म 1976 में

पूरी हो चुकी थी, पर यह फिल्म रिलीज हुई थी 1988 में। दोस्तों, सायरा बानू एक सफल अभिनेत्री रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार पत्नी का रोल भी वो बखूबी निभा रही हैं। तो आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर और मारूफ अदाकारा सायरा बानू पर।

0: शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। छाया गीत में आज ऐसे गाने हैं जिनके दो संस्करण हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन। सुनने के आनंद के लिए हमने किसी दिलचस्प मोड़ पर इन गानों को आपस में जोड़ दिया है। कुछ अल्फाज कहना कितना मुश्किल होता है, जब कहना इतना मुश्किल है तो लिखना और भी ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। फिर कैसे कहें अपने दिल की बात, कैसे कहें जिसे कहने के लिए बेकरार है दिल, लरसते हैं होंठ, कांपता है बदन और मिलते नहीं अल्फाज अपनी बात कहने के लिए।

कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती हैं। खुशी की चमक, दुख की झलक, सब कुछ आंखों में तैर जाता है। आंखों में समाया है हमारे दुखों का नमक और खुशियों की चहक। किसी की आंखें रोशनी हैं, उम्मीद हैं, इन आंखों से रोशन है हमारा संसार। आंखें आंखों से करती हैं बातें, आंखों की इस भाषा को कम ही लोग जान पाते हैं।

जिंदगी आसान भी है और दुश्वार भी। जिंदगी कितना कुछ सिखाती है हमें। सांप सीढ़ी का खेल है ये जिंदगी। यूं लगता है कि सामने है मंजिल और पल भर में मंजिल कोसों दूर होती है। जिंदगी कभी एक कविता है, कभी एक अफसाना और कभी एक महागाथा। चलो जिंदगी की उंगली पकड़ें और बातें करें इससे, कह दें इससे अपने सारे गिले शिकवे।

बारिश कुदरत की एक कविता है, बारिश संगीत है प्रकृति का, बारिश एक वरदान है, ये जज्बात जगाती है और हमें बेहतर इंसान बनाती है। ऐसी बारिश में घर के अंदर बंद रहना एक गलती है। बारिश तो बाहर निकलने के लिए होती है, सराबोर होने के लिए होती है, गाना गाने के लिए होती है, जिंदगी जीने के लिए होती है बारिश।

छाया गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं, एक पुरुष और एक महिला संस्करण। सुनने के आनंद के लिए हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया था।

0: फिल्मों के नाम, फिल्म जंगली।
1: एहसान तेरा होगा मुझ पर।
0: फिल्म चिराग।
1: तेरी आंखों के सिवा
2: दुनिया में रखा क्या।
0: फिल्म मासूम।
3: तुझसे नाराज नहीं जिंदगी।
2: हैरान हूँ मैं।
0: और फिल्म मंजिल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
4: मिलो जो तुम्हें बताए।
3: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
5: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
3: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: विविध भारती
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। यह दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है।
2: भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक एट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को 45 अरब डॉलर की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण

0: भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, यह वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉ जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हो गया। इसमें ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi has urged private sector in space research to build global aura of innovation so that people worldwide feel that if they want to make a career, they should go to India. Mr. Modi stated this during an interaction with CEOs and founders of 20 space startups recently. According to the transcript of the interaction, which was released on National Space Day today, Prime Minister Modi also highlighted India's cost competitiveness in launching space ventures. During the interaction, Mr. Modi urged the space sector startups to remain consistent in their efforts and build a robust space sector ecosystem capable of attracting talent from across the world.
2: आपने नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है।
1: डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज स्ट्रेस्ड द नीड फॉर सेल्फ रिलायंस इन बिल्डिंग वॉरशिप्स, ऑफशोर वेसल्स एंड रिलेटेड मैरिटाइम सेक्टर्स, describing it as vital to the country's security. Mr. Singh was addressing the gathering after laying the foundation stone for 5 expansion projects of the Garden Reach Shipbuilders and Engineers, GRSE, and Yantra India Limited, worth approximately 34,000 crore rupees in Kolkata. The Defence Minister asserted that India is capable of becoming a global shipbuilding hub and called for high-quality maintenance services and timely delivery of defence products to achieve this goal. Indian Council of Medical Research, ICMR, has clarified that no new strain of H1N1, commonly known as swine flu, has been identified and there is no cause for panic, assuring that current vaccines remain effective. According to senior scientists at the ICMR, these viruses have been in circulation since the year 2025. According to ICMR, seasonal influenza, including H1N1, is mostly self-limiting. Common symptoms include fever, cough, headache and body ache, and most people recover with appropriate care and rest. The BRICS Sport Ministers meeting concluded at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh with unanimous adoption of the Sports Joint Declaration. The declaration reaffirms the commitment of the member countries to strengthen cooperation in sports through dialogue, mutual respect and inclusiveness. The meeting was held under India's BRICS Chairship 2026. A key outcome of the meeting has been the proposal to establish a BRICS working group on sports technology to promote cooperation in sports science, artificial intelligence.